100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम पुष्पांजलि से। गजाननन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल सार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। जिनका मुख हाथी जैसा है, जो भूत गणों द्वारा सेवित है, जो कैथा और जामुन के फलों का सार खाते हैं, जो माता उमा के पुत्र हैं और जो सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मेरा नमन है।

श्रोताओं, आज है विभुवन संकटी चतुर्थी। विभुवन संकटी चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल अधिक मास में ही आती है। चूंकि अधिक मास हर 3 वर्ष के अंतराल पर आता है, इसीलिए ये विशिष्ट चतुर्थी भी 3 वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस पवित्र महीने में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करने से साधक को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है।

श्रोताओं, विभुवन संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में सदा ही 21 दूर्वा चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके लिए साफ सुथरे स्थान से तोड़ी गई कोमल दूर्वा की पत्तियों को आपस में जोड़कर 11 या 21 जोड़े तैयार कर लीजिए। जब आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर रहे हो तो मन को पूरी तरह शांत रखें और इस चमत्कारी मंत्र का जाप करें। श्री गणेशाय नमः, दूर्वाम कुरान समर्पयानी।

सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्टें भंकरी सर्वेदुः खरहे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। हे माँ सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाली, सभी को मनचाहा वर देने वाली और समस्त दुष्टों का भय दूर करने वाली, हे देवी माँ सभी दुखों को हरने वाली माँ लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है।

जय अंबे जय अंबे मैया जय श्यामा गौरी, जय अंबे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी।

ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनार्मूर्तिमोक्षीय मार्तत्तात्। हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वे हमें सभी दुखों और भय से मुक्त कर अमृत समान जीवन प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।

श्रोताओं, वर्षा का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा व्यक्ति के मन पर होता है, जबकि ईश्वर के लिए की गई जाने वाली प्रार्थना का परिणाम हृदय के माध्यम से आत्मा पर हो जाता है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि आज विनय के साथ।

श्रोताओं, सुख समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सचरित्र और सदाचारी होना पहली शर्त होती है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव ही नहीं है। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो, इन्हीं वचनों के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए विनय को। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिसमें अगला प्रोग्राम है सदाबहार की।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को और सुदृढ़ करने के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ये सम्मेलन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, जिसमें शासन सुधार, अभिसरण तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण शामिल है। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 13 में 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर वो गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा का आयोजन आज और कल प्रदेश के 36 जिलों के 614 केंद्रों पर दो पालियों में होगा। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है, जिनका तबादला कृषि और किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में किया गया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री हिमांशु गुप्ता का स्थान लिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय, लेकर हाजिर हूं सदाबहार गीत। सुबह के 7:05 हुए हैं और इन सुनहरी किरणों और हल्की ठंडी हवाओं और चाय की मीठी खुशबू के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। और आप जानते हैं सदाबहार गीत में बॉलीवुड की वो एवरग्रीन सॉन्ग है जो आज भी दिलों को सुकून देते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। तो आइए उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं इस बेहतरीन ट्रैक के साथ। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आज विनय के साथ।

और दोस्तों लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बेहतरीन गाना आप एंजॉय कर रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। और आप जानते हैं कि पुराने गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये वो एहसास होते हैं जो पीढ़ियों को जोड़ते हैं। इन गानों में मोहब्बत भी है, सादगी भी है और जिंदगी की खूबसूरती भी है। तो चलिए एक और खूबसूरत सफर और एक और एवरग्रीन सॉन्ग सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी आशा भोसले जी की आवाज में ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। सुबह के 7:24 हुए हैं, आप हैं विनय के साथ। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी भी पुराने गीतों की तरह होती है। जी हाँ, जिंदगी भी पुराने गीतों की तरह होती है, अगर सुर और भाव सही हो तो हर दिन खूबसूरत बन जाता है। आई होप आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे। और अब एक और सदाबहार गीत के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, जो सो रहे हैं तुरंत बिस्तर से उठिए और डांस करना शुरू करिए।

और ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और एक अलग एनर्जी है इस गाने में और इसका डांस बेहतरीन है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको वो दिन याद आ गया होगा जब आपने देखी होगी, और जब भी ये गाना बजता है तो बस जो बदन है वो नाचने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों आइए मेल्स की ओर बढ़ते हैं। हमारे बड़े सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, और सबसे पहले सुबह 5:52 पे हमें मेल किया है वकील अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और इनको आवाज़ अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है और ये वकील अहमद मंसूरी हैं। साथ ही साथ इन्होंने साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी बेकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी और अहमद नवाब का नाम लिखा हुआ है। और सुल्तान रजा जी ने हमें बेहतरीन चाय भेजी है और कुछ लाइंस भी लिखी हैं कि उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवाएं ठंडी और मौसम भी है प्यारा, सो गया चांद और छुप गया तारा, कबूल कीजिए गुड मॉर्निंग हमारा। हमने कबूल कर लिया है आपका गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, हम बहुत ज़बरदस्त हैं, आप सब हैं तो हम बहुत बढ़िया हैं। और साथ ही साथ

हैं कि ये रोज सुनते हैं, सुल्तान रजा, इकबाल रजा और बड़े सारे नाम लिखे इन्होंने, साथ ही साथ पूरे रजा परिवार की ओर से गुड मॉर्निंग कहा है और प्रोग्राम इन्हें बेहतरीन लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी रावत हमें बहुत दूर से सुन रही हैं और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं, वैसे रहने वाले उन्नाव की हैं, राम राम कह रही हैं। राम राम रोशनी जी, आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सुबह से जुड़े हुए, मन प्रसन्न हो जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ नाम और भी लिखे हुए, जैसे बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलफसा और सभी के साथ मिलकर अलग अलग स्थान से सुन रही हैं। फिर तैयार हो जाइए एक बेहतरीन ट्रैक के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो विनय के साथ।

एक बार फिर आशा भोसले जी की बेहतरीन आवाज में आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। और आप जानते हैं ये सब ओरिजिनल गाने हैं, इनके रीमेक चाहे जितने बन जाए लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। और पुराने सदाबहार गीतों के लिए कहा गया है कि वक्त गुजर जाता है यादें मुस्कुराती रहती हैं, वक्त गुजर जाता है यादें मुस्कुराती रहती हैं, पुराने गीतों में अक्सर जिंदगी गुनगुनाती रहती है। और एक बेहतरीन गुनगुनाता हुआ गीत आप तक 100.7 FM रेनबो पर।

और हमारे आगे पीछे तो हमारे लिसनर हैं, आप हैं, और आपने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सबको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, और हमारे जो हमारे और आपके बड़े बेहतरीन वाले आरजे हैं शिवम भैया को भी गाने पसंद आ रहे हैं। थैंक यू शिवम। और साथ ही साथ देखिए सुधांशु जी ने हमें मेल किया है, राधे राधे कह रहे हैं, और ये ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से हमें मेल करते हैं। कार्यक्रम सदाबहार गीत इन्हें अच्छा लग रहा है और पुष्पांजलि में इन्हें भजन अच्छे लगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि माता रानी का भजन जो आपने बजाया बहुत ही अच्छा था और आपकी अच्छा आवाज़ अच्छी। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हमें मेल किया है मनोज बंसल जी ने, ये हमें कुछ याद दिला रहे हैं, ये हरियाणा से हमें सुन रहे हैं। वैसे मनोज जी हमें याद है कि आज कौन सा स्पेशल डे है। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुनिए आपको पता चल जाएगा। और देखिए हमें पूनम गुप्ता जी ने मेल किया है, वो रतन सर को याद कर रही थी। रतन जी गुड मॉर्निंग, आपको कोई याद कर रहा है? इन्होंने करेक्ट किया इन्होंने अपने मेल को और गुड मॉर्निंग कह रही है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि ये सीतापुर से हमें सुन रही है। पूनम गुप्ता, मोनिका गुप्ता, यशी गुप्ता ने हमें मेल किया। सदाबहार गीत में सॉन्ग्स अच्छे प्ले हो रहे हैं, इन्होंने भी यही लिखा है। राधे श्याम जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, और ये इन्होंने गुड मॉर्निंग कहते हुए लिखा है कि विनय जी और समस्त श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम में सॉन्ग्स अच्छे बज रहे हैं, सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सुनते रहिए और गार्डन गार्डन होगा, अभी जब तक 15 मिनट बचे हैं, अभी है बहुत सारा समय है। और साथ ही साथ नवीन मिश्रा जी ने हमें मेल किया है, विनय यू हैव सच अ फ्रेश वॉइस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच नाइस ओल्ड सॉन्ग, सॉन्ग्स आर माइलस्टोन। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपकी मेल के लिए, हौसला अफजाई के लिए। और आइए एक और ट्रैक जो अपने समय में बहुत ही हिट था उसे हम सुनते हैं। थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन आपको फ्रेश जरूर करेगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और मोहम्मद रफ़ी और किशोर, ओह मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। और हमारे बड़े सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें मेल कर दिया है। और देखिए हमें नवनीत सिंह जी सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और कहते हैं कि मैं नवनीत सिंह चौक कोतवाली लखनऊ से हूँ, आपको और आपके सभी सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। आप जो भी प्रोग्राम करते हैं वो सारे मुझे बढ़िया और अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी। वैसे हमारे नवनीत जी हमारे सभी जो प्यारे प्यारे आरजेस हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सभी बहुत बेहतरीन हैं। सबके प्रोग्राम सुनिए, एफएम रेनबो आपके लिए पूरा पैकेज लेकर आता है। और बबीता राव ने हमें बड़ा ही सुंदर सा गुलदस्ता भेजा है और ये हमें भेज रही हैं। ये हमें इन्होंने बेली काला गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रही है और कहते हैं सर जी मैं आपको 5:55 से सुन रही हूँ, पुष्पांजलि प्रोग्राम अच्छा लगा लेकिन सदाबहार गीत प्रोग्राम में कतई जहर बोले तो एकदम झक्कास, मस्त, शानदार, बिंदास, उमदा प्रस्तुति, क्या बात है, इतना सारा आपने लिख दिया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपने साथ ही साथ लिखा है कि सदाबहार गीत में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं जो मेरा फेवरेट नहीं रहा, तहे दिल से शुक्रिया। और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हमें मेल किया। और ये जो भी गाने बज रहे हैं ये सदाबहार हैं, ये हर किसी के दिल के बहुत करीब है, मेरे भी और आपके भी। और हमें गुलफ्सा सिद्दीकी ने गुड मॉर्निंग कहा है और लिखती हैं विनय भाई मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और हम आप ही के लिए हैं, आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं। और एक और गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपके मोबाइल पर, आप जिस भी डिवाइस से सुन रहे हैं उस पर सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आज विनय के साथ।

वैसे जब चार यार मिल जाते हैं तो रात ही नहीं पूरा दिन हर समय गुलजार हो जाता है, और हम चार नहीं, हम बहुत सारे यार हैं, हम बहुत सारे दोस्त हैं, तो हमारा और आपका दिन आपसे गुलजार हो जाता है।

चांद के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

और दोस्तों इसी गीत के साथ अपने दोस्त विनय को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम सदाबहार गीत से सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। न्यूज ब्रेक के उस पार एक बार फिर आपके लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुनते रहिए एंजॉय करते रहिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।

0: अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जल्द उसी से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2000

0: 15 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब,

0: और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर जगह, फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 MHz। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान।
5: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
4: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
5: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
4: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
6: सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल,
4: अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
5: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वेल फिलहाल मैं तो आपसे हॉली लुलू नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ जो कुछ कहने वाली, ये गाना बिल्कुल मस्ती से आप तक पहुंच रहा है और इस गाने के साथ साथ आपके प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के दो हम सफर यानी कि विनय और रत्ना शुक्ला आपके साथ जुड़ चुके हैं और हम दोनों मिलके कहते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर है, ब्रेकफास्ट शो है और फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: मॉर्निंग मंत्र एक ऐसा सेगमेंट है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का, जिसमें हमारे साथ साथ जितने भी लिसनर्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और कहीं ना कहीं उसको अगर छोटा सा भी उसका अंश एक आजमा लेना विनय, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ जाती है।
3: बिल्कुल, और आज भी मॉर्निंग मंत्र लेकर हम तैयार हैं और आज का मॉर्निंग मंत्र कहता है कि लाइफ और बाइसिकल बिल्कुल एक जैसी होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार पैडल घूमेगा तभी बाइसिकल आगे चलेगी।
2: हाँ जी, तो लाइफ में अगर कहीं बैलेंस बिगड़ रहा हो तो फिर मजबूत होकर पैडल पर हिट करिए और एक सुनहरे सफर की ओर निकल पड़िए।
3: क्या बात है, तो साइकिल से जुड़ा ये बेहतरीन मॉर्निंग मंत्र आपने सुना और एक और बेहतरीन गाना आप सभी के लिए।

0: वेल, इस गाने के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे. गाना अपने आप में बहुत अच्छा गाना है और आप सबने इसको एंजॉय किया. फिलहाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करते हैं, आज कौन सा ऐसा खास दिवस है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या पूरी दुनिया में मनाया जाता है.
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे.
0: अरे वाह
1: जी. तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है. और हमारे एक लिसनर है जिन्होंने हमें मेल पर भी पहले से ही बता दिया था.
0: अच्छा.
1: जब मैं मेल पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे. और ये दिन का जो मेन मोटिव है वो लोगों को साइकिल के उपयोग, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है
0: जी. और कहते हैं 2 पहिए 0 पॉल्यूशन फिटनेस का परफेक्ट सॉल्यूशन. तो आज जो आपको हम बता रहे हैं कि विश्व बाइसिकल दिवस है और हम सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं और हम सबको, यानी कि विनय जी को भी और रत्ना को भी, दोनों को और सबको सुनने वालों को, ये साइकिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. क्योंकि हमारी लाइफ में साइकिल कहीं ना कहीं हर तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है.
1: बिल्कुल. और दोस्तों ये जो दिन है इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में की थी और आधिकारिक मान्यता 2018 में मिल गई थी ताकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और फिट जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके.
0: और अगर हम इस साइकिलिंग की बात करते हैं तो साइकिल हमारी लाइफ से जैसे कहीं ना कहीं जुड़ी है. तो आज

0: के दौर में साइकिल आपको शायद कम देखने को मिलेगी, है ना, लेकिन जो एक पिछला दौर था उसमें साइकिल के बिना तो कोई काम ही नहीं होता था।
1: बिल्कुल,
0: फट से जाओ साइकिल से वो सामान ले आओ।
1: और आपको बताते चले दोस्तों कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पर एक थीम भी रखी गई है।
0: अच्छा
1: जी, 2026 का जो थीम है वो है पैडिंग टुवर्ड्स द हेल्दियर एंड ग्रीनर फ्यूचर, यानी कि
0: स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम।
1: तो ये जो थीम है ये हमें एक मैसेज दे रहा है कि छोटी छोटी आदतें जैसे साइकिल चलाना, हमारे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और पर्यावरण दोनों को बेहद लाभकारी बना देता है। और जैसा भी साइकिल की बात कर रही थी तो साइकिल आज के समय में फिर से जागृत हो गई है। जो इस समय वैश्विक हालात चल रहे हैं तो हम सभी को साइकिल चलाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और विनय, अक्सर सड़क पर जब हम लोग जा रहे होते हैं तो देखिए उसमें गाड़ियों की जो भीड़ है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, वो बराबर हमको सड़क पे दिखाई पड़ती है। तो इन वाहनों से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है और कहीं ना कहीं ज़्यादा जगह भी घिरती है, तो तमाम हॉर्न की आवाज़ें भी हमारे आसपास होती हैं, भले हमारे घर के बाहर से गाड़ियाँ निकल रही हों। तो एक पर्सन जब रिलैक्स होकर फुर्सत के पलों में साइकिल पर सवार होकर आराम से किनारे किनारे होकर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ जब ट्रेन ट्रेन बजाते हुए आगे निकल जाते हैं, थोड़ी सी जगह में अपने सफर को आगे बढ़ जाते हैं, वो समा और वो चीज और बड़ा सुकून का पल होता है जब आराम से साइकिल से धीमे धीमे साइड से निकल जाते हैं। और जो है बाकी लोग जो है गाड़ियों वाले, उनमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की भी संभावना है, उसके साथ साथ जब जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: साइकिल की मस्ती अलग ही है।
1: बिल्कुल, देखिये जब मैं सुबह सुबह आ रहा था बड़े सारे साइकिल लोग चलाते दिखे, और अब जो गाना हम आपको लेकर आ रहे हैं,
0: वाकई में आपको विनय बताया आपने सुबह आने के बाद की, वाकई मैं अभी बस अपने रेडियो स्टेशन के थोड़ा सा पास में काफी लोग, जैसे उनका कुछ ऐसा जश्न के तौर पे, वाकई में एक पिंक कलर की ड्रेस में बहुत सारी साइकिलिंग करके हुए, एक कुछ उनका समूह होगा जो भी, तो उसमें आगे लड़कियां थी और पीछे लड़के, पिंक ड्रेस में सब
1: तो
0: चले जा रहे।
1: ये बहुत कॉमन हो गया, मैं सुबह सुबह देखता रहता हूँ। और जैसा मैंने गाने की बात की, ऐसा गाना जो आपको याद दिलाएगा कि साइकिल पे कैसे एक पर्सन है जो हमारे घर पे आया करता था।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
4: जी गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप सुन रहे हैं आज रत्ना और विनय आपके साथ हैं और इस ब्रेकफास्ट शो में हम हमेशा एक मुद्दे पर बात करते हैं।
5: जी बिल्कुल, और मुद्दा अगर हम आज की बात करते हैं, हमने आपको पहले दिवस बता दिया, तो दिवस के बाद जब अगर हम मुद्दे की ओर बढ़ते हैं तो वो मुद्दा आप जल्दी से जब सुनेंगे तो आपको लगेगा सबसे पहला मेल मेरा जाना चाहिए।
4: बिल्कुल ये तो है।
5: तो वो मुद्दा कुछ इस तरह से है कि हम साइकिल की बात करते हैं आज। भाई पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है, तो आपकी पहली साइकिल कौन से रंग की थी, ये आपकी बचपन की साइकिल से जुड़ी कुछ यादें हैं, साइकिल चलाना आपने सीखा था उससे जुड़ी कुछ यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं, और रोजाना साइकिल चलाने से हमारे स्वास्थ्य को क्या फायदे मिलते हैं ये आप हमें बता सकते हैं।
4: तो यानी आपको दो चीजें करनी है, पहले तो अपनी पहली साइकिल के बारे में हमें अपनी कोई मेमोरी शेयर करना है
5: जी,
4: वो अगर आपने संभाल कर रखा है या नहीं रखा है तब भी, और ये भी बताना है कि अगर अभी आप साइकिल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं तो आपको क्या लगता है कि साइकिल चलाने से, रोज साइकिल चलाने से क्या क्या आपको हेल्थ में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
5: जी ये बहुत ही सरल सी आसान सी बातें हैं, कई लोग इस वक्त चला भी रहे होंगे और हमें सुन भी रहे होंगे।
4: बिल्कुल, तो हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।
5: जी
4: जी, और फिलहाल एक और बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, हमें आपसे बहुत प्यार है और इसमें किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है।
1: और आपको पता, अगर आपको प्यार है तो हमारे श्रोताओं को भी एफएम रेनबो से बहुत मोहब्बत है।
0: हाँ। और उस मोहब्बत का वो जिक्र करते हैं बहुत सारे मेल्स करके, और कुछ मेल्स तो हम पढ़ चुके थे, और देखिए हम आगे फिर से इस सिलसिले को जारी रखते हैं। और हमें मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया है, और बहुत ही गाने बेहतरीन लग रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है।
1: और आपके लिए स्पेशली हम बोले तो एक अलग से स्पेशली आपके लिए गुड मॉर्निंग सर लिख के आया है।
0: अच्छा,
1: मुस्कुराइए मत बिल्कुल भी।
0: हंस देते हैं, मुस्कुराते नहीं है,
1: क्योंकि आपके लिए केवल अकेले लिख के आया, तो लेकिन हमने कह दिया आपसे, लेकिन हम सोच रहे थे कि मेरे लिए नहीं लिखा, लेकिन हमने फिर भी आपके लिए जो स्पेशल गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप बता दीजिए।
0: नहीं तो इन्होंने ना पहले वाले प्रोग्राम से लिखना शुरू किया है।
1: अच्छा,
0: अब देखेगा ये फिर से लिखेंगे।
1: यानी कि आप अनुराधा कुमारी जी का फेवर कर रहे हैं।
0: और देखिए, हमें मोनू सेठ जी ने मेल किया है, बड़ी सारी आकाशवाणी को लेकर इन्होंने लाइंस लिखी हैं, और कहते हैं भले ही डिजिटल का शोर हो चारों तरफ, मगर रेडियो रेडियो की उसकी सुरीली जो खटखट है, उसमें एक अलग तरह का सुकून है।
1: जी जी, बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी। और साथ में सुधांशु एस जी का भी मेल आ

0: है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इन्होंने लिखा, लिखते हैं राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट मोहना, थाना इटौंजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से, लखनऊ से इन्होंने लिखा है। लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, कल भी और आज भी बहुत अच्छे बजाए जा रहे हैं, ये गाने दिन भर एनर्जी प्रदान करते हैं और मैं आग्रह तथा प्रार्थना करता हूँ कि सभी एंकर सुबह ऐसे ही गाने बजाते रहें। तो वीना जी लाइए आपकी पीठ ठोक देते हैं, चूंकि आपकी तारीफ आ गई, भाई गाने ज्यादातर आप ही चूज कर रहे हैं।
1: नहीं ऐसा कुछ

0: प्रदान करते हैं और मैं आग्रह तथा प्रार्थना करता हूं कि सभी एंकर सुबह ऐसे ही गाने बजाते रहें। तो विनय जी लाइए आपकी पीठ ठोक देते हैं क्योंकि आपकी तारीफ आ गई भाई, गाने ज्यादातर आप ही चूज कर रहे हैं।
1: नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, गाने ये हैं, ये हम सभी के पसंद के गाने हैं और मनोज बंसल जी ने हमें हरियाणा से भेजा है और मनोज बंसल जी ने ही हमें सुबह बताया था कि आज बाइसिकल डे है और हम पहले से लिख कर लाए थे। मनोज जी लिखते हैं कि यदि छोटी छोटी दूरियां साइकिल से तय की जाए तो ना केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा और सुरक्षित धरती मिल सकेगी। बिल्कुल सही बात,
0: बिल्कुल सही बात है। और आज के जमाने में भी जो बच्चे अगर साइकिल देखते हैं या उसको बचपन में तो चलाते हैं लेकिन अगर बड़े होकर भी उसको कहीं ना कहीं आजमाते हैं तो जैसे कि आपने लिखा वो सब कुछ होगा। उसके बाद पिंकी बादी जी का भी मेल आ गया है अमीनाबाद लखनऊ से, इन्होंने हेलो किया है। सर एंड मैम दोनों का नाम भी अच्छा, गुड मॉर्निंग पिंकी जी। और पुष्पांजलि शो और सदाबहार शो आज विनय सर का बहुत सुपरहिट था।
1: बिल्कुल
0: भाई आपको बधाई विनय जी,
1: थैंक यू सो मच। हमारे जो लिसनर्स का साथ था इसीलिए ये शो भी बेहतरीन रहा। और हमें वारिस जी ने मेल किया है और इन्होंने विश्व साइकिल दिवस की बहुत बहुत बधाई दी हम सभी को और अर्ज किया है कि ताकत अपने लफ्जों में डालो आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह। और साथ ही साथ लिखते हैं कि मैं 6:15 से FM को शिद्दत से सुन रहा हूं और इन्होंने सदाबहार गीत इनको अच्छा लगा और सॉन्ग्स अच्छे लगे और GML भी बहुत अच्छा लग रहा है। वारिस अली साहब ऐश बाग लखनऊ से।
0: जी आप बराबर हम सब की बहुत तारीफ करते हैं और साथ में FM रेनबो से बराबर जुड़े रहते हैं, तो वारिस अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मेल भेजने के लिए। अब मनोज बंसल जी ने भी मेल किया है, मनोज बंसल हरियाणा हांसी से, नमस्कार इन्होंने भेजा, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हम दोनों की ओर से। और लिखते हैं मेरी पहली साइकिल 24 इंची की थी और ब्लैक कलर की थी, वह मैं बात कर रहा हूँ 1982 की।
1: अच्छा आपने 24 इंची मतलब वो जो नहीं कहते वो जो देसी साइकिल,
0: हाँ
1: देसी साइकिल जो थी ना ऊंची वाली, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। और आजकल भी आप देखें बड़े सारे लोग वो चलाते हैं पर आजकल ना थोड़ा ट्रेंडी जमाना हो गया है, तरह तरह की बड़ी स्टाइलिश से साइकिल आ गए लेकिन जो 24 इंची वाली मजबूती जिसमें थी वो किसी में नहीं है।
0: और ये साइकिल ऐसी होती थी कि इस साइकिल को अगर कोशिश की जाए तो सब कोई चला लेता था। आजकल की थोड़ी सी टिपिकल भी है,
1: पता है हमने डंडे डंडे वाली साइकिल नहीं होती ये जो इसमें डंडा होता था तो हम लोग बड़े एक पैर डाल के ऐसे धीमे धीमे चलाएंगे। जो साइकिल से जुड़ी हुई है और आप हमें बताइए बहुत सारी यादें पहली साइकिल के बारे में और किस तरह साइकिल से फायदे हैं। और अब देखिए 8:50 हुआ, एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
0: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: ये प्रूफ
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
1: और भाई गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा ही प्रोग्राम है। तो आज मैंने हम लोग अब बताते हैं अपने लिसनर्स को कि ग्लोबल रनिंग डे भी आज मनाया जाता है।
2: जी हाँ, फर्स्ट वेंसडे ऑफ जून न्यूयॉर्क द्वारा इस दिन की स्थापना हुई थी।
1: ये एक विश्वव्यापी उत्सव है जो खेल और फिटनेस के रूप में दौड़ने को बढ़ावा देता है। दौड़ने की यानी कि जो हम दौड़ लगाते हैं और एक्सरसाइज के रूप में दौड़ते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं।
2: और वैसे भी अगर हम हर रोज दौड़ते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा है। 1 जून 2016 को पहली बार ग्लोबल रनिंग डे मनाया गया था।
1: जी, और आज भी ये दिन उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। दौड़ने के जो बहुत से फायदे हैं जो लोग इस दौड़ को लगाते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फायदों की अगर बात करते हैं तो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है दौड़ना, वजन नियंत्रण के लिए भी फायदेमंद होता है और बेहतर स्टैमिना भी आपको मिलता है। आप टेंशन वरीज और डिप्रेशन इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, कम होते हैं ये सब कुछ। और
2: साथ ही साथ

मूड तो बेहतर बन ही जाता है। और अब देखिए मूड बेहतर होने जा रहा है इस गाने से। और देखिए घड़ी के सुई इशारा कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ को हम वाइंड अप करें, न्यूज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। खुश रहिए है।

नमस्कार, 9 बजे हैं, सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आज सीबीएसई प्रकरण पर सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई से जुड़ी खबर को अपनी मेन लीड बनाया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए। उप शीर्षक है, ऑन स्क्रीन मॉकिंग मामले में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सीबीएसई के अध्यक्ष सचिव हटाए। उप शीर्षक है, ओएसएम में गड़बड़ी पर सरकार सख्त, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। संसदीय समिति ने अफसरों से पूछे कड़े सवाल। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, मॉर्किंग विवाद में केंद्र ने सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाया। उप शीर्षक है, लोखंडे प्रशांत सीताराम होंगे नए चेयरमैन। री इवेल्युएशन के लिए 6 जून तक खुला रहेगा पोर्टल। इसी के साथ ही नवभारत टाइम्स ने भीषण गर्मी और मौसम से संबंधित खबर को अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जून से अगस्त तक अलनीनो के सक्रिय होने की 80% आशंका है। अलनीनो ऐसी मौसमी स्थिति है जो दुनिया भर के तापमान और बारिश के पैटर्न को प्रभावित करती है। इसी के साथ ही अखबारों की अन्य सुर्खियां हैं, यूपी में माध्यमिक शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होंगे, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को सख्त जवाब मिला योगी। केजीएमयू दवा घोटाले में 3 बर्खास्त विभागाध्यक्ष हटे, प्रधानों को प्रशासक बनने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, जिला पंचायत की आर्थिक सेहत होगी और मजबूत, अतिरिक्त स्टैंप शुल्क में मिलेगा हिस्सा और हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, शहरों की बिगड़ती सूरत। पत्र लिखता है कि हमारे हर छोटे बड़े शहर में

0: अवैध एवं बेतरतीब निर्माण हो रहा है, ये स्थानीय निकायों के संरक्षण और उनकी जानकारी में होता है। अनियोजित शहर नगरी जीवन को केवल कष्टकारी ही नहीं बनाते, बल्कि वह विकास में भी बाधक बनते हैं। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां यहीं पर समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: वाह, खुशी की बातें हो रही हैं, खुशी की चर्चा हो रही है और विनय बहुत खुश हैं।
1: नहीं देखिए, लता जी की आवाज और ये बेहतरीन ट्रैक, हाँ। और खुश रहना बहुत जरूरी है और हिना का ये गाना मुझे बहुत पसंद है
0: जी। आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को पसंद है, सब सोच रहे हैं कि अरे हमारी और विनय जी की पसंद तो मिलती जुलती है।
1: तो आइए हम सब गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में इस गाने से शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: जी गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हो चुका है, 9:11 हुए हैं और ये जो बेहतरीन ट्रैक लता जी की आवाज भाई कानों में घुल सी गई,
2: बिल्कुल मीठा मीठा सरस घुल गया है।
1: और वैसे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो अगर आपकी पहली साइकिल के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं या साइकिल के फायदे बताना चाह रहे हैं तो हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर।
2: बिल्कुल, आपने टॉपिक भी दोहरा दिया और इसी को टॉपिक पर तालिब अंसारी जी ने भी मेल कर दिया और राजा कटरा बाराबंकी से इन्होंने मेल किया, बहुत सारे मेल आ गए। लिखते हैं आरजे रत्न मैम, आरजे विनय भैया जी, इन्होंने हम दोनों को संबोधित किया। लिखते हैं साइकिल मेरे बचपन पहला वहां था, लेकिन इसको चलाने के लिए सीखने में बहुत छोटी
1: SMS लैंग्वेज
2: हाँ खाई, तब जाके सीख पाए, बहुत चोटें खाई, बहुत चोट लगी। मेरी पहली बाइसिकल क्लास 4 में मिली, छोटी वाली मुझे मिली थी हाँ, लेकिन उसको जब हमें मिली तो बहुत खुशी थी, वो खुशी आज भी मुझे याद है, ऐसा तालिब जी का कहना है। अब तो सच बताएं बाइसिकल चलाने का मन ही नहीं करता, फायदे तो बहुत है लेकिन इसके, लेकिन थोड़ी दूर जाना हो तो बाइक से जाएं, बाइक से आज के वक्त ही भागदौड़ भरी जिंदगी में बाइक ही मुझे ठीक लगती है, इनका ऐसा सोचना है तो। लेकिन साइकिल की यादें आज भी इनके जहन

0: हैं ताली जी शुक्रिया मेल करने के लिए।
1: और साथ ही साथ सुधांशु जिन्हें हमें राधे राधे कहा है, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से लखनऊ से मेल किया है, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। टॉपिक पे कहना चाहते हैं कि मैं साइकिल चला नहीं पाता हूं, परंतु आज विश्व साइकिल दिवस पर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे अच्छा ओके तो इनको दिखाई नहीं देता है इसलिए मैं नहीं चलाता हूं, लेकिन विश्व साइकिल दिवस पर आज साइकिल चलाने के 5 फायदे बता रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस मिलता है, साथ साथ वजन पर नियंत्रण रहता है, मानसिक तनाव में राहत मिलती है और पर्यावरण को सुरक्षा मिलती है और आर्थिक बचत भी होती है। तो आपने तो बहुत सारे फायदे बता दिए। और एक बार इन्होंने अपने पापा के साथ साइकिल पर आगे के डंडे में बैठकर नानी के यहाँ जा रहा था, मेरे पैर में झुंझुनी सवार हो गई थी और मैं अच्छा नम हो जाती हैं यहाँ के जो पैर नम हो जाते हैं ये वो लिख रहे हैं और फिर इनका चप्पल गिर गया। अच्छा ये भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि जब आप साइकिल में बैठते हैं और आपके पैर एकदम सुन्न से जाते हैं और चप्पल गिर गया, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया।
0: बिल्कुल, एक पैर की स्पेशली गिर जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं।
1: थैंक यू सो मच सुधांशु जी इस याद को ताजा करने के लिए
0: जी। और साइकिल चलाने के फायदे को लेकर के घनश्याम सिंह जी ने भी मेल किया, लिखते हैं एडवोकेट घनश्याम सिंह नारायण नगर फैजाबाद रोड लखनऊ से इन्होंने मेल किया। रत्ना मैडम जी, विनय भैया जी को श्रद्धापूर्वक सुप्रभात और नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत दिल से नमस्कार घनश्याम जी। साइकिल चलाने में खून का दौरान सही रहता है, शरीर में दर्द नहीं होता और हाथ पैरों में दर्द नहीं होता अगर आप बराबर साइकिल चलाते हैं तो।
1: जी बिल्कुल। और वकील अहमद जी ने गुड मॉर्निंग कहा है और आप दोनों की आवाज अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व साइकिल दिवस की सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और साइकिल से खेतों में जाएं और साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इन्होंने बड़े सारे नाम लिखे हैं, सीतापुर से मेल किया, थैंक यू सो मच।
0: महेंद्र दीपन जी का मेल हम शामिल करने जा रहे हैं, आरजे आदरणीय आरजे विनय सर जी और आरजे रत्नम शुक्ला मैम को सादर प्रणाम, इनका मिल गया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। लिखते हैं राजस्थान से नागौर जिले के रूण गांव से आपका ये मेल आया है, ये प्यारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ बहुत ही चाव से सुन रहा हूं, आज का विषय साइकिल वाकई बहुत दिलचस्प है जी। आज दिवस ही ऐसा ही है कुछ महेंद्र जी, और साइकिल के साथ मेरी थोड़ी यादें अलग और एक डर भरी है। अच्छा, बचपन में जब हम छोटे थे तो मेरे बड़े भाई साइकिल सीखते समय गिर गए थे और उन्हें काफी चोट आ गई थी। उस दिन के बाद मेरे मन में साइकिल को लेकर एक ऐसा डर बैठ गया कि मैंने कभी साइकिल चलाने की कोशिश ही नहीं की। आज भी जब मैं किसी को साइकिल चलाते देखता हूं तो बस उन्हीं यादों में खो जाता हूं जो मुझे एक बार डर सा लगा था। वैसे भले ही मैंने साइकिल ना चलाई लेकिन जिंदगी की रफ्तार को मैंने हमेशा सकारात्मकता और अपनों के प्यार के साथ बनाए रखा है। आज के इस बेहतरीन शो के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, कृपया मेरा यह संदेश शो में शामिल कर लीजिएगा। आपने बहुत अच्छा सा संदेश दिया, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें होती हैं, लेकिन आपने पॉजिटिव रह करके सोचा साइकिल के बारे में महेंद्र दीपन जी, और उसका जो डर था वो भी शेयर किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना सुविचार हम तक पहुंचाने के लिए।
1: और साथ ही साथ रोशनी चौरसिया हमें सुन रही है, इन्होंने गाने की फरमाइश की है, ये अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से इन्होंने रजनीश चौरसिया का भी जिक्र किया है और आप हमारे आगे के प्रोग्राम में फरमाइश भेज सकते हैं।
0: धन्यवाद रोशनी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं अरुण कुमार कुशवाहा घमुइया से, विनय जी और रत्ना जी को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अरुण जी लिखते हैं मॉर्निंग मंत्र है, बहुत प्रेरक था, धन्यवाद। विनय जी का सदाबहार गीत सुनकर बाहर आ गई, अरे वाह। और साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको तथा सभी सुनने वालों साथियों को। एक जमाना था साइकिल हम सभी की हमसफर हुआ करती थी, 80 के दशक में एक साइकिल मेरे पिताजी के पास हुआ करती थी जिसे कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में केवल हाथ में लेकर के घुमा लिया करता था, बहुत अच्छा लगता था। हमें पहली साइकिल हाई स्कूल में आने के बाद पुरानी साइकिल मिली थी।
1: क्या बात है। और प्रवीण जी ने हमें मेल किया है, मुझे तो कभी भी साइकिल नहीं दिलाई, बड़े भाई को दिलाई। हाँ। वो लाल रंग की बिना डंडे वाली छोटी साइकिल थी, मैं साइकिल सीखते समय कभी गिरा नहीं, साइकिल चलाने से एक्सरसाइज हो जाती है और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये दर्द भी बहुत सारे लोगों का है, मेरा भी है। अच्छा। कि बड़ों को मिल जाती है साइकिल और वही साइकिल छोटों को दे दी जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो खट्टी मीठी यादें हैं और बहुत सारी बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक और एक और बेहतरीन गाना आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: program Good Morning Lucknow.
1: और वक्त हो गया है जब हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं मौसम के बारे में। चलिए आप बात करते हैं
2: जी। मौसम वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग।
3: जी गुड मॉर्निंग।
1: नमस्कार सर। जी सर आज के बारे में बताइए कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि बाहर तो एक ठीक ठाक धूप आ चुकी है, और क्या ऐसा मौसम का क्या इशारा है?
3: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि आज एकदम मौसम साफ रहेगा, दिन में थोड़ा धूप अच्छी रहेगी और गर्मी

0: एहसास रहेगा। ये सिलसिला आज कल इसी तरीके से रहेगा, बाकी परसों से थोड़ा सा बादलों की आवाज आई रहेगा और बीच में उसके बाद
1: दो दिन छिटपुट
0: वर्षा की संभावना बनेगी।
1: जी जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सर।
1: तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और हमारे साथ बहुत सारे मेल्स हैं, तो आइए हम एक दो मेल्स तो पढ़ेंगे।
2: जी, तो मौसम की बात जो हम कर रहे थे, जो भी सर ने बताया, तो आज और कल ऐसी धूप रहने वाली है। परसों से आपको अगर कहीं घूमने जाने तो आप प्लान कर सकते हैं।
1: नहीं, परसों से हल्का फुल्का बादल रहेगा, तो हाँ ठंडा सा एहसास होता है।
2: एक जैसे होता है ना कि पिकनिक प्लान कर लिया, या आपके जो पेंडिंग काम है उनको आपने लाइन अप कर लिया कि यही कर सकते हैं, और साथ में कुछ बढ़िया वाला, बिल्कुल चटर पटर वाला, एक अच्छा सा बढ़िया से कुछ साथ में अगर स्नैक्स भी घर से बना के ले जाते हैं या कुछ और भी बना के ले जाते हैं, तो फिर मौसम का मजा दुगना हो जाएगा।
1: और आज झोला नहीं दिख रहा है। कहा झोले में चटर पटर नहीं क्या?
2: हाँ चटर पटर है, थोड़ा सा कुछ है चटर पटर, उसमें सबसे मेन बात है कि सत्तू भी है।
1: क्या बात है, तो हम जब फ्री होंगे तो सत्तू खाएंगे, या जो भी इन्होंने झोले में छिपा कर रखा वो खाएंगे। फिलहाल हमारी जो मेल बॉक्स में कुछ छिपा नहीं है, सब ओपन है और बड़े सारे मेल्स है। हाँ। तो हम नवनीत सिंह जी से शुरुआत कर रहे हैं। तो नवनीत सिंह गुड मॉर्निंग कह रहे हैं हमें और आपको, कहते हैं मैं नवनीत सिंह चौक कोतवाली लखनऊ से हूँ, मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं, सारे गाने अच्छे लगते हैं। मेरी पहली साइकिल ग्रीन कलर की थी, वो साइकिल अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो छोटी हो गई थी, तब मैं 6 साल का था। अब मैं 12 साल का हो चुका हूँ और मैंने नई साइकिल ली है। मैं उसे रोज सुबह 5 बजे चलाने जाता हूँ। साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारा कंसंट्रेशन और बैलेंस भी बढ़ता है। क्या बात है,
2: बहुत अच्छी बात आपने लिखी। और जो हमने इसके साथ ही एक और दिवस बताया था जिसको हमने बोला था ग्लोबल वाला डे, तो वो ग्लोबल रनिंग डे भी आप सार्थक करते हैं, जो आपने बताया 5 बजे आप साइकिल चलाने जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी। इसके बाद किशोरी लाल बंसल जी का मेल शामिल किया है, लिखते हैं हांसी हरियाणा से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार किशोरी लाल जी। तेज रफ्तार जिंदगी के दौर में जहाँ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर बोझ बन रही हैं, वहीं प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में साइकिल एक बार फिर उम्मीद की तरह सामने आई है। ये केवल 2 पहियों का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और आत्म अनुशासन का संदेश बन चुकी है।
1: तो
2: बड़ी अच्छी बात
1: जी, बिल्कुल। और हमें देखिए मुनेश कुमार राज गांव भर हवैया लखीमपुर खीरी से मेल किया है, साइकिल दिवस की बधाई दे रहे हैं और हम दोनों को गुड मॉर्निंग का है, हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते हैं, कई साल से सुन रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि इनकी जो यादों की जो साइकिल है वो काली साइकिल मेरी पहचान थी, उसी पर बैठ कर स्कूल का रास्ता आसान था, जब सीखते गिरकर घुटने छिल जाते, फिर भी मुस्कान चेहरे पर और जुनून जवान था। आज साइकिल भी है, बाइक भी है मेरे पास, पर उस पहली साइकिल की खुशी की कोई बात ही खास थी।
2: बिल्कुल, आपकी यादों को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के साथ बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कर दिया, इसके लिए भी हम लोग को भी धन्यवाद और आपने मेल किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विनय, जो नवनीत जी का मेल अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें एक लाइन उनकी छूट गई थी।
1: अच्छा,
2: लिखा है सर मेरी छोटी बहन जो 5 साल की है वो भी मेरे साथ साइकिल चलाने जाती है सुबह।
1: अच्छा,
2: हाँ। ये तो बहुत प्यारी सी बात आपने लिखी है और उनको भी बहुत बहुत, वो भी खूब हेल्दी रहे और आपके साथ यूं साइकिल चलाती रहे, सीखती रहे। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है?
1: आगे गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रही हैं, और विनय भाई, रत्ना मैम, गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से प्रोग्राम सुन रही, अच्छा लग रहा है, एक नंबर के गाने बज रहे हैं। मुद्दे पर लिखूं कि क्या लिखूं, मैंने कभी भी साइकिल नहीं चलाई है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा,
2: चलिए कोई बात नहीं, आपने अपना अनुभव भी हमसे साझा किया गुलफ्शा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। अब बारी आती है राममोहन गुप्ता जी के मेल को शामिल करने की।
1: जी।
2: लिखते हैं इस बार अच्छा सा सजा के, इन्होंने लिखा स्कूल के दिनों में साइकिल ही थी सहारा, स्कूल के दिनों में साइकिल ही थी सहारा, है बात वर्षों पुरानी अब आ रही दोबारा, प्रतिदिन आधे घंटे ही साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए भला, जानता है जमाना, पर्यावरण की भी मित्र होती है साइकिल, न करती है प्रदूषण न ही धुआं और ध्वनि, सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल न चाहिए, भर के हवा मार के पैडल चलते जाइए, अब गियर और बैटरी वाली साइकिलें भी हैं उपलब्ध, पसंद करते हैं जिन्हें युवा भी। बहुत अच्छी छोटी सी बातों में आपने बहुत बड़ा सार लिख दिया है।

0: गुप्ता जी, आप अक्सर ऐसा सजा के लिखते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा मेल करने के लिए।
1: बिल्कुल, और आपकी लाइंस में ना एक अलग तरह की, पता नहीं कहाँ कहाँ से चुन चुन के आप शब्द लाते हैं और इतना पंक्तिबद्ध कर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों 9:27 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, और एक और कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद आपकी मेल्स और बातों के साथ हाजिर होंगे विनय और रत्ना।
2: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हैप्पी बर्थडे टू यू. जी हाँ, जिनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो उनको बहुत बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत शुभकामनाएं.
1: बिल्कुल, और बड़ा इंतजार करते हैं कि भाई गुड मॉर्निंग लखनऊ में ये सेंटेंस, ये वाक्य आए तो हम थोड़ी और खुशी से प्रिपरेशन करें सेलिब्रेशन की.
0: जी जी जी. तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, कई महान हस्तियां आज अपनी जयंती, उनकी आज जयंती है. तो आज के दिन जन्म हुआ था 1844 में बालकृष्ण भट्ट जी का, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार और निबंधकार थे. इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये प्रसिद्ध पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी. उनकी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है.
1: जी, तो साहित्य पत्रकारिता और गद्य के स्तंभ कहलाने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को हम नमन करते हैं. उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं जयंती. भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा जी की आज जयंती होती है. आपने भारत में बाल विवाह जैसी चिंताजनक प्रथा को रोकने के लिए बिल पेश किया.
0: और इनके प्रयासों से ही साल 1929 में शारदा एक्ट लागू हुआ, जिसने बाल विवाह रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए हैं. तो इनकी जयंती पर भी हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं.
1: जी, वैज्ञानिक, लेखक और पॉपुलर साइंस के संस्थापक एडवर्ड ह्यूमेंस जी की भी जयंती है, उनको भी हमारी ओर से नमन.
0: साथ ही साथ सोहराब फिरोज शाह गोदरेज जी की भी आज जयंती है, जो एक बड़ा समूह है उसके ये संस्थापक रहे हैं, और इन्होंने भारतीय उद्योग जगत में नवाचार और गुणवत्ता को नई पहचान दी, तो इन्हें भी नमन.
1: जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं तो सुरेंद्र खन्ना जी का भी आज, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और विकेट कीपर रहे हैं ये, तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय क्रिकेट टीम का भी प्रतिनिधित्व किया सुरेंद्र खन्ना जी ने.
0: जी, और 1956 में इनका जन्म हुआ था. ये अपनी जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी तेज विकेट कीपिंग और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी ये क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग उनके तरीकों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.
1: बिल्कुल, और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की तीसरी महिला न्यायाधीश रूमा पाल जी का आज 3 जून को जन्मदिन होता है.
0: और साथ ही साथ बजरंगी भाईजान फिल्म आपको याद हो

0: की।
1: जी बिल्कुल याद है।
0: और बजरंगी भाईजान में एक बहुत ही मासूम सी छोटी सी एक्ट्रेस थी।
1: जी आप उनकी बात कर रहे हैं क्या, हर्षाली मल्होत्रा की?
0: जी तो उनका आज है बर्थडे।
1: प्यारी सी मुन्नी।
0: हाँ,
1: तो हमें बिल्कुल याद आ गया, आपने याद दिला दिया। और 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में प्यारी सी चाइल्ड एक्ट्रेस जिनको हम लोगों ने मुन्नी का कैरेक्टर देखा था, और उन्हीं का रियल नेम शाहिदा है, और उनको हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे बोल देते हैं आज के दिन।
0: तो आइए बजरंगी भाईजान से ही ये गीत सुनते हैं। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, विनय और रत्ना है आपके साथ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
2: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
3: इतिहास के पन्नों में आज का दिन

0: जी दोस्तों, हर दिन खास होता है, हर दिन बहुत सारे दिवस मनाते हैं और हर दिन जो यस्टरडे है इतिहास बन जाता है। तो आज है 3 जून और 3 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करें 1918 की, तो 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी को राजभाषा माना गया था।
1: बिल्कुल, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 3 जून 1965 में एड वाइट नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी की थी।
0: क्या बात है। 1994 में चलते हैं तो भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया था।
1: और 3 जून 1985 को भारत सरकार ने 5 डेज वर्क वीक सिस्टम की शुरुआत की।
0: और 2004 की ओर चलते हैं तो केन फोर्ड्स नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने थे।
1: 1915 की बात करते हैं तो 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था।
0: 2005 में चले तो फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पर विचार करना शुरू किया था और साथ ही साथ 2008 में जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था और वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिल गया था। तो इन सभी बातों के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक और बेहतरीन गाना आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: नौ बज के 50 मिनट हो रही है, वक्त कह रहा है कि बहुत कुछ भी अभी बाकी है आप तक पहुंचाने के लिए। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में विनय और रत्ना है आपके साथ। तो चलिए आज के बारे में, आज के दिन से जुड़ी कि आप कौन सी गतिविधियां हमारे शहर में हो रही है, आप उनमें शिरकत कर सकते हैं, ये बताते हैं विनय।
2: बिल्कुल, और अंदाज़े लखनऊ की सामाजिक कल्याण शाखा अंदाजियंस हेल्पिंग हैंड्स की ओर से झुग्गी झोपड़ी के छात्रों के लिए लंच प्रोग्राम बुनियादी अकादमिक जानकीपुरम विस्तार में सुबह 11 बजे होगा।
1: बिल्कुल, और इसके बाद 9 दिवसीय श्री राम कथा सेवा अस्पताल सीतापुर रोड शाम 5 बजे से होने को है, वहां आकर आप जाना चाहें तो जरूर जा सकते हैं।
2: बिल्कुल, आप शिरकत कर सकते हैं इन दोनों ही डेज में। और हम सभी जानते हैं आज है विश्व साइकिल दिवस, तो विश्व साइकिल दिवस पर सुबह लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक रोड शो किया है।
1: जी, वो आयोजन हो चुका है, और उसके बाद कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया और क्वांटम नेटवर्क्स के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होने को है आलमबाग के एक होटल में शाम 6:30 बजे से।
2: तो इन सभी में आप चाहें तो प्रतिभाग कर सकते हैं। और हमारे लिसनर से हमने एक सवाल पूछा था कि पहली साइकिल के बारे में और साइकिल के फायदे, बड़े सारे मेल्स हैं जो हमारे पास अभी भी हैं, तो आइए हम उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं दोबारा। और राधे श्याम जी ने हमें, मास्टर राधे श्याम शाक्य कैसगंज से गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं विनय को और रत्ना को, यानी हम दोनों को। और ये लिखते हैं कि मैंने साल 2000 में 800 रुपये में साइकिल खरीदी जो आज भी मेरे पास है। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ तो उसको लेकर जाता हूँ, जिससे मैं फिट रहता हूँ। प्रोग्राम में सॉन्ग मस्त प्ले हो रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।
1: वाह, उसके बाद जावेद अख्तर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। इनका मेल है कि विनय और रत्ना जी, साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने एक साइकिल दिलाई थी, जिसको चलाते चलाते बड़ा भी हुआ। वो साइकिल आज भी मेरे पास है। आज वो साइकिल से चलते हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और कैंची चलाते चलाते सीखते गिरते पड़ते साइकिल को चलाना सीखा है मैंने। और आज भी साइकिल का महत्व उतना ही है जो पहले थी। साइकिल चलाने से हमारे पूरे बॉडी की वर्जिश होती है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। थोड़ा जल्दी में लिखकर मेल किया है, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार जी रकीबा शाहीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और साथ ही साथ मोनू सेठ जी ने हमें मेल किया है, एक पंक्ति लिखी और उसके साथ लिखते हैं कि बचपन में हम और बड़े भैया सोनू जी दोनों खूब लड़े हैं। अच्छा। जब स्कूल जाने के लिए भैया को नई साइकिल दिलाई गई और हमें साथ में बैठकर जाने को कहा गया, तो हमने कहा हमें भी साइकिल चलाने दो।

0: तो भैया कह रहे थे कि गिर जाओगे, हमने जिद कर ली, फिर क्या, भैया जी को बैठा कर चला रहे थे, शान से अचानक ब्रेक लगा दी और गिर गए, पैडल टूट गई, भैया ने भी धुनाई की, घर में भी खूब धुनाई हुई, वैसे आज भी साइकिल है और नाना जी ने भैया को खरीद के दिया है।
1: तो वो जो धुनाई है, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों को दूसरे ढंग से समझाया जाता है और दूसरे ढंग से टैकल किया जाता है। खैर, ये आपने अपनी एक बढ़िया सी याद लिखी बचपन की, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेली कला गुसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से मेल कर दिया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लिखा, बबीता राव जी का मेल आया, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे फेवरेट आरजी हो और गानों का चयन हो और प्रोग्राम अच्छा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना मोहब्बत दिखाने के लिए एफएम रेनबो के साथ। और हैप्पी वर्ल्ड बाइसिकल डे पर इन्होंने सबको लिखा है, सभी को विश किया है। और मैम जी, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने अपने पापा की बड़ी बड़ी साइकिल बचपन में चलानी सीखी थी, मुझे किसी ने नहीं सिखाई है। मैंने सबसे पहले कैंची चलानी सीखी थी और मैं कई बार गिरी, मेरे घुटनों में कई बार चोट भी लगी थी, फिर धीरे धीरे डंडा भी चलाना सीख लिया था और मुझे 9th क्लास में साइकिल मिली थी। मैं बहुत खुश थी, मैं अपने घर से स्कूल तक साइकिल से 15 मिनट में 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंच जाती थी। उस खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं कितनी खुश हुई थी। उसके बाद मैंने अपने भैया की बाइक भी खुद से चलानी सीखी थी। अच्छा, बाइक भी चलाना नहीं, उसे स्कूटी मिलने पर वो खुशी नहीं मिलती थी जो साइकिल मिलने पर हुई थी। और आज भी मैं साइकिल चलाती हूँ, साइकिल चलाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी इतना अच्छा सा मेल करने के लिए, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए।
0: और साथ ही साथ हमें निधि चौरसिया ने मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और हैप्पी साइकिल डे सबको कह रही है। वैसे इन्होंने निधि चौरसिया के मेल आईडी से मेल किया, इनका नाम है शालिनी चौरसिया फ्रॉम बालागंज लखनऊ, और ये लिखती हैं कि आज के सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, गिविंग मी टू मच एनर्जी। जर्नी ऑफ माई बाइसिकल 2016 में मुझे मेरे पापा ने 24 इंच वाली साइकिल पे बिठाया था, तब मैं 11th क्लास में थी और लॉन्ग डिस्टेंस से स्कूल जाया करती थी। और बहुत सारी मेमोरीज उन्होंने लिखी है और बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमें मेल करने के लिए, शालिनी हमें मेल करने के लिए
1: जी। और अब वक्त बहुत कम रह गया, मोनू कुमार रेडियो श्रोता है, उनका मेला है, साइकिल और जीवन दोनों आपस में बहुत गहरा रंग है, अद्भुत संबंध है, जैसे साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पैडल मारना और संतुलन बनाना पड़ता है, वैसे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर कर्म और धैर्य की आवश्यकता होती है। मोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी सी बात मेल करने के लिए
0: जी। और वारिस जी ने फिर से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी अपनी यादें हमसे साझा करने के लिए। और सोनू परवाना हमें मेल कर रहे हैं कि बचपन याद दिलाकर इमोशनल कर दिया, हमारे नाना जी की साइकिल है, नाना जी तो नहीं है, एक बार उनकी साइकिल लेकर घुमा रहे थे तो चैन टूट गई थी, फिर नाना जी ने हमें फुकनी से मारा। आज समय बदल गया, साइकिल उसी फुकनी पर टंगी हुई है, न साइकिल का इस्तेमाल होता है, न ही चूल्हा जलाने की फुकनी। ये बात तो है, देखिए
1: जी,
0: फुकनी से मुझे बड़ा याद है, हम लोग ना उसे खेला करते थे
1: जी। बड़े अच्छे अच्छे से नाम आ रहे हैं। और आंचल शेठ जी लिखती हैं, बचपन को कौन भूलना चाहेगा, मौज मस्ती और आनंद भरा जीवन, टेंशन फ्री, दिक्कत कोई नहीं थी, पिताजी हम लोगों को साइकिल पर बैठा के निमंत्रण में ले जाते थे। अरे वाह, हाई स्कूल में भाई जी ने, मोनू भैया जी ने साइकिल लाकर दिया था, अब शादी हो गई, अब साइकिल के बारे में आगे लिखूं बस यादें ही हैं। तो आंचल शेठ जी आपने बहुत अच्छी बात लिखी और याद आपकी ताज़ा होगी, इसकी हमें खुशी। बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के। रोशनी रावत जी का भी मेल आ चुका है, आगे आप लोगों का मेल शामिल करने की कोशिश करेंगे, चूंकि 9:57 होने को है। तो विनय
0: और वक्त कह रहा है कि अब इजाजत ले लिया जाए, गुड मॉर्निंग लखनऊ से, हम इजाजत लेंगे, हम दोनों इजाजत लेंगे, लेकिन रत्ना आपसे जुड़े रहेंगी, हम किसी रोज आपसे फिर से मिलेंगे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, एक कमर्शियल ब्रेक और एक बेहतरीन गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 13 में 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर वो गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है। G20 बैठकों की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनेगा। बैठक में देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ और विशिष्ट प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री राजभर ने कहा कि अभियान के माध्यम से श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों और युवाओं तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और योग को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो रही है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

सभी श्रोता पंचन के राम राम राम जुहार नमस्कार सादर प्रणाम और छुटकन का बहुत प्यार प्यार बहुत स्नेह और यूं मीठी मीठी धुन के साथ हमारे कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ आप सभी सुनने वाले श्रोता पंचन का बहुत बहुत स्वागत है और हम का बात कही कब हमार देशवा ना किसी गुलदस्ते से कम नहीं बा हर राज्य के अलग अलग फूल और अलग भाषा की अनोखी बात है कुछ यू कार्यक्रम होत है हम करत हैं और माटी के जादू और संस्कृति के खुले खेत खलिहान माँ दादी नानी के आंगन माँ और त्योहारन की रौनक माँ यू लोग गीत उपजत हैं आप सभी जाना तो आप सभी गुनगुना तो कैसे कि खेत खलिहान में जब हम कोनो काम करते हैं कोनो बद कही करते हैं कोनो काज से आवाज आवत हैं तब यू लोग गीत बहुत साथ देते हैं हमारा तो इन सब बातन के साथ सबसे पहले चलो वंदन किया जब प्रभु के ओई के बाद बहुत नीक नीक गवने तुम तक पहुँचा तो रत्ना शुक्ला कहते हैं कहूँ ना जाइयो 107.7 FM रेनबो के साथ बने रहियो कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

बहुत ही नीक नीक गाने बजा दिए आप सभी लोगों के लिए। और यो गीत जो मधुर धुन पर आधारित है पहाड़ों की ठंडी ठंडी संस्कृति, वहाँ की पहाड़ी की ठंडी ठंडी बयार, ये उत्तराखंड के पहाड़ों में पनपने वाली मीठे प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और मायके की यादों को दर्शाती है। या कह लें कि इस गीत पर आप डांस भी कर सकते हैं, पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है उसको सोच के आप थोड़ा मटक भी सकते हैं, ठुमके भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं पहाड़ों पर रहते हैं तो फिर क्या कहने, बस इस गीत को एंजॉय करिए।

भाई हमका तो बहुत नीक नीक गवनई लगी यू और अति खूबसूरत वादियाँ अति खूबसूरत गीत के साथ अब आगे बढ़ाते कार्यक्रम सुगंध मांटी की माँ। अब आपकी हम सफर आपकी दोस्त आपकी साथी का कहे जा रही है कि अब अगले गीत की ओर बढ़ाते हैं तो यू गीत कुछ ऐसे है कि का बताई ठुमक ठुमक के झूम झूम के यू गा रही हैं और कह रही हैं का रेशम का रुमाल गले में डाल के दिल्ली का सुरमा लगाए के खड़ी हैं ठाड़ी हैं ना जाने कत्ती कत्ती देर तक इंतजार कर रही थी। तो चलो सुना जाए यू गीत का उसके बाद हम तोरे लोगों से अच्छो पूछब का पूछब आप मेल करके हमको पठे सका तो हम आप बताए बस सुनते रहो कार्यक्रम सुगंध माटी की 107.7 FM रेनबो पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और तनुक, देर पहले हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आज हम कोनो बात आपसे पूछा, आप मेल करके जरिए, मेल के जरिए हम बात बताऊ भाई, तो जब आप हमका का बताओ वो हम पहले आपसे बताए तो दे। आप मेल करियो तो कौने बात पे मेल करियो, वही बात हम आपसे शेयर करे जा रही हैं। यूँ बात है कि कौन हमका यहाँ आकाशवाणी में बताएं, आकाशवाणी में हमसे कहीं नहीं कि जाना तो भाई नहीं, आज विश्व साइकिल दिवस बाटे। हम कहीं अच्छा, तबे हम जब देखा रहा सुबेरे कि सड़क पर बहुत लोग साइकिल चला के, चाहे वो मनई रहें चाहे वो लड़के में बेटे वा रहें, सब जावत रहे, तो पता नहीं कहाँ बात रहा, झुंड के झुंड निकलत रहा। तो आप लोग यूँ बतावा कि विश्व साइकिल दिवस का त्यौहार

सबसे कैसा नाता बनत है, कैसे नाता बनत है आपका साइकिल दिवस से अगर बात करी तो, कब साइकिल के सवारी करे हो, केहू के संग करे हो कि काही संग करे हो कि का अकेले अकेले करे हो साइकिल की सवारी, या खुद खेत मा पगडंडी बाजार हाट खरीदारी स्कूल कहूँ साइकिल चलावे का अनुभव भवा तो हके कि नाही, यू आप हमको बता सको तो fmakashwanilakhnow@gmail.com पर मेल करके आप हमको बता सको तो। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, जिनके नाम है सुगंध माटी की। नीक लागत है कि नहीं कार्यक्रम का, है कि ये कार्यक्रम की जो नाम है ना, यही में अति खुशबू आवत है भारत के विभिन्न विभिन्न जगह की, जो विभिन्न विभिन्न भाषा के पानी के कोस कोस के बदलत है ना पानी और मोहल्ला टोला, तो अति नीक नीक कार्यक्रम का नाम है कि कैसे नहीं नीक लगे, हमको तो बहुत नाम से बहुत ज़्यादा खुशी होवत है। तो चलो ये सब बात हम करब, लेकिन हम कहते हैं कि पहले आप लोगों का एक गीत सुनवाए दें, तो गीत सुनवाए खातिर का करे के चाहिए, बस आप लोगों के गीत सुनवाए के खातिर हम यू गीत बजाए दी थे।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी।
5: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
4: शत्रुपा से।
6: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
4: शत्रुपा से।
7: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है ना,
8: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
8: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
8: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
8: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
8: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
9: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

और हम तोहरे सबसे पूछल रहे कि का आप हमको बताओ कि कबो साइकिल की सवारी करे हो, केहू के संग करे हो, या खुद खेत खलियान मा, पगडंडी मा, खरीदारी करे मा, स्कूल जाए मा, साइकिल चलावे के तोहर का अनुभव भवा, तो यूँ हम जानना चाह रही तो कौन कौन का मेल कर दी है। देखो सबसे पहले हमका लगा थे कि मानसी मलोडे मेल कर दी है, लेकिन यू तो लिखिन है कि हमका गीत सुनवाए दो, तो गीत गवनाई तो तुमका तो का सुनावा जाइब दोपहरिया में, ठीक है। तो मानसी जी और मेल करो, जब हम ये बात सुनत हुई हो तो इसे संबंधित मेल करो हमका। और का लिखिन है यू गीत सुनवाए खातिर लिख दी है झग्गा राम साहू जी, तो इके भी अगले कार्यक्रम में मेल पढ़ा जाई। भैया मनु सेठ कछु लिखिन है, सादर नमस्ते आपका मनु सेठ भैया, कैसे हम बहुत नीक नीक है कार्यक्रम सुगन बाटी के कार्यक्रम प्रोग्राम के बहुत इंतजार सभी का बहुत रहत है, हमने नानी जी भी ये प्रोग्राम जरूर सुना थे, आप सबके बतकही और अवधि भाषा के साथ गवनई बहुत नीक लागत है। हाँ गवनई तो बहुत नीक नीक हमका हुआ हमाऊ का लागत है। और यूँ हम जाने के चाह रही ना साइकिल वाली बात, तो आज कहा लिखियो नानी जी का हमारा प्रणाम पठे हो कि नहीं हमका कहे की जरूरत है, नानी अम्मा आप तनिक मुस्काए दे और स्वस्थ रहो, निक निक खायत पीवत रहो, कहे से कि स्वास्थ्य ही सब कुछ बड़ी पूंजी होते हैं। तो नानी के गोड़ लगे के साथ हम आगे आपका मेल पढ़त हैं, अवधि भाषा के साथ गवने बहुत नीक लगा थे। और आज आप साइकिल की बात करे हो, तब जाए रहन है आज नाना जी वाली साइकिल आज बनवाई और वही का फिर चलावे आस पास।

मैं जरूर साइकिल से जा। तो यू आप अच्छा काम करे जा रहे हो मनु सिर भैया, कैसे कि नाना जी साइकिल दिन रहे, अब वो नेक नेक तोहफा है नाना जी के, तो तोहफा के ऐसे संभाल के रखे हो यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात, अब बनवाए जा रहे हो, बहुत ऊपर से ऊपर अच्छी बात है, बनवाए के आज जरूर साइकिल दिवस तुम मनाइयो, तो बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से साइकिल बना के शाम थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाए, दोपहरिया बीत जाए, उसके बाद साइकिल से तनिक घूम घाम आए वो है। उसके बाद का कौन लिखे हैं आपका क्या मेल करीन है, ये लिख दिन है मोहम्मद आसिफ जी का लिखिन है, यू लिखिन है तेलंगाना से सुन रहा हूँ एफएम रेनबो लखनऊ प्रदेश में, दोस्त के साथ रहता हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुगंध माटी की किसको तो सुनकर मुझे अपना गांव याद आ जाता है। रत्ना शुक्ला मैम कुछ नाम है जो ले लो, साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, नेहा अंसारी, गुलफ शाह आप्पी और राज कटरा बारामंकी का रहने वाला हूँ, तो आप हमारा बतकही ना सुने हो है ना मोहम्मद आसिफ जी, कैसे कि बतकही सुन के उससे संबंधित कनेक मेल करो तो कार्यक्रम में चार चांद लगी है ना, आप सब लोगों के लिए ये कार्यक्रम सजा के लावत हैं। उसके बाद मोहम्मद आसिफ फिर एक मेल कर दीन है, तो वो बस यही यही बात लिखी है, किसका का कहते हैं सेम सेम बात लिखी, सेम सेम बात लिखी। और नानी जी कबो साइकिल चलाए हो, अच्छा मोनू सर भैया लिखे नानी कबो साइकिल चलाए हो, नानी कहीं नाती हम साइकिल से बहुत डराते हैं हम कहे, हम कहीं कहे तो कहीं हम अपने बप्पा जी के साथ बचपने में साइकिल से मेला जात रहे और हमार पैर चक्का में फंस गात रहे, तब से हम साइकिल से बहुत डरे थे। तो अच्छा चक्का में पैर फंस गवा रहा नानी के, तब भैया अगर डरा थे तो ठीक रहे दो, बैठे दो और बूढ़ बने हैं ओके खाए पीवे दो और सभी लोगों के स्वस्थ रहें और उनके साथ नीक नीक गवने के आनंद उठावे नानी जी, ऐसे करो ठीक है। कुलदीप गुप्ता का लिखे ने, कुलदीप गुप्ता लिखे ने कि कार्यक्रम सुन रहा हूँ बहुत पसंद आ रहा है, विश्व साइकिल दिवस के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे लगे तो बाइक है लेकिन जो दूर कहीं जाना होता है तो बाइक से जाता हूँ, वरना काम के लिए रोज हम साइकिल से जाते हैं, खेत जाना है या शॉप पर जाना है, खरीदारी करने जाना है, वैसे भी एक दिन में करीब 6 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी से लिखे हैं, यो तोहार विचार हमका बहुत नीक लगा, कहे से कि दूर जावे के है तो बाइक निकाल लेते हैं, ये क्या कहते हैं फटफटिया है ना, और फटफटिया से जल्दी पहुंच जाते हैं और चलावे में भी कम मेहनत लगाते हैं। वही के बाद अगर नजीके जागत हो तो नजीके जाके बखत कुलदीप भैया कहा निकाल लेते हैं साइकिल और 6-6 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है और ईंधन के बचत भी है। तो कुलदीप भैया यू तोहार जो बात है सबके लिए एक संदेश बन के आई गई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मोहम्मद आसिफ जी कछु लिखे हैं, यू तो का लिखे हैं ये तो हम नहीं जान सकते लेकिन हाँ पढ़े की कोशिश करते हैं, का लिखे हैं का लिख दें भैया, यू लिखे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से लिख रहा हूँ, माटी की सुगंध कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, साइकिल की बात करत हो तो मैम हम बचपन में साइकिल बहुत चलावा है और गिरे भी हैं और पापा की साइकिल बड़ी होती थी तो हम उसको कैंची चलाते थे और गाड़ी पर नहीं बैठ पाते थे, तो बाद में पापा हमको छोटी साइकिल लेके दीन और गांव जाते समय तो छोटे बच्चों को साइकिल चलाते देख उनकी साइकिल चलाने का मन करता था, तो हमको छोटा साइकिल मिल गई। तो यू आप अच्छी बात बताए दे मोहम्मद आसिफ जी, और जितने नो छोट छोट बच्चन लड़कन बच्चन आज सुनत हुई है ना ये कार्यक्रम, तो आज शाम के ऊ फेरी लगे हैं साइकिल तो अपने नीक नीक छोटी छोटी साइकिल से।

एक बाद बहुत सारे मेल और दिखात हैं रोशनी रावत वकील अहमद इंद्रपाल विजयपाल जी तो हम पढ़ब तो के सबके लगे आओ लेकिन ओके पहले ये गाना सुन लियो तनिक।

और आप लोगों का मेल शामिल करे से पहले चलो हम तनिक बात कर ले सत्तू के खाव और पीवित रहो कैसे कि जौन मौसम चल रहा है ना बतावन रहे कि दो दिन तीन दिन और तनिक गर्मी पड़ब ओ के बाद तनिक राहत मिली मौसम और बादल छाए रहे ओ के बाद तनिक छुटुक पुटुक बारिश होए के संभावना है ना तो गर्मी में सत्तू सबे के पिए के चाहिए जहाँ यहाँ अभिषेक मीठा शक्कर डालिए ला मीठा शक्कर डाल के चाहे नमक दे गर्मी के असर उसे खाए के से खत्म हो थे सत्तू के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते जैसे शरबत की बात कर लें शरबत लगे सभी को खास

पीवा थे गर्मी में ठंडक लगे खातिन और यही कहा थे अच्छा शरबत लगे सभी को खास गर्मी में ठंडक लगे यही रहे अब आस हम कई आदा गवा और यू जो सत्ती को पेय पदार्थ है वही पिए के चाहिए अब जैसे सत्तू की बात करब तो सत्तू बहुत चीज के बना थे जैसे सात अनाज के बना थे जानत हो कि नहीं अगर सात अनाज के नाम लेवे के चाहिए तो हमको जहां तक तने के याद आवत है जौ चना अरहर मटर खेसरी कुलता मक्का इन सातों का सत्तू बना सकते हो आप और चीनी नमक खांड धनिया पुदीना की पाती स्वादानुसार शरबत पी सकत हो और चाहे आप ओका घोट के खा लो जौं तुहार मर्जी हो ऐसे सत्तू का सेवन करत रहो तब है गर्मी के मौसम अपन बचाव कर सकत हो यू हमार सुझाव है और बाकी तो जैसा तुहार स्वाद कहे वही जैसा तुहार मन कहे वैसा करे हो

चलो हम सत्तू की बात कर लिया तुम सबसे, उसके बाद अब आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है अभी। ये तो जो आपके बीच में गीत आया ना, ये महाराष्ट्र की संस्कृति को झलकाता हुआ ये गीत था, वहाँ की मराठी भाषा में लावणी गीत था ये। और इस गीत के साथ बहुत लोगों को ठुमकने का मन कर रहा होगा, भले वो किचन में काम कर रही हूँ लेकिन वो दिन या अपनी संस्कृति या अपनी माटी की सुगंध से जब वो जुड़ती हैं तो ज़रूर उनका मन कर रहा होगा थोड़ा सा ढिंचक ढिंचक ढिंचक ढिंचक वाली थोड़ा सा डांस वांस करने का। रोशनी रावा जी की बात कही हम करे जा रहे हैं, का लिखिन है यू मेल की पाती में का लिखिन है। और जल्दी जल्दी मैं दू

से जब वो जुड़ती हैं तो जरूर उनका मन कर रहा होगा थोड़ा सा ढिंचक ढिंचक ढिंचक ढिंचक वाली थोड़ा सा डांस वांस करने का। रोशनी रावा जी की बतकहिया हम करे जा रहे हैं, का लिखिन है यू मेल की पाती में का लिखिन है। और जल्दी जल्दी मैं दू मेल कर दी है। प्यारी प्यारी दीदी कैसे हैं, बहुत उम्दा प्रस्तुति, बहुत मन प्रसन्न हुई गवा, प्रोग्राम बहुत शानदार धमाकेदार लाजवाब बिंदास लागत। अरे वाह रोशनी रावत जी, का भाषा लिखे हो आप, और ग्राम व पोस्ट बम्हाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से लिखी है। चंडीगढ़ से यू वक्त ये कार्यक्रम सुनाते हैं, और मेरी माता श्री भौजी बबीता राव नीलू शर्मा दीदी गुलफ्सा सिद्दीकी दीदी के सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम लोग फोन पे बतियाई हैं और बहुत झूम झूम कर नाच कर रहे थे हम कैसे कि यू कार्यक्रम में मस्ती लेके झूमे के बिल्कुल बेरिया होते और ऐसे ही खुश रहे के चाहिए जिंदगी में। और साइकिल बचपन से ही साइकिल चलाना सीख लेहिन था हम, बहुत मजा आवत रहा बाग जाए जब करत हम और करत रहे वही के बाद साइकिल से और सबको बिठा कर ले जावत रही हम। हमारे घर में 3 साइकिल वही वक्त में थी, एक पापा की हो तो रही, एक हमारे भैया की रही और एक ऐसी रही जैसे हम स्कूल जावत रही और रास्ते में रेस लगावत रही। अरे दद्दा रेस में ज़्यादा, हाँ अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो यू कभी मनमौजी के लिए कर सकत हो, लेकिन रेस लगावे में कहूँ कहूँ नुकसान ना हो जाए, है ना, यू ध्यान रखे के चाहिए। रोशनी रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेल करे खाते ना। उसके बाद कौन आ गए हैं, वकील अहमद जी आ गए, कहा लिखे ने, नमस्ते आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, सुगंध माटी की कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं। इस समय चाचा अनीश अहमद की बाग में है, विश्व साइकिल दिवस की सभी को हम हैं बाग में और साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन रिंकी बिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी जी एमन नवाब जी, इन सब के नाम इन्होंने इसमें शामिल करे हैं तो सभी का नाम हम ले लिए हैं। वकील अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करे खाते, इन कार्यक्रम सुने सुनत रहो और बने रहो 100.7 यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। ठीक है तो का करिए, मेल पढ़ी कि गौ नहीं सुनवाई दी, चलो मेल शामिल कर लेते, कैसे बहुत मेल आए रहे, सब बने रहे और सब मुस्कात रहे, हम यूँ चाहते हैं। इंद्रपाल मिश्रा जी का लिखिन है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों को का सभी हो जाता है व्यायाम। अच्छा साइकिल से बहुत फायदा होता है, कोई खर्चा नहीं लगाते, चालान नहीं होते यूँ बहुत खास बात लिखिन है कि कोई खर्चा नहीं लगाते, चालान नहीं होते, डीजल पेट्रोल नहीं लगाते, 40 किलोमीटर तक हम साइकिल चला सकते हैं। अच्छा साइकिल से ही आवत हैं यू इंद्रपाल मिश्रा जी, ग्राम अमृता माहौली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, लेकिन अच्छा 40 किलोमीटर साइकिल चलाओ तो आप तो भाई बहुत मेहनत लागत हुई और साइकिल से स्वस्थ रहो आप और यू बिना कौन खर्चा की यू सवारी चलावत रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपाल यादव जी का लिखे हैं गोड़ लागत है, नहीं नहीं नमस्कार और सादर प्रणाम विजयपाल जी, साइकिल दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत इंतजार रहता है दीदी, आज भी 3 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं और 3 किलोमीटर चलाते हैं, बहुत अच्छा, कई लोग तो साइकिल छुए के नहीं चाहते, लेकिन आज के दिन लोगों के फिर से एक बार मेल जोल बढ़ाए के साइकिल दिवस मनाए के और साइकिल के द्वारा सवारी करे के खातिर हम जागरूक कर रहे हैं। विजयपाल यादव लिखे ने ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। अरुण कुमार जी का लिख दिन है FM आकाशवाणी में, का लिखे ने अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया से, और मॉर्निंग मंत्रा बहुत प्रेरक रहा और अवधि भाषा में ईमेल लिखाई की कोशिश कीन है, कोनो गलती हो तो माफ़ कर दियो, कार्यक्रम बहुत नीक जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम सुगंध माटी बहुत नीक लग रहा है, पुरान याद सब ताज़ा हुई गई बहुत अच्छा अच्छा मेल करे हो आप अरुण कुमार जी, और अवधि भाषा जो में जौन तुम मेल भेजे हो ना वो हमका मिल गवा है जो पढ़े हो आप, और बहुत नीक मेल करे हो, तो अरुण कुमार ऐसे ही बने रहो यू चैनल के साथ। गुलफ्सा जी लिखिन है कि नमस्ते रत्ना मैम, गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम निक लागत है और बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह से साइकिल साइकिल हो रहा है, मुझे भी साइकिल चलाने का मन कर रहा है, लेकिन हम साइकिल तो नहीं चलाते हैं, लेकिन जो उसमें घंटी लगी होती ना वो बहुत बजती थी, जिसकी साइकिल में भी घंटी लगी होती थी मैं तुरंत बजाने

लगती थी, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा वही एक बात करा था जो बोला थे ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन, ऐसा कछु बहुत याद आवा है का तुमका बचपन की याद? तो चलो नहीं चला पावे तो का हुआ, साइकिल चलाए से थोड़ी ना साइकिल दिवस मनावा जाता है। साइकिल दिवस के बारे में जागरूक कर रहे हैं, साइकिल बहुत नीक होते स्वास्थ्य के लिए, ईंधन बचावे खातिर। तो यूँ सब बात करके सब श्रोता पंचन से हम बात कही कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। तो उसके बाद अब हमका साइकिल से बहुत से काम हो जाते हैं जाने, तो जो बहुत से काम होते उनमें एक यू काम भी होते, कैसे ई गवनई में सुना हूँ।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

और यही गीत के साथ आप सबका बता दें कि कार्यक्रम का वक्त बिल्कुल समाप्त हो गया, कहे से कि ये अखबार समाचार भी पढ़े के आप तक पढ़े के तो रत्ना शुक्ला के कार्यक्रम सुगंध माटी की से दे इजाजत है और बने रहो 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में पेट्रोलियम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में श्री पांडे ने नेपाल एवं बिहार की सीमाओं से जुड़े जनपदों में पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं तथा तकनीक आधारित शिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है, जिनका तबादला कृषि और किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में किया गया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री हिमांशु गुप्ता का स्थान लिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM।

0: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है और खुश आमदीद है। 11:11 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे शुरू हो चुका, मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन बातें भी होंगी, आपके संदेश भी आएंगे। ये सब कुछ होगा जब कार्यक्रम में आप शामिल होंगे, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और ये वो कार्यक्रम है जब आपके प्यारे से संदेश के साथ हम आपकी बात, आपका नाम, आपके संदेश को ऑन एयर करते हैं। और आप संदेश कहाँ भेजते हैं आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं क्योंकि हमें आपको बताना है। वो मेल आईडी है fmakashwani@lucknow.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें डायल भी कर सकते हैं, भाई सबसे अच्छी बात यह है। और डायल जब करेंगे तो कोड है लखनऊ का 0522, इसको मिलाएगा, उसके बाद 2238845 या फिर 2238852, इन नंबरों को डायल करके आप अपने प्यारे से संदेश के साथ अपनी आवाज़ श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं और जुड़ सकते हैं 100.7 FM रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। तो बस देर किस बात की है, और लाइन भी ब्लिंक कर रही, देखते हैं किसकी आवाज़ हमसे जुड़ सकती है। सुनते रहिए, बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: हमारे प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में हमारी पहली कॉलर है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैम,
0: ठीक है। हाँ बहुत अच्छी हैं आप। इतनी उदासी के साथ क्यों बोले, नाम तो बता दीजिए अपना।
1: जी मैम प्रीति बोल रहे। प्रीति,
0: प्रीति जी कैसी हैं आप, सबसे पहले बताइए।
1: मैम ठीक है, हम भी, गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: गर्मी बहुत पड़ रही, तो चलिए उम्मीद है कि दो दिन बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।
1: जी मैम
0: ठीक है। हाँ और अब बताइए कि आप क्या करना पसंद करती हैं, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे।
1: जी मैम
0: क्या करना पसंद है आपको?
1: मैम करना क्या, हम हाउस वाइफ है, करते ही रहते हैं, खाना बनाना, घर पर ही रहते हैं।
0: अच्छा जी, तो चलिए प्रोग्राम आप सुनती रहती हैं फैमिली रेनबो के?
1: जी मैम रोज सुनते हैं, पर आपको कॉल शाम को तो 7 बजे मिलाते हैं, हेलो फरमाइश से हमारा कॉल ही नहीं लगता है।
0: कोई बात नहीं, चलिए शाम को 7 बजे नहीं, सुबह के 11:16 पे आपकी कॉल लग गई, याद रखिएगा आज का दिन। ठीक है, तो प्रीति आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को?
1: जी मैम सभी श्रोताओं से तो यही गुजारिश है कि धूप में जहाँ तक हो सके धूप में ना निकले, जहाँ तक मतलब हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मतलब घर पर ही रहे, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे, बच्चियों के लिए पानी दाना रखे।
0: अच्छा, पक्षियों की देखभाल करें और धूप में निकलने से बचें, है ना?
1: जी
0: जी, चलिए बहुत अच्छा सा संदेश है आपका। और जो लोग सोच भी रहे होंगे कि चलो दोपहर में निकल के ये काम कराते हैं वो काम कराते हैं, तो शायद आपकी बस उनके थ्रू
1: टाइम जाए वही 3 से 4 बजे तक उधर
0: जाए। जी 3 बजे के बाद जाएं, 4 बजे के बाद जाने की कोशिश करें, जैसा फिर काम हो। ठीक, तो प्रीति जी आपका बहुत प्यारा सा संदेश और जो आज के दिन पे भी लागू होता है, तो इस बात के साथ आपका आज फोन लगा इस बात को भी याद रखिएगा। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में सुबह 11:16 पे। ठीक है, ओके प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, बाय
1: बाय।
0: तो प्रीति जी पहले बहुत उदास थे, लेकिन प्रोग्राम में बात करके उनका फ़ोन कनेक्ट हो गया और बात करके बहुत खुश हो गए। इसी तरह से आप भी खुश हो सकते हैं बात करके, डायल करके नंबर, और जिनका मेल आ गया उनका मेल भी तो शामिल कर लें भाई। सुल्तान रजा जी ने लिखा, हेलो माय डियर मैम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और लिखते हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा।

गुड़पुर ग्राम से। और इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है कि फूंक मारने से दिया बुझ सकता है परंतु अगरबत्ती नहीं, जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता है और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। एक प्यारा सा संदेश इनका है और ये संदेश बहुत ही अच्छा सा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को से वावस्ता होते हैं और ये संदेश हमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता से जोड़ता है। तो सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग तालिब जी। ए नाजनी सुनो, ये गीत बहुत पसंद है हमें, लगभग सारे गीत बहुत पसंद आए। एक सुकून से गीत मैसेज मेरा, मेरी शायरी में है, बिजी हैं तो बहुत प्रोग्राम तो बहुत पसंद आ रहा मुझे, तो वो हमारा संदेश है वो आप पढ़ लें। इन्होंने ऐसा लिखा है, तो क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा है मुस्कुराने की वजह न ढूंढो वरना जिंदगी में यूं ही कट जाएगी, मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। वाह भाई वाह। चूंकि कहते हैं कि मुस्कुराना एक एक वैसे भी स्माइल एक टॉनिक का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है, आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को मुस्कुराने की वजह आप बनते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ है। आपने बहुत खूब बात लिखी तालिब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेल करके संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। वकील अहमद जी आपको भी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश ये है कि साइकिल से दूर नहीं तो 4-5 किलोमीटर तक और खेतों तक ज़रूर जाएं टहलने। इस समय चाचा अनीश अहमद के बाग में हूँ। वकील अहमद मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर से इनका मेल आ गया है। वकील अहमद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज बंसल जी क्या लिखते हैं, हरियाणा से इनका नमस्कार हम तक आ गया है। और विश्व साइकिल दिवस पर इनका संदेश है, यदि छोटी छोटी दूरियां साइकिल से तय की जाएं, छोटी छोटी दूरियां साइकिल से तय की जाएं तो न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा और सुरक्षित धरती मिल सकेगी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि अगर कहीं थोड़ी दूर पर जाना तो हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं, जिससे आपका ईंधन बचता है और आपकी हेल्थ भी बहुत चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। आप इन बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बढ़िया सा ट्रैक सुनवाने की, सॉन्ग सुनवाने की कोशिश करते हैं जो है इस तरह से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 11:28 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आपकी हम सफर आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला है आपके साथ। आप भी बने हैं ना हमारे साथ? जी हाँ, यकीनन आप हमारे साथ बने हैं क्योंकि आपके फ़ोन कॉल भी आ रही हैं लगातार, उसके अलावा आपके मैसेजेस आपके मेल भी आ रहे हैं हमारे पास लगातार। तो चलिए हम आप अगली आवाज़ सुनते हैं किन की है। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके थे और विश्व साइकिल दिवस की आपको हमारी आवाज मिल रही है।
1: साइकिल दिवस की सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
0: जी आपकी आवाज आ गई, आपकी शुभकामनाएं पहुंचेंगी जब आप अपना नाम बताएंगे। नाम बता दीजिए अपना।
1: श्रवण कुमार।
0: श्रवण कुमार जी का मेल आया, सबको शुभकामनाएं दी इन्होंने विश्व साइकिल दिवस की। कहाँ से बोल रहे हैं श्रवण जी?
1: सर ग्राम अजना

0: जिला फतेहपुर से श्रवण कुमार जी का मेल फोन आ गया है और इन्होंने सबको साइकिल दिवस की। आप साइकिल चलाते हैं?
1: हाँ सर, हमारे पास साइकिल है, हम चलाते हैं।
0: साइकिल चलाना सेहतमंद होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ईंधन भी बचाता है, हर तरह से पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, सुरक्षित होता है। तो आपने सबको शुभकामनाएं दी, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं।
1: ठीक है, नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फोन करने के लिए।

कितने लोगों का मेल आ गया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी सबके मेल शामिल कर लें। रवि कुमार, राहुल रवि जी का मेल आ गया है कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से, और उन्होंने आज संदेश कोई भी नहीं लिखा है। आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नाम आपका शामिल हो गया है। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है और क्या लिख रहे हैं कि आपके यहाँ से प्रस्तुत प्रोग्राम सभी जानकारी से बड़े होते हैं और गाने सभी श्रोताओं के पसंद के होते हैं। रिश्तों को संजो कर रखें, ज़रूरत पर काम आएंगे। वाह, रिश्तों को संजो कर रखें, ज़रूरत पर काम आएंगे। बुजुर्गों का सम्मान करें, आशीर्वाद ज़रूर पाएंगे। आप बिल्कुल FM रेनबो वाली भाषा बोलते हैं और उसी से जुड़े हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत निभाते हैं, दिखाते हैं, अपना प्यार उड़ेलते हैं इस चैनल के साथ। इसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। और मोनू सेठ जी, आप इतना समय निकाल लेते हैं FM रेनबो के साथ जुड़ने के लिए, आपकी बहुत बड़ी खूबी है। और धन्यवाद, इन्होंने अपने मेल को पढ़ने के लिए लिखा है साथ में, मोनू सेठ खालिसपुर ऊंचा गांव अमेठी से। तो मोनू सेठ भैया, आप हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं, इसके लिए आपको सभी एंकर्स की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मेल अभी और भी आ चुके हैं, आप भी हमें मेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, हम आपके मेल शामिल करेंगे। आप अपना प्यारा सा कोई संदेश हमें दे सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर फ़ोन करके बता सकते हैं। और हमारा फ़ोन, अगर आप नंबर जानना चाहें तो 0522 लखनऊ का कोड है, उसके अलावा आप डायल कर सकते हैं 2238845 या फिर 2238852। रत्ना शुक्ला है आपके साथ, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और जुड़ते रहिए, सुनते रहिए। फिलहाल ये गाना आप तक हम पहुँचा रहे हैं जो कि इस तरह से है।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: एग्जैक्टली 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की, यानी कि 100.7 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम चल रहा है। संदेश आपके गीत हमारे, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितने लोगों ने बात की उनका शुक्रिया, अब किनका शुक्रिया हम करेंगे जब उनकी आवाज हम तक आएगी। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है? जी लखीमपुर से शाजिया जी, आपके साथ और कौन कौन प्रोग्राम सुन रहा है, कौन कौन है आपके आसपास?
4: मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मैं, बस घर में भी इस वक्त कोई भी नहीं है।
3: अच्छा जी, तीन लोग प्रोग्राम सुन रहे, इतना ही काफ़ी है, चूँकि तीनों लोगों के दिल में FM रेनबो बसता है और आपकी आवाज़ यहाँ से जुड़ चुकी है। बड़ी खुशी की बात है आज, है ना?
4: बहुत दिनों बाद हमारा फोन लगा है।
3: जी लगा है, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी शाजिया जी।
4: थैंक यू।
3: अभी क्या कर रही हैं आपकी?
4: हम अभी लेटे थे।
3: लेटी थी, और मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी आपकी क्या कर रही हैं?
4: मम्मी भी लेटी हैं।
3: अरे वाह,
4: भी लेटी
3: है। चलिए बढ़िया, फिर खाना वाना खा के उसके। जी बोलिए।
4: मम्मी ने फोन लगाया है।
3: नहीं नहीं, फोन लग गया आपका, और आप लोग की बात, आपका संदेश भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज।
4: जी हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, और धूप में ज्यादा बाहर ना निकलें, और जरूरत हो तभी निकलें, वो भी शाम को, और जो है ज्यादा से ज्यादा तरबूज, गन्ने का रस और खरबूजा खाएं। मुझे तो गन्ने का रस बहुत पसंद है।
3: बहुत पसंद है जी, मुझे भी पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद है इस वक्त इन मौसम में।
4: और साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: हाँ, ये आपने पते की बात कही।
4: जब मैं छोटी थी तो बहुत साइकिल चलाते थे, और बहुत मतलब चोट लगी थी पैर में। अब भी चलाते हैं कभी कभी।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल चलाती रहा करिए, जब मौका मिलता है जरूर।
4: दीदी नाम ले सकते हैं?
3: जी जल्दी जल्दी लीजिए।
4: जी मोहम्मद, मोहम्मद फैज भाई, आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद भाई, बाबू अंसारी भाई, समा परवीन अंसारी, गलसा सिद्दीकी पे, महक अंसारी साहिबा पे, रिंकी दीदी, पिंकी दीदी और निशान सारी। हमारी दीदी से बात कर लीजिए।
3: जी आपकी दीदी से बात करना मुश्किल है, चूंकि आप लोगों की आवाज़ गूंज

0: जी आप बिल्कुल रेडियो सेट के करीब हैं तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
1: मैम दीदी कर लीजिए प्लीज।
0: अब आप रेडियो सेट से दूर होइए पहले। हेलो
1: दीदी
0: नमस्कार, कौन बोल रही है? शाजिया जी की बहन
1: हम साहिबा अंसारी मेहरागंज लखीमपुर खीरी से।
0: हाँ, इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के नाम बता रही साहिबा जी। तो साहिबा ये बताइए कि आपने साइकिल चलाई है कभी?
1: जी मैम हमने साइकिल चलाई है, हमें मौका अभी मिलता है मैं अभी चला लेते हैं।
0: बिल्कुल जरूर चलाया करिए। और शाजिया जी ने तो सबके नाम ले लिए।
1: जी मैम बिल्कुल शाजिया ने नाम ले लिए हैं। और मैम जैसे कि हमारे अब्बू जब हमारी साइकिल खड़ी करते थे और हम लोग अगर जब अब्बू साथ जाते थे कि मैं तो हमारे अब्बू हमें वही छोड़ाते थे।
0: अच्छा
1: जब हम लोग कहते थे अब्बू हमें भी चलना है तब अब्बू कहते थे अरे आप भी आई है।
0: तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जैसे आज विश्व साइकिल दिवस पर आप...
1: हमारे भाई जब चलाते थे तो हमारे भाई हमें पीछे कैरियर में बद्दी से बांध लेते थे।
0: अरे वाह, इसका मतलब उनको
1: गिरे ना हमें इतने।
0: हाँ, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे, है ना?
1: जी।
0: आप लोग एफएम रेनबो पर जुड़कर इतनी खुश हो रही हैं, पूरी फैमिली में आप लोग मुस्कुरा करके बात कर रही हैं, अपना संदेश दे रही हैं, इस बात के
1: हमें प्रोग्राम बहुत अच्छे कर रही हैं और विनय भाई ने भी गाने बहुत अच्छे बजाए।
0: जी बिल्कुल, सभी एंकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जरूर पसंद आए। जी
1: जो लोग पॉप टाइम करने आते हैं और वो रजनीगंधा करने आते हैं प्लीज एक दूसरे को साथ में लेके आया करें।
0: जी ये सब तो कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी है वैसी तैयार होती है, वैसी आपके सामने उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो शाजिया जी साहिबा जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे, हम आपसे ये बात करेंगे कि हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि जितने मेल और आ गए उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो इसमें किसका मेल आ गया है? विराज मौर्य जी का मेल आ गया है, कहाँ जिला लखीमपुर खीरी से पलिया कला ग्राम सेमरी पूर्वा से मेल कर रहा हूँ और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम अपनी मौसी मम्मी मामी के साथ सुन रहा हूँ। अच्छा, सब इकट्ठे हुए हैं गर्मी की छुट्टियों में और मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराज मौर्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के समय निकालकर, आप सब मिलकर सुन रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है। पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सूर्या जी का भी मेल आ गया लखनऊ आलमबाग से, सुबह से प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं आप मैम। आज का संदेश मेरा ये है कि कहीं भी इधर उधर ना ठोकर एक इधर कहीं भी इधर उधर ना ठोकर एक उचित स्थान पर एक हो एक जगह जहां खुदा है कचरा पड़ा है होता है कहीं अच्छे खासे चौराहे को भी लाल पीला करते रहते हैं, तो ऐसा ना किया करें। एक उचित स्थान पर भी जहां पर आपको कूड़ा फेंकना है वहां पर आप फेंकें और हर जगह को गंदा ना करें। सुनील सूर्या जी आलमबाग से आपने मेल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीपन जी क्या लिखते हैं भाई, इन्होंने भी मेल कर दिया है, लिखते हैं रत्ना शुक्ला मैम जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, नागौर राजस्थान से ये लिखा इन्होंने। और सभी सुनने वाले मित्रों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, खराब मौसम आंधी तूफान के समय किसी भी पेड़ के नीचे आश्रय ना लें। अक्सर लोग समझते हैं कि बिजली केवल ऊंचे बिजली के खंभों या इलेक्ट्रिक उपकरणों पर ही गिरती है, बट उसके साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि जबकि वास्तविकता यह है कि आकाशीय बिजली बादलों के सबसे नज़दीक मौजूद किसी भी वस्तु जैसे ऊंचे पेड़ पर गिर सकती है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम खराब होने पर किसी सुरक्षित पक्के मकान के भीतर ही रहें। आपकी सुरक्षा ही हमारा और आपके परिवार का सबसे बड़ा सुख है। बहुत अलग हट के बहुत ही कॉमन सी बहुत ही अच्छी बात जो अक्सर लोग इसको जल्दी में इधर उधर हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं इस बात को। आपने बहुत अच्छा सा संदेश दिया है महेंद्र दीपन जी और आपके प्यारे से मेल के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। फिर आ गया है गुलफिया सिद्दीकी जी का मेल आ गया है, सब लोग मिलकर सुन रहे हैं इसकी बड़ी खुशी है। हेलो मैम गुड मॉर्निंग, रत्ना मैम आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। संदीला से और आपका इन्होंने मेल किया, संदेश ये है कि जो लोग बिना पूछे किसी का भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, बड़े काम की बात लिखी है भाई आपने। सोशल मीडिया पर जो भी लोग पोस्ट डाल देते हैं बिना पूछे किसी से, वो लोग प्लीज़ ऐसा ना किया करें क्योंकि कुछ लोगों या सब नहीं पसंद करते ऐसा होता हुआ देखते हुए। मेरा ये कहना है कि अपना जो भी डालना हो वो डालो, लेकिन किसी और का बिना पूछे बगैर उसकी इजाज़त के मत डालिए। बहुत अपनी आपने दुरुस्त बात लिखी है गुलफ्शा जी, और लोग ऐसा करने से ज़रूर बचें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अरुण कुमार जी क्या लिखते हैं, संदेश हमारे गीत आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है, प्यारे प्यारे गीत अच्छे अच्छे संदेश सुनने को मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इनका संदेश है कि बरसात का मौसम आ गया, जिन भाइयों ने अभी तक वृक्षारोपण

रोपण करने के लिए गड्ढे नहीं खोते हैं, वो अपने गड्ढे खोद कर तैयार कर लें ताकि समय पर वृक्षारोपण किया जा सके। आपने लोगों को अवेयर कर दिया, ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता थी और ये जागरूकता आपने फैला दी है। अब अरुण कुमार जी कुशवाहा गमुया हरदोई से, रत्ना जी आपको एक बार फिर से नमस्कार। तो अरुण कुमार जी का संदेश भी हमने शामिल कर लिया। इंद्रपाल मिश्रा जी का भी ईमेल आ गया है, इनका भी मेल आ गया है। क्या लिखते हैं इंद्रपाल मिश्रा जी, ग्राम अमृता मौली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, बस इन्होंने अपना नाम मेंशन किया और लिखा है कि दो दिन पूर्व तंबाकू निषेध दिवस था, संदेश है कि बीड़ी तंबाकू और शराब कर देते हैं जिंदगी खराब। कई लोग जानते हुए भी इस चीज़ का ज़रूर सेवन करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने अपनी आदत बना रखी है। तो अगर ऐसा करने से बचेंगे तो उनके साथ साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप तो सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब टाइम है एक ट्रैक को आप तक पहुंचाने का। प्रोग्राम संदेश आपके गीत, हमारे रत्ना शुक्ला आपके साथ। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: और मुझे लगता है कि हम बात करने जा रहे हैं अपने कॉलर पीयूष जी से। हेलो
4: हेलो
3: हेलो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश। आपके गीत हमारे में
4: मेरा संदेश ये है, लोग कार से चले, बैग से चले, नहीं थूके और इधर उधर कचरा नहीं फैलाए और 3 से 4 लीटर पानी पिए दिन भर।
3: अरे वाह, आपने शॉर्ट में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी। 3 से 4 लीटर पानी पिए और बाइक से कार से चले तो इधर उधर कचरा या थूके ना, है ना, ये आपका संदेश है। बहुत कम बात करते हैं पीयूष जी, इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात पहुंचा दी है। और अब शिव पूजन लाल जी का भी मेल आ गया, जल्दी जल्दी शामिल करते हैं चूंकि वक्त बहुत कम है। शिव पूजन लाल जी लिखते हैं, डियर आरजे मैम जी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। विलेज संगीवा लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है, भेदभाव ना करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। वाह, छोटे से में बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि ज़रूरतमंद की मदद करें। दोबारा तालिब अंसारी जी लिखते हैं, राजा कटरा बाराबंकी से, दोबारा मेल कर रहा हूँ उसके लिए, सॉरी जी मैम, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, आप आज गीत बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी गीतों को पसंद करने के लिए। वारिस अली जी का भी मेल आ गया है, पिछले कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा किया, ये वारिस अली जी का लिखना है, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज है, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है, अर्ज किया है, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कौन किसका कितना अपना है, बहुत अच्छी सी बात। और संदेश है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, इसी एक जिंदगी में मुस्कुराना है, माफ़ करना है तो अच्छे काम करके खुदा को राजी करना है। एडवोकेट वारिस अली खान जी ऐशबाग लखनऊ से इन्होंने मेल किया है, और आपने बहुत ही अच्छा से मेल किया है और आपने हौसला अफजाई की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम अपनी ओर से कहते हैं। प्रोग्राम में आपके आप बड़ी शिरकत करते हैं, मेल करते हैं और बराबर आप FM रेनबो से जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी रावत जी का भी मेल आ गया है फिर से, इन्होंने क्या लिखा है जल्दी से पढ़ते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पूछा है, हम बहुत अच्छे हैं, बमाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है, आज कोई संदेश नहीं दे रही, बस मेरी एक विनती है कि काफ़ी दिनों से जो आरजेस नहीं है उनको लाया जाए, और कोई भी आरजेज हैं प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए, ठीक है। तो जिन लोगों की आवाज़ आपने अभी इन दिनों नहीं सुनी है हाल फिलहाल, उन लोगों को जल्दी से जल्दी सुनना चाहती हैं, और हमारे सभी आरजेज बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आप लोगों से मिलने के लिए बेताब रहते हैं हम लोग, तो चलिए वो लोग भी आप लोगों ने आवाज़ दी, बस जल्दी ही आते होंगे। रोशनी रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। MK राज जी का भी फिर से लखीमपुर से मेल आ गया है और लिखते हैं, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। वाह सर, हर रोज़ वही साज और हर रोज़ फ़ोन पर उसी लिसनर की आवाज़ सुनते हैं, तो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वही लोग बार बार फ़ोन या मेल ना किया करें और थोड़ा कम किया करें, और इसके साथ क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं इन दोनों चीज़ को करने में। संदेश हमारा है कि कड़वा सच बोलें, पता है कड़वा सच तो नीम की तरह कड़वा होता है मगर उसकी ठंडक हिमालय की तरह होती है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लखीमपुर से मेल किया आपने MK राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए।

0: और अब लेते हैं कॉमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर जुड़ते हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।
1: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और इसी के साथ आपको बता देते हैं एक सूचना आप तक पहुंचानी है। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर https://prasarbharti.gov.in/nipp पर, और इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर। और इसके साथ रत्न आपसे कहना चाहती है 11:56 हो गए हैं, तो अगले कुछ घंटे शालिनी आपके साथ रहेंगे, उनके साथ एंजॉय करिए 100.7 FM रेनबो को। रत्ना आज के लिए लेती है इजाजत, जल्द मिलूंगी इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए। कहाँ किसको एंजॉय करना, आपको एंजॉय करना 100.7 FM रेनबो पर, सभी प्रोग्राम्स के साथ जुड़े रहना है।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खरीफ गोष्ठी के माध्यम से किसानों को बीजों की गुणवत्ता, तकनीक और कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ ही सरकार की योजनाओं और तैयारियों से भी अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चीनी, आलू, दूध, एथेनॉल आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और कृषि को प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए खरीफ गोष्ठी लाभदायक सिद्ध होगी। श्री योगी ने कहा कि आज किसान अपने खेत में तीन तीन फसलें ले रहा है। सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश TGT परीक्षा का आयोजन आज और कल प्रदेश के 36 जिलों के 614 केंद्रों पर दो पालियों में होगा। बदायूं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT परीक्षा जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में पेट्रोलियम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में श्री पांडे ने नेपाल एवं बिहार की सीमाओं से जुड़े जनपदों में पेट्रोल, डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं और तकनीकी आधारित शिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

28 सेकेंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा, और शत्रुपा में आज क्या है खास बात, सोचिए जरा। हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन कुछ खास होता है। तो आज है वेडनेसडे, जी हाँ, आज हम स्वाद लेकर आते हैं आप तक, और बल्कि केवल स्वाद नहीं, साथ ही साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, और कुछ ऐसी चीज़ों से भी आपको रूबरू कराते हैं जो शायद आजकल के जो पीढ़ी है या आजकल के जो बच्चे हैं वो जानते ही नहीं, ये क्या होता है, ये कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इसकी क्या खास बात है। तो स्वाद के साथ हम उस खास बातों से भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। और वैसे बताइए, गर्मी का मौसम आते ही क्या याद आता है, दादी नानी की रसोई है ना, जहां पर मिट्टी के घड़े का पानी हुआ करता था, बेल का शरबत बिना बताए जबरदस्ती, नहीं थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, सत्तू का शरबत, अरे बच्चा थोड़ा सा पी लो, जब बाहर घूमी करने जाओगे तो लू नहीं लगेगी, शायद आज कहीं वो गुम सा हो गया है, लगता है आपको। चलिए, हम उन बातों को नहीं दोहराने वाले हैं, यादों को अपनी यादों तक रखते हैं। और एक चीज और आप सोचिए, दादी नानी क्या और पिलाती थी हम सभी को, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता था, जी गर्मी से बचाता था, बहुत खास था उस समय। अब शायद बहुत सारे लोगों को उसका नाम ही नहीं पता, तो हम बताते हैं ना, गोंद कतीरा, जी हाँ गोंद कतीरा। अब ये दो नाम नहीं है, ये एक नाम है, हम वो वाला गोंद जानते हैं जिसे हम रवा के लड्डू में इस्तेमाल करते हैं, कई सारी डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, उसे भून के उसे फोड़ कर खाया जाता है, वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा की, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग इससे कई अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाते होंगे। तो जो सुन रहे हैं और जो जानते हैं, डिशेस बनाते हैं, वो हमें भी बताएं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे, और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, ये जानकारी आपके लिए और औरों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम केवल जानकारी ही नहीं देते, हम आप तक प्यारे गाने भी पहुंचाते हैं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे और भी बातें गोंद कतीरा से रिलेटेड, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या जरूरी है, जी हाँ सब कुछ। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

12:15 और 2 सेकंड हो चले हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया होगा कि गोंद कतीरा से क्या क्या हम बनाते हैं और क्या मैसेज करें, और लेकिन सोचा ही आपने अभी तक मैसेज नहीं किए, और जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, तो क्या किया जाए भाई, कर दीजिए ना फटाफट, तो अच्छा लगता है। और अगर हम गोंद कतीरा की बात करें तो आज के समय में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, अभी आप कहेंगे ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो हमें, हम किधर से देख रहे हैं ये हमारा नज़रिया होता है, हमें दोनों देखना चाहिए, और हर एक चीज़ का अगर फ़ायदा है तो दोस्तों नुकसान भी होता है, इसका ध्यान रखना है। और गोंद कतीरा तो एक प्राकृतिक गोंद है जो कि कुछ विशेष पेड़ों और झाड़ियों से निकलता है, और ये देखने में छोटे छोटे एकदम ट्रांसपेरेंट टुकड़े होते हैं ना, पारदर्शी होते हैं, जिसे आर पार देखा जा सकता है, और जब इसे हम पानी में भिगोते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भिगोते हैं ना तो ये फूल कर जेली की तरह ज़्यादा सा हो जाता है। पुराने समय की अगर हम बात करें तो इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, जब गांवों में, खेतों में लोग काम करने जाते थे या किसी लंबी यात्रा के लिए जाते थे, जब तेज़ गर्मी में मजदूर काम कर रहे होते थे तो इसका शरबत ज़रूर पीते थे और इसे अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल करते थे। तो चलिए इस गाने के बाद हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों सच में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरा की। और ये सोचिए कि हम अभी जैसे ही हम बता रहे हैं और आप बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आज आपको सही से ध्यान पूर्वक सुनना है और हर एक बात को गांठ बांध लेनी है। कहते हैं ना कि इस बात को गांठ बांध लीजिए तो सारी चीज़ें याद रहेंगी, और उसके बाद आपको, हमें नहीं लगता है कि जो जो चीज़ें हम बताने वाले हैं उसमें से आपके पास घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें ना हो, सारी चीज़ें होंगी सिवाय गोंद कतीरा के, जो कि आपको मार्केट से लाना होगा, रात में भिगो के रखना होगा। नेक्स्ट डे आप जो जो चीज़ें हम बताएंगे हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गर्मी में क्या मन करता है? हाँ, ठंडा ठंडा शरबत पीने का मन करता है, लेकिन सभी लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। जी हाँ, सफ़ेद चीज़ें बंद कर रहे हैं ना, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो मैदा हो, और यहाँ तक कि तेल वगैरह भी। तो चलिए, अच्छी बात है, और जब जागे तभी सवेरा है कहते हैं। तो शरबत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो वहाँ पर आप जो जैसे कहते हैं शहद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, मज़े की बात। तो नींबू का शरबत बनाते हैं। आज हमने रात में गोंद कतीरा को भिगो दिया, उसके एक दो पीस, दो तीन पीस लेने होते हैं और ढेर सारा पानी डालते हैं। जिस एक ग्लास पानी में, बड़ा ग्लास जो होता है उसमें दो तीन टुकड़े डालते हैं और भिगो के रख देते हैं, वो पूरा फूल जाता है और जेली की तरह हो जाता है।

और इसको क्या करना है, एक तरफ जैसे भी आप शरबत बनाते हैं नींबू ऐड करते हैं, उसमें पुदीने की पत्ती ऐड करते हैं, आपको थोड़ा सा खट मीठा चाहिए तो आप उसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, काला नमक डाल दीजिए, उसमें आपने शहद डाल दिया और उसके बाद थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है, आइस क्यूब डालने हैं और फिर गोंद कतीरा 1 से 2 चम्मच लेना है और पूरी तरह से मिला देना है और फिर क्या वाव गटागट पी जाना है। और हाँ, इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सब्जा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसको सो करने के लिए आपको 3-4 से 5 घंटे लगते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और गोंद कतीरा के साथ सब्जा सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फ्रेंड वाला है, जैसे दो बढ़िया वाले फ्रेंड होते हैं, पक्की वाली दोस्ती, तो कई सारी चीज़ें उससे भी मिलाकर बनती हैं। तो जब आप मार्केट जाएंगे गोंद कतीरा लेने के लिए तो सब्जा सीड्स भी थोड़ी सी ले लेंगे तो भी और भी अच्छी डिशेस बन जाएंगी। और अब बारी है जब नींबू की बात कर देते हैं ना, तो निमोड़ा निमोड़ा गाना बिना सुने रहा नहीं जाता, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 12:32 और 50 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रु पर, जिसमें शालिनी लेकर आई है आज गोंद कतीरा की ढेर सारी बातें और अलग अलग डिशेस। तो अभी शरबत की बात करिए, और शरबत तो घटाघट पीते चले जाते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती ना बनाने में मेहनत लगती है। अगर अब इस शरबत को थोड़ा सा और कि कुछ बीच बीच में चीज़ें खाने के लिए भी आ जाएं और बढ़िया सा टेस्ट भी और बढ़ जाए, उसकी बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको ना सब्जा सीड्स रखनी है अपने पास में, साथ ही साथ वाटरमेलन यानी कि तरबूज के छोटे छोटे से टुकड़े करके रख लेने हैं, थोड़ा सा दूध लेना है, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो रख कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी जगह शहद गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े बर्फ के भी आपके पास भी होने चाहिए। करना क्या है आपको, रात में भीगा हुआ जो गोंद कतीरा है वो मॉर्निंग में आपको 2-4 चम्मच एक बाउल में रखना है। छोटे छोटे से जो टुकड़े आपने तरबूज के काट के रखे हैं वाटरमेलन के, वो आपको उसमें मिलाने हैं। सब्जा सीड्स को उसी में ऐड करना है, दूध थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा आइस क्यूब जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं बर्फ़ के वो भी आपको डालने हैं, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं नहीं तो शहद डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। जस्ट लाइक पीना भी है और कुछ बीच बीच में खाना भी है, तो ये बहुत सी अच्छा वाला टेस्ट बन जाएगा। और आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं, कुछ भी नाम, जो डिशेज होती हैं

कुछ स्पेशल, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, प्यार मोहब्बत कुछ भी नाम आप इसे दे सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। गोंद का तीरा हो या बेल का शरबत हो या ठंडी ठंडी लस्सी, भारतीय खान पान में जो मिठास और ताजगी है ना, वो हमेशा ही खास रही है। और इसी मिठास के साथ ये अगला गाना आप सबके लिए।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

12:40 और 20 सेकंड का वक्त हो चला है। प्रोग्राम शत्रुपा में आप शालिनी के साथ हैं, ठंडी ठंडी वाली बातें लेकर। आज हम हैं आपके साथ, गोंद कतीरा देसी ठंडक का खजाना है या सिर्फ आजकल ट्रेंड, तो आप बताइए। ये तो सच बात है ना, देसी ठंडक का खजाना है ना। कहते हैं कि जब सूरज आग बरसा रहा हो और शरीर जो हमारा शरीर है वो थक कर जवाब देने लगे, तब कई घरों में गोंद कतीरा देसी ठंडक बनकर सामने आता है। जी, गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की जो कमी होती है, जो कि होना आम बात है, ऐसे में बहुत सारे लोग इसे डायरेक्ट शरबत में, दूध में, लस्सी में, दही में मिलाकर खाते हैं, ठंडाई में भी मिलाकर, मतलब खाते क्या पीते हैं, और फलूदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है, बिना ऑयल का, बिना गैस का जो रेसिपी कई सारी बनाई बताई है ना अभी, जैसे हमने शरबत बताया है आपको, वाटरमेलन वाला शरबत, और उसके टुकड़े डालकर बताए हैं तैयार करने के लिए। अब आप फ्रूट सलाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने फ्रूट्स आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो खाते हैं आप, रेगुलर लेते हैं, सारे ले लीजिए। हाँ, उसमें सब्जा सीड्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी सोख करके रखिए और उसको भी ऐड करिए। और ये गोंद कतीरा भीगा हुआ 2-3 चम्मच आप उसमें मिलाइए और अच्छे से पूरा मिक्स कर दीजिए और उसके बाद खाइए। देखिए क्या मज़ा है। जी हाँ, टेस्ट कहते हैं ना कि दोगुना हो जाता है, तो सच में। और पार्टी अगर करनी है आपको तो इस तरह वाली भी करिए, ज़रूरी नहीं है पार्टी में बहुत स्पाइसी और अलग अलग चीज़ें हों, इसकी भी पार्टी की जा सकती है, खासकर गर्मी में जहाँ पर बस ठंडक का एहसास और हेल्थ का ध्यान हो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दोस्तों 12:53 और 33 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा वाइंड अप। लेकिन चलते चलते एक प्यारी सी डिश जिसे खास हमारी फ्रेंड ने हमें कल ही टेस्ट कराई और खिलाई भी। जी हाँ, दलिया और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे नॉर्मल आप दलिया बनाते हैं ना दूध वाली, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करिए और थोड़ा उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ठंडा हो जाए तब उसमें गोंद कतीरा 1-2 चम्मच मिला दीजिए और उसके बाद जब आप सर्व करते हैं तो भी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं, दे सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, तो देखिए क्या टेस्ट आएगा। और मुझे लगता है कि अब सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में और लोगों से को भी लोगों को भी बताएंगे। और इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, पेट में भी राहत मिलती है जैसे किसी को कब्ज की या जलन की शिकायत होती है, कमज़ोरी और जैसे कमज़ोरी है हमें तो एनर्जी देता है और स्किन भी हमारी ग्लो करती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है, बिना भिगोए इसे कभी नहीं खाना चाहिए और अगर आप डायबिटिक हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है ना, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो सेवन होता है वो नुकसान ही करता है। कई लोग सोचते हैं कि देसी चीज़ है तो जितना खाएंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरत से ज़्यादा गोंद कतीरा खाने से पेट भारी भी लगने लगता है, गैस बनने लगती है, पाचन

तंत्र जो है आपका वो खराब हो सकता है। हर देसी नुस्खा जो है ना फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन सही मात्रा में। तो मात्रा का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो बस इसी के साथ शालिनी करती है इस प्रोग्राम से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में आज हम बात करने वाले, आपने क्या चीज़ें अपने दादा दादी नाना नानी से संजोकर अभी भी रखी है और उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे उनकी बात का हो, चाहे उनके कपड़े का हो, चाहे उनके संस्कार के हो, कौन सी वो चीज़ें हैं, आदतें हैं। तो बस बता डालिए हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने

के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। यह कार्यक्रम जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के अंतर्गत देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें शासन सुधार, अभिसरण तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण शामिल हैं। सम्मेलन में 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाए। आज गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खरीफ गोष्ठी के माध्यम से किसानों को बीजों की गुणवत्ता, तकनीक और कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ ही सरकार की योजनाओं और तैयारियों से भी अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चीनी, आलू, दूध, एथनॉल आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को न्यूनतम स्तर पर लाने और कृषि को प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए खरीफ गोष्ठी लाभदायक सिद्ध होगी। श्री योगी ने कहा कि आज किसान अपने खेत में 3-3 फसलें ले रहा है। सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 1:04 हो चले हैं, प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें आपकी बात हमारे ओठों पर होगी और सबके कानों तक पहुंचेगी। तो बस आज आपको बताना है कि आपने अपने पूर्वजों से क्या चीज़ ऐसी ली है जो आज भी संजो कर रखा है। जी हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, उनके पुराने स्टाइल के कपड़े हो सकते हैं, उनकी बातें हो सकती हैं। संस्कार तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। कोई ऐसा इलाज, कोई ऐसे देसी नुस्खा भी हो सकता है, क्या है वो आप हमें बता डालिए। हमें मेल करिए FM Rainbow, मेल आईडी हमारी कौन सी है, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। जी हाँ, बस इसी पर आपको मेल करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो से।

0: कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ, तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे, लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे, शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे, कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय के रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।

दोस्तों 1:22 और 36 सेकंड हो चले हैं और ढेर सारी ईमेल्स आ चुके हैं हमारी मेल आईडी पर। और मास्टर राधे श्याम शाक्या जी का कासगंज से आया है और इन्होंने लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि घर पर कोई भी आए तो उसे प्रेम पूर्वक पानी पिलाएं और खाना खिलाएं, और उनकी ये जो परंपरा है उसका हम पालन करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा था ना दोस्तों, संस्कार जो है ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पूर्वजों के ही ढेर सारे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ये संस्कार। और मोनू सेठ का मैसेज आया है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। और वैसे अगर बात करें तो उन्होंने हमें व्यापार करना सिखाया है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये अपने व्यापार में खुद ही सेठ है और खुद ही नौकर है। ये भी बहुत अच्छी बात है और जिसे हम बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं कभी। और ये भी है, उनका जो ये ऋण है हमारे ऊपर, इसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हाँ, उसे संजो कर जरूर रख सकते हैं ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। और सुल्तान रजा का हमारे पास में ईमेल आया है और इन्होंने हमें कुदब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखा है और ढेर सारे नाम लिखे हैं। आज का विषय ये नहीं सुन पाए हैं, तो भाई आज का विषय जो है वो यही है कि आपने अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से क्या ऐसी चीज ली है जो आज भी संजो कर रखी है और आगे भी लेकर जाने वाले हैं। उनकी कोई खास बात हमसे जरूर बताएं। और अब ये बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: मुस्कुराइए क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow.

1:35 और 52 सेकंड का वक्त प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में शालिनी है आपके साथ आपकी ईमेल्स को लेकर और श्वेता भट्ट का मेल आया है हरिद्वार से लॉट्स ऑफ लव आकाशवाणी लखनऊ इन्होंने भेजा है और हमें मिल गया है आपका भेजा हुआ बहुत ढेर सारा प्यार और इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम मेल कर रही हूँ अगर आप हमसे जुड़ी हैं और हमें इस वक्त सुन रही हैं तो जो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में लिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ लिखकर भेजिए और शिव पूजन जी का मेल आ चुका है और इन्होंने सनी गांव लखीमपुर खीरी से लिखकर भेजा है और ये लिख रहे हैं कि मैं तो ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ सभी को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे हिसाब से तो ये सब संस्कार खुद ही हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के और आप लोगों को क्या लगता है। अच्छा ये जो मेल है वो आप शायद कहीं आप कुछ और भी सोच रहे हैं। सुधाकर जाधव जी का भी मेल आ गया है और हमारे बुजुर्गों ने हमसे बड़े आदमी का कैसे सम्मान करना चाहिए और अपने घर में आए हुए उनका कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए ये सब सिखाया है और हमारे हिंदुस्तान की तो एक ही पहचान है कि मेहमान अतिथि देवो भव बिल्कुल सही बात है। और जो सुधाकर जाधव जी हमें कालीगांव जाफराबाद से लिख रहे हैं और साथ ही साथ इनकी पूरी फैमिली भी है प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी कल्पना ये सभी लोग एक साथ मेल कर रहे हैं। और महेंद्र दीपेन जी का भी मेल आ चुका है और ये हमें राजस्थान के नागौर ज़िले के रुणगांव से ये हमें मेल करते हैं और हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और इन्होंने लिखा है कि अच्छा आज का विषय वाकई दिल को छू लेने वाला है थैंक यू और ये लिखते हैं कि हमारी राजस्थान की माटी में हमें बस यही सिखाया है कि अतिथि स्वयं भगवान का रूप होते हैं और हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहते आए हैं कि घर पर घर आए का आदर ही सर्वोपरि है चाहे हम खुद भूखे सो जाएं लेकिन द्वार पर आए किसी भी प्राणी को खाली हाथ या भूखा नहीं जाने दें और यही संस्कार हमारी हमें विरासत से मिले हैं कि हम मीठा बोले और किसी के लिए भी अपने मन में कड़वाहट ना लाएं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन पारंपरिक मूल्यों को याद करना वाकई सुकून देता है। भाई जब कहते हैं ना कि हम अपने पकड़ को अपनी जड़ों को याद करते हैं ना तो वहाँ सुकून मिलता ही मिलता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक उसके बाद और भी ईमेल कुल करेंगे शामिल और वास्तव में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आज की बात अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा कष्ट करें मेल करें fmakashwani@gmail.com पे अपनी भी बात क्या है आपके पास खास अपने बड़े बुजुर्गों का

थैंक यू श्वेता, आपने हमें सुना और हमें आपने दोबारा मेल किया। श्वेता भट्ट फ्रॉम हरिद्वार से, और ये लिख रही हैं कि बुजुर्ग हमारे जीवन के बरगद हैं जिनकी छाया में अनुभव, संस्कार और सुरक्षा मिलती है। बुजुर्ग घर की जड़ें हैं जिनमें परिवार की पहचान और मजबूती बनी रहती है। बुजुर्ग वो रोशनी है जो उम्र भर हमें सही रास्ता दिखाती रहती है, और जहाँ बुजुर्ग का सम्मान होता है वहाँ सुख और संस्कार दोनों बातें मिलती हैं। और बुजुर्ग हमारे लिए चलती फिरती जीवन पुस्तक हैं, इसीलिए अपने सभी बुजुर्गों का और बड़ों का आदर करें और उनका ख्याल रखें। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं आपने, और ये बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी गई हैं। ये जो बातें हैं ये दिल से निकली हुई हैं, जिन्हें हम दिल से, जिनका हम आदर करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो दोस्तों पता है उनके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शब्दों को खोजना और उन शब्दों का मिलान करना कि एक से करके कैसे सेंटेंस अच्छा बनेगा, हम समझ सकते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने ही तो हमें मीठा बोलना सिखाया है, है ना? हमारे बुजुर्गों की ही सिखाई चीज़ें हैं जिनसे हमारी पहचान होती है औरों से थोड़ा हट कर। तो बहुत ही गहराई में जाने वाली बात है दोस्तों। ढेर सारे लोगों के और भी मेल आए हैं, और अगर वो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और मेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि भाई प्रोग्राम कुछ और चल रहा है, बात किसी चीज़ की और हो रही है आपसे। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, चीज़ें अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे इस विषय से भी जुड़ सकते हैं और इस विषय से रिलेटेड बातें भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं। और हम भी कभी बुजुर्ग होंगे ना, बड़े बनेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ऐसा देके जा रहे हैं या देके जाएंगे कि जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या आंसर देंगे। ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है दोस्तों। चलिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होना नहीं है, ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए।

0: 1:52 और ये देखिए 53 मिनट हो चले हैं और ये वक्त कहता है कि शालिनी प्रोग्राम को अब यहीं पर करना होगा वाइंड अप, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल में मेल आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी का मेल बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। 2 बजे से जो मेल करेगा उन्हीं का ही शामिल होगा और अच्छे से गाने की फरमाइश करें हमेशा की तरह जो हम कहते आए हैं, और साथ ही साथ धैर्यपूर्वक अपने मेल की बारी आने का इंतज़ार करें, बार बार ईमेल ना करें। और मेल कहाँ करें, fmakashwani@gmail.com पर, और बने रहें शालिनी के साथ।
1: देख राजा, ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। इसके साथ ही जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। 4 और 5 जून को

वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है। 4-5 जून को प्रस्तावित इस बैठक में देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ एवं विशिष्ट प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP एक जिला एक उत्पाद उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। अयोध्या में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT परीक्षा की प्रथम पाली शांतिपूर्ण एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में होनी है। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में कुल 4,565 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। मुजफ्फरनगर में TGT परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रेक्षक दयानंद मिश्रा और SPCT अमृत जैन के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बदायूं में भी 13 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं जन सहभागिता आधारित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री राजभर ने कहा कि अभियान के माध्यम से श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों एवं युवाओं तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और योग को बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
5: धड़कन लखनऊ की।

निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और पूरी फैमिली है इनके साथ, और ये इंतज़ार करते रहते हैं अपने इनका मेल कब शामिल होगा। और मेल आ चुका है पद्मजा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन, राजेंद्र जी का। और मेल नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, खैल बाजार पानीपत से पापा जी नानक चंद्र, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुक्कू का मेल आ चुका है। और सभी के ने ही गाने की फरमाइश की है। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु का भी मेल आया है। देखिए नरेश जी, आपका मेल शामिल हो चुका है, फिर भी आपने कई बार भेज दिया। और जैन, आपने तो मेल भेजा ही 3 बार है, क्यों ऐसा करते हैं, बार बार एक ही रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती है आप लोगों से। मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन का मेल आया है। और हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई और पिंकी कृष्णा पीहू का मेल आ रहा है। थैंक यू आप लोगों का मेल करने के लिए। और दीपेश वर्मा का भी मेल आ चुका है, पीपरलोड सरगावा छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने पूनम ज्योति सिमांश के साथ में मेल किया है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आप लोगों की फरमाइश ऐसी आती है कि दिन में भी चांद और तारे सब नजर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ट्रैक था। और अगला मेल है संदीप मक्कर जी का है, ज्योति मन्नत भरत कमल के साथ में इन्होंने हमें पिंगा वाला चौक जलंधर से मेल किया है, गाने की फरमाइश की है। सतीश अनेजा जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने दो लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं, झुकने वाले इंसान को चारों लोकों में जीत मिलती है, पर्वत हमेशा अकड़ कर ही रहता लेकिन झुक कर चलने वाला उस पर आसानी से चढ़ जाता है। और इन्होंने हमें विमला के साथ सिटी चंडीगढ़ सिटी से हमें मेल किया है। और जिसका मेल आ गया है ये राधे कुमार विद्यार्थी जी का मेल आया हुआ है और आज है 3 तारीख, क्यों राधे जी, और आप हमें 2 जून का मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है, तो नया मेल लिखकर भेजिए। बाबू अंसारी का भी मेल आ चुका है, कुलदीप महेंद्र और फैज अंसारी के साथ में ये हमें बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और ये गाना आप सबके लिए।

बजकर 21 मिनट और 48 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी आपके साथ आपके ही पसंद के बढ़िया बढ़िया वाले गाने लेकर। और मेल आ चुका है, किसका मेल है ये? उत्तम कुमार भगत जी का मेल आया हुआ है झारखंड से। और इनके साथ में श्वेता, किशु, तासु, अर्णव, सत्यम और सभी लोग हैं। और मुन्ना और गुड्डी ने भी मेल किया हुआ है। रविंद्र मोहनदास जी का किशनगंज बिहार से मेल आ चुका है आशा देवी के साथ में। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का ठाकुरावाला से मेल आ चुका है। और ये देखें, नूर, आयशा, अहमद, बागवान, इकबाल, अखलाल, आमना, आसमा, राबिया, आशू, जूही, सफद और ये सभी लोग हमें बलिया से मेल कर रहे हैं। और अदीबा अफसरी और इस्माइल आजाद, नन्हेराजा, फैज, फिरोज, आलम और बहुत सारे लोगों का अपना हम लिखकर भेज देते हैं और सब आपका मेल शामिल कर लिया गया है। शाहरुख नूर अंसारी जी का, फरियाद हुसैन, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान के साथ मटकली जिला बरेली से मेल आ चुका है। और रमेश कुमार जाजेरिया और पटेल नगर मलोट से मेल किया है गीता, गगनदीप, आरजू और गुड्डू के साथ में। और मेल किसका आया बक्सर बिहार से? सफरुद्दीन, फातिमा और सुरीत, रमेश साहू और टप्पू और सोनम, नंद, वीणा, पंकज, आसमा खातून, एसी अंसारी और सभी लोगों ने बक्सर से हमें मेल किया हुआ है। जितेंद्र जी का मेल है और जितेंद्र नामदेव है और बबलू, अंजू, खनक, आरोही, सौम्या के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। और इन्होंने हमें मेल कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश से किया हुआ है। और मेल आपका पढ़ा जाता है, इसके लिए इतनी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मेल आया है भागलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी जी का मेल आया है। और काव्या तिवारी ने भी हमें मेल कर दिया है। और ये हमें मेल कहाँ से कर रहे हैं? ये नैनीताल उत्तराखंड से कर रहे हैं। आपके मेल के साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी आ गई हैं। थैंक यू मेल करने के लिए। और फिलहाल अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए, अगली मेल हो सकता है आपकी ही हो, तो सुनते रहें, हमारा साथ देते रहें 100.7 FM रेनबो पर।

और दोस्तों ईमेल्स बराबर आते जा रहे हैं नया, और ये आ चुका है निसार सलमानी का तेलीवाला उत्तराखंड से मेल, और इनके साथ बेबी आलिया आयान बाबू भी साथ में है। सुनील पाठक जी का मेल, कमल, दीपिका और गायवा और भाई सुच्चा सिंह के साथ में जागराव पंजाब से मेल आ चुका है। और किसका मेल है, जयदेव बैरागी जी का है, अरुणा, प्रियांशी और आदित्या के साथ में है, और इन्होंने हमें उत्तराखंड से मेल किया हुआ है। राजकुमार टूरी प्रमोद पुष्पेंद्र के साथ में फ्रांस हिसार से मेल कर रहे हैं। पंकज शर्मा का मेल आ चुका है, और इन्होंने ये इनके साथ जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा और इशप्रीत जी भी हैं, और इन्होंने कर्नल से हमें मेल किया हुआ है। हीरामणि वर्मा का भी मेल है, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं।

ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर महराज का लक्सर हरिद्वार से मेल आया है और सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से मेल कर रहे हैं और अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको फिल्म का नाम नहीं याद है तो कोई बात नहीं। राजू मिगलानी का भी मेल आ चुका है, बबीता सुभाष योगी डब्बू बब्बू के साथ में हांसी हरियाणा से इन्होंने मेल किया हुआ है। कमलकांत गुप्ता का भी मेल समझील नवापारा से आया है, श्रद्धा और अदिति राधे दीपक अंकुर राघव दीपा रिमझिम के साथ में, बिट्टू गगनेजा पूनम सुरेश विशाल प्रिया दिशानी निमित के साथ में मेल जलालाबाद से आया हुआ है। उदय भांजी का भी मेल आ चुका है, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश के साथ में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। और सदाशिव का भी मेल आया हुआ है और इन्होंने जिला सीतापुर से हमें मेल किया है और गाने में भी किसी भी गाने में इनका नाम शामिल करें। जॉन रिक्रोस्टो रोजी पर विलिस का जनकपुरी सहारनपुर से मेल आ चुका है और ये पिंकू सोनी टिकायत नगर से मेल आया हुआ है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

पता है हॉट मेल प्रोग्राम की क्या खासियत है? हर मूड के गाने इस प्रोग्राम में एक साथ आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी गाने जो कभी मतलब सुने ही ना हो, फिर भी आपकी पसंद होती है तो प्ले होते हैं, तो समझ में आता है अरे वाह क्या गाना था। नवी हसन अब्बासी, शाहनाज, नावेद हसन, सुहेल रसीद, अमन यसफ का दरवाज़ा एटा से मेल आ चुका है। आफ्ताब अंसारी का भी मेल है रियाज मोहम्मद कैफ अनवर लुबना आलिया के साथ में गंगश डुडवारा से है। और किसका मेल आया हुआ है? ये मेल है अजीज़ अहमद जी का है, और ये सीतापुर से हमें लिख रहे हैं, और बड़ा सा मेल लिखा है। बिल्कुल हमने आपका मेल पढ़ लिया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम का मेल ओखला संगम विहार दिल्ली से आ चुका है।

और हरमन सिंधे संगीत ऋषिकेश और वसुंधरा का मेल सांगली से आ चुका है और विजय का भी मेल कहाँ से आया है, मोहबिया, कविता, सपना, शिवी, सलोनी, ईशु, बाबा, पेंटर बाबू और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव, ममता, रोनित बेबी का वोनिका का मेल आया हुआ है और ये हमें कहाँ से मेल रहा है, बरेली से आप हमें मेल कर रहे हैं भाई, इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल, तभी तो जब आप इंतज़ार करते हैं हम सभी का मेल ज़रूर शामिल करते हैं। और राधे कुमार विद्यार्थी का भी मेल, सविता, कुमकुम, कुमार साक्षी और फलना झा के साथ में बिहार से मेल आया हुआ है और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इशरार, नरगिस खातून का दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल आया है, संजय डिंगिया जी का नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से मेल आया हुआ है, तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ चुका है, वीना चंटीकर, राहुल, रचिता, केशु खुराना के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं, ओम बगारिया जी का भी मेल आया है, फजिलका पंजाब से ये क्रियांश के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं, रजत बेबी वामिका साथ में है और दीपेश का मेल हमने शामिल कर लिया है, मनोज बंसल का भी मेल हांसी हरियाणा से आया हुआ है और आकाश कुमार का मेल आया हुआ कहाँ से है, ये बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, इनका मेल बहुत बड़ा है और हम उसे बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा मेल पढ़ने लग गया ना तो बाकी के ईमेल्स हम शामिल नहीं कर पाएंगे। जावेद अख्तर जी का रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से ये हमें मेल कर रहे हैं, बेगम रुखसार, रकीबा, शाहीन, तुबा आफरीन, समीम अख्तर के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं और कोशिश है सभी के मेल सब तक पहुंच जाए। मेहर अरोरा, ममता कीर्ति, भूमिका का भी मेल पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से ये हमें मेल कर रहे हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी आपका मेल शामिल कर लिया गया है, फिर भी आप बार बार हमें मेल कर रहे हैं, ऐसा ना किया करें।

2:48 हो चले हैं और ईमेल्स ढेर सारे आ चुके हैं। सुधाकर जाधव, राजे जाधव जी का मेल, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद सानवी का, कल्पना देशमुख के साथ में जाफराबाद से मेल आया हुआ है और श्वेता भट्टी का भी मेल आया है। इस प्रोग्राम में भी आपने बहुत अच्छा जवाब प्रोग्राम मोटू पे तेरी बात में दिया हुआ था। और जो सुधाकर राजे जाधव जी, आप बस करिए मेल करना, आपने अब तक न जाने कितने ईमेल्स कर दिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपने अगर 2 बजे भी मेल किया है तो तुरंत ही शामिल कर लिया जाए। सिक्वेंस से जो भी मेल्स आते रहते हैं उन्हें ही हम देखते हैं। और अब तक आपने पता है कितनी बार मेल किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इससे कुछ नहीं होता है। जब कहते हैं ना कि आप हमारी जगह आकर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मेल शामिल होता है कि नहीं। और मुझे यानी कि शालिनी को याद है कि आपका मेल जब भी हम आते हैं ज़रूर शामिल होता है, आपके पूरे नाम भी लिए जाते हैं। और किसका मेल आया, नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार का मेल महाराष्ट्र से आ चुका है। ये पंजाब से हर जिंदर चिंदा और जसवी, जस्सी, सीता और गीता का भी मेल आया है। कौशल प्रजापति जी का मेल आया है, यशोदा नगर कानपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और अब तो क्या ही गाने की किसकी फरमाइश शामिल की जाए, क्योंकि इतने ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं उसमें से गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसे आप अपना कहते हैं कि पसंदीदा प्रोग्राम बना लीजिए। और ये देखिए मेल शुभचंद्र बजाज शाहिल और बिट्ठा का मेल मोहाली चंडीगढ़ से आ चुका है। लालगिरी जी का मेल आया है, राज कमल यादव का मेल है और पूना जी नोहाकर का मेल है, साजी बोरखे हैं और पंजाब से राम टेके हैं, गोविंद भदौरिया जी का है, अशोक कुमार का भी है, सरिता अभिजीत गाकर का मेल है, तालिब अंसारी का मेल है। और पहले ये गाना प्ले कर देते हैं, उसके बाद और भी नाम शामिल किए जाएंगे।

दोस्तों दुल्हन का तो नहीं पता लेकिन इस प्रोग्राम को जाना होगा, हॉट मेल का समय हो चुका है वाइंड अप करने का। और बता दें कि कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का मेल आया है और अनिल कुमार गुहाकर का है, गुरमीत सिंह है और राधे श्याम है और अकरम हुसैन जी का मेल है, मोहम्मद मूसा सेख जी हैं, वकील अहमद हैं और किसका मेल आया है, भाई सभी के मेल, आफ्ताब अंसारी, अब्दुल गफ्तार, तनुजा का मेल है और देख लेते हैं एक बार जस्ट अगर अभी किसी के मेल आए। आकाश वर्मा का मेल आज आया है, दोबारा कर दिया है इन्होंने, और उदय भांजी आपका भी मेल शामिल किया गया था और सुरेश नारंग और आशा के साथ में सहारनपुर से मेल कर रहे हैं। थैंक यू हमारा मेल, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए और मेल करने के लिए, और किसी की नाराजगी हो तो उसे माफ करना। और सुनिए अब ये प्यारा सा ट्रैक, नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी शालिनी रहेगी आपके साथ, हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नमोस्मेस और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने लेख को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि देश वैश्विक स्तर पर वोकल टू लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में नवाचार मंत्र नामक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों की पहचान करके मार्गदर्शन देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य प्रतिभावान नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को मार्गदर्शन, संसाधन, उद्योग नेटवर्क और राष्ट्रीय मंचों पर तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि वे अपने नवेश में सी विचारों को प्रभावशाली उद्यमों में बदल सकें। प्रदेश का संस्कृति विभाग आगामी 5 जून 2026 को 51 लोगों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। लखनऊ स्थित जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यह सम्मान प्रदान करेंगी। यह जानकारी आज लखनऊ में प्रदेश

सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021, 2022, 2023 और वर्ष 2024 के अंतर्गत अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों का मानदेय ₹70,000 प्रति कार्यक्रम हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी समस्या की पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने सूचित किया है कि आवेदन करने वाले छात्रों के लिए सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर SBI, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के भुगतान गेटवे उपलब्ध हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
2: करियर पर है ध्यान,
3: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
3: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
3: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
3: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
2: ओनली ऑन यूथ वेव,
3: यूथ की बात यूथ के साथ,
2: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है।
2: जिंदगी के

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: बजकर 12 मिनट और 54 सेकंड हो चले हैं दोस्तों, और शुरू हो चुका है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, जिसमें प्यारे प्यारे से गीत आप तक पहुंचा रही है शालिनी।

0: सकता है तार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो FM,
2: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: What is mobile number? What is your style number?
4: What is your style number? करो क्या dial number?
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
7: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
8: जोर का झटका है जोरों से लगा,
6: अंदाज है सबसे निराला,
7: क्योंकि ये है

दोस्तों 3:27:17 हो चले हैं और अब आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 थी, जिसे बढ़ा दी गई है और ये अब 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं prasarbharti.gov.in पर जाएंगे और NIPP सेलेक्ट कर लेंगे, या आप akashvani.gov.in पर जाएंगे, वहां पर भी इसकी जानकारी मिल सकती है। और सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

0: from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme. Permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

You लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो में प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, और मैं शालिनी हूँ आपके साथ। आज एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे से गीत जो कि आपके दिल को सुकून पहुँचाएं, और उसी ही लाइन में ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए है।

0: AV invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शहर आपका, धुन आपकी।

बजकर 52 मिनट और 32 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब आपको यहाँ से टाटा बाय बाय कहना होगा, क्योंकि नेक्स्ट कोई प्यारी सी आवाज़ आपके साथ रहने वाली है और शालिनी इस उम्मीद के साथ जाती है कि हमारी आपसे मुलाकात किसी और दिन ज़रूर होगी और आज का साथ आपको पसंद आया होगा। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और ये गाना आपके लिए प्यारा सा ट्रैक, सुनिए और इंजॉय कीजिए।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों से खेती किसानी के क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसान समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। किसानों ने कृषि विकास दर को 8 से बढ़ाकर 18% तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में आयोजित गोरखपुर आजमगढ़ व बस्ती की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत पिंतल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस दमकल सेवाओं और अन्य आपातकालीन कर्मियों के समन्वित प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को बचाया गया है और उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और

लोगों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने दिए जाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे। श्री पाठक ने यहां कमलापत मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर के औद्योगिकी स्वरूप को पुनर्स्थापित करने और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। वाराणसी में 4 और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होगी। यहां ताज होटल में प्रस्तावित इस बैठक में देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ एवं विशिष्ट प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गंभीर कपट अन्वेषण का

0: मुख्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट दो पद, उपनिदेशक बैंकिंग दो पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ दो पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट एक पद, उपनिदेशक अन्वेषण तीन पद, प्रधान निजी सचिव एक पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग चार पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट एक पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून चार पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक एक पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण दो पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान एक पद, वरिष्ठ अभियोजक तीन पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: शहर आपका, धुन आपकी।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: इसमें प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। और यूं ही ये सफर आगे चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। वापस आते हैं और बात करते हैं सेगमेंट की।

प्रोग्राम यूथ वेव चल रहा है और जो सेगमेंट है आज का वो है अर्थ, साइंस और टेक। और इस सेगमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो आज के समय में अर्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो संगम है, इंसान का जो जीवन है, पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास का एक आधार है। और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे सामने आती हैं उनसे बचने के लिए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके सतत उपयोग के लिए दोनों का मिला जुला महत्व बहुत बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको क्या लगता है कि टेक साइंस, मतलब अर्थ साइंस से टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई कैसे है? मतलब आपको क्या लगता है?

अर्थ साइंस है, मतलब पृथ्वी का विज्ञान है, और जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों का आपस में मेल जोल कितना इम्पोर्टेंट है. अब देखिए ना, इस समय मौसम कितना ख़राब था कुछ दिनों पहले. कई सारी चेतावनियां हमारे फ़ोन पे आती हैं, चाहे तूफान आने वाला हो, आंधी आने वाली हो, या बहुत तेज़ बारिश की संभावना हो, सब कुछ तो पता चल जाता है जी. आपदा प्रबंधन और वो पूर्व चेतावनी जो होती है, मतलब सैटेलाइट्स और ये जो हमारा मौसम विज्ञान होता है उसके उपयोग से चक्रवात हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, जितनी भी आपदाएं होती हैं उनकी सटीक जानकारी घंटों या दिनों पहले मिल जाती है. करोड़ों लोगों की जान बचती है भाई ऐसे. और लेकिन देखिए, पुराने समय में यही चीज़ें होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी जब, तो जो सडन ये चीज़ें अचानक होती थी, प्राकृतिक आपदाएँ आती थी, उससे कितनी जाने जाती थी. ट्यून इन करके रखिए, कुछ ऐसी ही बातें और करने वाले हैं अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में.

0: ever wondered why most people in
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है, सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। pmsuryaghar.gov.in पर।

0: हेलो एफएम,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
3: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक आत्मनिर्भर कोष है जो नियमित भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सर्वाधिक जरूरी है। सुरक्षा के बिना न सुशासन आ सकता है और न ही समृद्धि आ सकती है। सीएम योगी आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 13 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले और पूरे प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण तथा गीडा में सुआयोजित कामगारों के लिए EWS LIG आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने EWS व LIG भवन के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज बरेली जनपद में छावनी परिषद की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 108 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचन का संदेश देना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व छावनी परिषद की CEO डॉ तनु जैन ने किया। उन्होंने कहा कि साइकिल केवल आने जाने का साधन नहीं है बल्कि ये छात्राओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंकांग और आरोन ताई से 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज ताई से 6-11 उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

पाँच बजकर के ठीक चार मिनट हुए हैं और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM टॉप 10 और FM टॉप 10 में हर दिन आपके लिए आती है एक टॉप 10 की खास लिस्ट और आज भी आपके लिए आया है एक स्पेशल FM टॉप 10 और वो खास FM टॉप 10 क्या है उसके लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा। और बिना देरी के नंबर 10th सॉन्ग आज के प्रोग्राम का हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं और ये खूबसूरत सा सॉन्ग आप सुनिए और वापस आते हैं नंबर 9th लेके। आज याद रखिएगा FM स्पेशल टॉप 10 है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब बारी है आज के FM टॉप 10 स्पेशल के सॉन्ग नंबर 9 की, और ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: पांच बजकर के 22 मिनट हुए हैं और FM टॉप 10 का नंबर 7

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: समय हो गया 5:29 और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। इस समय आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 स्पेशल और इस समय आपके रेडियो सेट पर आ रहा है नंबर 6 सॉन्ग। आप इसे सुनिए और ट्यून इन करके रखिए, तुरंत आते हैं वापस।

5:36 और अब ये आ रहा है आपके रेडियो सेट पर आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 5।

5:40 और FM टॉप 10 का 5वां गाना आप सुन रहे थे और इस समय आपके रेडियो सेट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का 4था गाना। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

5:46 हो गए हैं और बिना देरी के हम ले चलते हैं आपको सॉन्ग नंबर 3 की तरफ और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आज के FM Top 10 का तीसरा गाना।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पांच बजकर के 51 मिनट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 100.7 FM रेनबो पर। और ये रहा आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग, सेकंड टॉप सेकंड सॉन्ग।

बिल्कुल, और ऐसे ही खूबसूरत तरीके से याद आते हैं। और 5:55 और ये रहा 56 मिनट का समय हो गया है, और बिना देरी के आज FM टॉप 10 स्पेशल का ये टॉप सॉन्ग शो स्टॉपर आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए। तुरंत आते हैं न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपके अपने प्रोग्राम शाम अवध में, लेकिन न्यूज़ ब्रेक कह रही हूँ इसका मतलब ये है कि आज FM टॉप 10 को यहीं करना होगा वाइंड अप, और ये रहा आज का टॉप सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में खेती किसानी के क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसानों ने कृषि विकास दर को 8 से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भीषण अग्नि दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक बताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर रोजमर्रा और चीजों की लागत को कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, और ये है धड़कन लखनऊ की। 6:05 हुए हैं और आपके दिलों में, आपकी जबान में भी FM रेनबो गूंजता है और गूंजता रहेगा। ये खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, सलाम है आपको प्यार भरा। प्रोग्राम शाम अवध का करते हैं खूबसूरती से आगाज़, और ये खूबसूरत आगाज़ आपके साथ लेकर के आया है थोड़ी सी राहत दिन भर की चिलचिलाती धूप से। और ये खूबसूरत अवध की शाम हमेशा दिल में एक अलग सी ठंडक लिए रहती है। आप जब बाहर निकले इस खूबसूरत शाम का दीदार करने, आपको लगभग इश्क तो हर दिन हो ही जाएगा। इससे ट्यून इन करके रखिए, आपके शहर का प्रोग्राम है, आपके अवध की जमी का प्रोग्राम है, आपके शहर के छुटपुट खबरों का आपके लिए एक इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम है। ट्यून इन करके रखिए, आपके दोस्त चंद्रकला है आपके साथ।

6:15 हो रहे हैं और लखनऊ में आज जो है ना भंडारे का तो आलम नहीं है। भंडारे वाले दिन यानी मंगल और शनिश्चर को बहुत बहुत भीड़ देखने को मिलती है और शनिवार को भी, इसलिए क्योंकि जो लोग मंगल को भंडारा नहीं करवा पाते हैं वो शनिवार को, अपनी अपनी श्रद्धा है, कुछ लोग मानते हैं कि मंगल भी बजरंगबली का दिन है और शनिवार भी, लेकिन आज तो बुधवार है ना। फिर भी उसके बावजूद भी ट्रैफिक तो शहर में हमारा जिंदाबाद रहता है कि जनता भी इतनी ज़्यादा है और यहाँ के शहर की सड़कें, यहाँ की गलियाँ सब कुछ गुलजार रहता है, इतना अच्छा रहता है कि मतलब भरे रहते हैं लोग। यदि आप बाहर निकल रहे हों या बाहर से घर की तरफ जा रहे हों तो फिर आपको एक स्वीट सा रिमाइंडर दे दें कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करने की ज़रूर सोचें। यातायात नियमों का आपको पालन करना है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना है और फिर मैं तो यही कहूँगी अपने स्टाइल में कि भाई अगर आप यातायात नियमों का पालन करते हैं और अपनी सुरक्षा का, अपने घर वालों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगा करके रखते हैं, समझ रहे हैं, आपके चेहरे पर अलग सा नूर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। बस ये खूबसूरत छोटा सा रिमाइंडर आपको देना था और इस रिमाइंडर के साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगला जो कट होगा उसमें हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में। ट्यून इन करके रखिए और खूबसूरत से गाने आपके रेडियो सेट पर आते रहेंगे।

कितनी खूबसूरत बात है ना रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। और शरबतों की बात की जाए तो इस समय मौसम भी शरबत वाला है ही। शरबत अलग अलग फ्लेवर का होता होगा, वैसे मुझे तो शरबत पसंद नहीं है कोई सा भी, क्योंकि मुझे मीठा ही बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। पर थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए शरबत बहुत ज़्यादा ना पिए तो अच्छा है। नींबू पानी से काम चल सके, आम पना से काम चल सके तो बेहतर है। खैर बाकी आपकी इच्छा। लेकिन रुआफ़ज़ा शरबत ये सब अच्छा तो लगता है मुझे, रुआफ़ज़ा की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पीने में उतना मज़ा नहीं आता। अपनी अपनी पसंद है, मैं वैसे आपको अपनी पसंद क्यों बता रही हूँ। लेकिन ये जो मौसम जैसा है, क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है इसलिए मुझे चटपटा ज़्यादा पसंद है। तो चटपटा पसंद है तो मैं आपको खाने की बात बताती हूँ कि खूबसूरत शाम है, 6:30 का समय है, लगभग 6:27 हो रहे हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इस समय हैंग आउट करने, या थोड़ा सा धूप से परे शाम की थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने, तो फूड वैली अपना जो है 10 के पास बहुत फेमस। फूड वैली में जो है इसमें ट्रेंडिंग चल रहा है, और इस समय जो आपको एक ट्रेंडिंग चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत पहले मैंने आपको ये ट्रेंडिंग चीज़ बताई थी, आपको याद होना हो, लेकिन इस समय मिस्ट फैन चल रहे हैं। आपको पता है आप उस वैली में जाएंगे तो ऊपर से मिस्ट फैन चल रहे होंगे जो आपके ऊपर हल्की हल्की ठंडी फुहारें, मतलब बहुत भीगने वाली नहीं, ठंडी फुहारें आती हैं। वो जो मिस्ट है ना, वो आपको बहुत मतलब कूलिंग वाला इफेक्ट भी देगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मतलब एकदम एसी वाला तो माहौल नहीं देगा, लेकिन हाँ ऐसा आपको फील कराएगा।

कि थोड़ा ठंडक तो है भाई इधर। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है और दूसरा आप जा सकते हैं, वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रही बट बता रही हूँ कि वहाँ उस तरफ बहुत भीड़ होती है, आप चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं, खाना ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में आप जो योगदान देते हैं, अगर आप खाना खाने निकलते हैं, आप जाते हैं, आप कह रहे होंगे ये तो पता ही हम तो जाते ही हैं खाने के लिए, लेकिन एक काम जो करते हैं आप वो बड़ा उल्टा सा कर देते हैं। वो काम ये है कि आप जो भी फूड ऑर्डर करते हैं ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं अंदर बंद दरवाज़ा करके, और गाड़ी आप बंद नहीं करते, एसी चला के रखते हैं अंदर, और उससे ना गर्मी बहुत ज़्यादा आती है बाहर। तो मैं तो कहूँगी छोटी मोटी चीज़ नहीं भाई, मैं तो सीधे सीधे आपसे कहूँगी आपका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। आप इसको जो है थोड़ा सीरियसली लें और कोशिश करें कि थोड़ी सी खुली हवा में आए, कोई बात नहीं थोड़ी देर गर्मी लगेगी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्ट का मज़ा लें, गर्म मिस्ट का, जो भी, ट्यून इन करके रखिए और सोचिए इस बारे में ज़रूर।

6:37 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध. आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ. आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो. और अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि भाई अगर आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं तो होशियार रहिए, सावधान रहिए. वैसे भी आपको पेट्रोल बचाना है, ईंधन बचाना है ना भाई. फ्यूल अगर आप नहीं बचाएंगे, क्राइसिस हो गई तो फिर कहाँ भाई कार के अंदर इसी में बैठ के फूड एंजॉय कर पाएंगे. गर्मी तो झेलनी पड़ेगी बॉस, थोड़ी बहुत तो झेलनी पड़ेगी, है ना. मौसम है, इसे कौन रोक सकता है, सोचिए. तभी तो कहते हैं ना, नेचर है, प्रकृति है, बड़ी बलवान है. पर इसके आगे झुकना पड़ेगा बॉस, इसके आगे मानना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा कि हाँ, यस, नेचर इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल.

अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आपको बताऊं और याद दिलाऊं आपको कि थोड़ा सावधान रहें, और वैसे सावधान रहने से ज़्यादा आपको जिम्मेदार नागरिक कहलाने में ज़्यादा मुझे लगता है कि प्राउड फील होगा। भाई सरकार जो है ना वो पॉल्यूशन को कम करने का एम रख रही है, 30-35% कम करने का एम रख रही है, और जल्दी ही अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अपना जो पॉल्यूशन है, मतलब आपका अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्यूल भी नहीं मिलेगा। तो मतलब इसका इन्होंने नाम रखा है कि नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल, ये नियम लागू होने वाला है। और जो आपका एक कार्बन उत्सर्जन कहते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा गाड़ियों से निकलता है, उस पर कंट्रोल रखा जाएगा। और ये जो जहरीली हवा है, जो गैस है, इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल, भाई जीने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही, तो इसी कड़ी में जो है लगभग कई हजारों पेट्रोल पंप्स पर नो प्रदूषण प्रमाण पत्र नो फ्यूल व्यवस्था लागू होने वाली है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन हालांकि इसको अभी शुरू होने में समय है, लेकिन फिर भी आप अपना जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके रखा करिए, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना। ट्यून इन करके रखिए, और भी आपके लिए खबर लेके आते हैं।

इतना खूबसूरत गाना है ना ये, और बहुत टाइम के बाद इसको जब भी सुनती हूँ तो अलग सा एक खूबसूरत सा एहसास होता है। और ऐसे ही बस ये सफ़र चलता रहेगा और ये खूबसूरत सा सफ़र जो है आपका चलते चलते आगे तक पहुँचने वाला है। तो बस आप ट्यून इन करके रखिए 100.7, और प्रोग्राम चल रहा है शामे अवध। खबर तो यह है कि फिलहाल अभी कुछ दिनों और मौसम सही होने की संभावना नहीं है, और अगर मौसम सही नहीं रहेगा तो गर्मी होगी। अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है सबको, और ध्यान जो रखने की ज़रूरत है वो ये है कि डिहाइड्रेशन से बच के रहना है, चाहे वो पानी पीने की बात हो, चाहे वो शरबत पीने की बात हो, वो अपने हेल्थ के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देख के थोड़ा सा बन के बिठा करके तालमेल मौसम के साथ रखना है।

6:54 हो गए हैं और खुशनुमा जो शाम है आपकी, खूबसूरत शाम है, इस शाम को खूबसूरत बनाने का हमारा वादा था और वादा है, अभी आपकी शाम और खूबसूरत होगी। एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला चलता रहेगा। FM रेनबो आपने ट्यून किया है, ये जो शाम है ये खूबसूरत हो आपकी, और हमारी दिल से दुआ है कि आपकी सारी इच्छाएँ जो है ना वो पूरी हों और जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हों वो पूरा हो। शाम के समय थकन के बाद कोई ऐसा बोले कि सब ठीक हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता है नहीं? और इस एकदम झकास गाने के साथ आपको कहते हैं प्रोग्राम शाम में अवध से बाय-बाय, मुझे जाने की दीजिए इजाज़त। और अगला जो प्रोग्राम है हेलो FM, आपका अपना फरमाइशी प्रोग्राम है, आप उसमें मेल्स तो नहीं लेकिन सीधे डायरेक्ट कॉल करते हैं और कॉल पर अपनी बताते हैं हमें फरमाइश और हम करते हैं उसे पूरी। बस टॉप 10 न्यूज़ के उस पार हम जुड़ते हैं आपसे।

नमस्कार, अब सुनिए एफएम टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुई भीषण आग दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद बताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में आज देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। इनमें आगरा की बिरहू ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कानपुर में कमलापत मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। आज की परीक्षा में कुल 221,489 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि प्रदेश का संस्कृति विभाग आगामी 5 जून 2026 को 51 लोगों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये सम्मान प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ टॉप 10 समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 7:04 हो गए हैं और प्रोग्राम हेलो एफएम शुरू हो चुका है और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी चालू हो चुका है। और ये प्रोग्राम जो है फरमाइशी प्रोग्राम है और इसमें आप हमें कॉल करते हैं सीधे हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर और आपके कॉल्स पर आप जो हमें फरमाइशें बताते हैं हम वो पूरी करते हैं ऑन एयर। और अगर आप नए श्रोता हैं, हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, तो हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 2238845 और दूसरा नंबर है 2238852। इन दोनों नंबरों के आगे आपको कोड लगाना है 0522। फिर से एक बार नंबर सुन लीजिएगा 2238845 2238852। ये हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं और इन पर आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइश पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनकी कॉल हमारे पास आई थी और देख लेते हैं कि वो हमारे साथ लाइन पर हैं या नहीं हैं। हेलो हेलो हेलो
1: नमस्ते साहब।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सतीश बोल रहे हैं।
0: सतीश जी,
1: जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जिला सीतापुर बिसवा से।
0: सीतापुर से
1: जी,
0: अच्छा, कब से सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो?
1: रेनबो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, पाँच छः साल से।
0: पाँच
1: पहली बार लगा हुआ है, बहुत दिन से लगा रहे हैं।
0: आज पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: हाँ, उसमें लगा है, खाली जो संदेश है आपके हैं
0: जी
1: लगा।
0: जी अरे वाह, हेलो एफएम में पहली बार कॉल लगाया आपका, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो।
1: समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ बात मत करिए, हम समझ सकते हैं पहली बार आपकी कॉल लगी। क्या करते हैं आप संदीप जी?
1: लखनऊ में पुरनिया चौराहे पे फल की दुकान पे काम करते हैं।
0: अच्छा, लखनऊ पुरनिया चौराहे पे।
1: जी जी,
0: क्या बात है। अभी कैसा लग रहा है आपको मौसम यहाँ, क्या लगता है? गर्मी
1: थोड़ी हवा चली, बहुत गर्म हो रही थी।
0: अभी भी आपने दुकान लगाई हुई है?
1: दुकान तो 11 बज जाता है ना बंद करने में।
0: अच्छा, रात का 11 बज जाता है।
1: जी जी,
0: चलिए ठीक है। अभी इधर एक दो दिन पहले तो बढ़िया मौसम था।
1: हाँ, दो तीन दिन पहले तो बहुत बढ़िया मौसम।
0: जी
1: गाना बताएं सर?
0: बताइए बताइए।
1: फिर रांझा का गाना, अपना पता मिले ना कबर यार की मिले।
0: अच्छा, इतना खतरनाक गाना। नहीं मतलब आपको ये इस तरीके का गाना क्यों सुना, आप बताइए, इतना सैड गाना मतलब।
1: अरे पुराना गाना आपको अच्छा लगता है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब आप ज्यादातर सैड गाने ही सुनते हैं?
1: पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, और आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं?
1: हम बताए थे बिसवा जिले से।
0: अच्छा, आप हाँ। जी आपने बताया था आप सीतापुर के रहने वाले हैं।
1: हाँ, और लखनऊ में फैजुल्लागंज भी अपना घर है।
0: यहाँ फैजुल्लागंज?
1: जी
0: जी, चलिए
1: बिसवा के रहने वाले सीतापुर के।
0: जी
1: नाम ले लेना आप?
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: हम डिक्रेन का आना चाहे आप लोगों को और फुलबानों को, आसपा को और रफी को।
0: जी चलिए ठीक है, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। संदीप जी, आपका जो गाना है हमने क्यों कर लिया है आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और संदीप जी की पसंद का ये जो गाना है आप और हम सुनते हैं भाई, और इनकी फरमाइश है, सुनना पड़ेगा और सुनना है हमें। तो ये रहा संदीप जी की पसंद का ये गाना, फिर उसके बाद हो सकता है आपकी कॉल की हो बारी।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
3: सात बजकर के 13 मिनट हो

0: गए हैं प्रोग्राम हेलो एफएम चल रहा है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 एफएम रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन जुड़े हमारे साथ। हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैम, हम गया प्रसाद भंडिया सिदौली सीतापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: जी दया प्रसाद जी, कैसे हैं आप और कैसा है सीतापुर सिदौली का मौसम?
1: जी मैम हम ठीक हैं, मौसम भी थोड़ा अच्छा है।
0: आज तो गर्मी रही होगी दिन भर?
1: हाँ दिन में गर्मी है थोड़ा, अब इस समय थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है मैम।
0: शाम के समय थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाता होगा।
1: हाँ मैम।
0: और दया प्रसाद जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैम खेती किसानी करते हैं।
0: अरे वाह, तो इस समय क्या गेहूं कटाई के बाद क्या हुआ अब?
1: जी मैम इस समय खेत खाली पड़े हुए हैं।
0: अच्छा, गेहूं कटाई मतलब सब सब
1: हाँ
0: पूरा हो गया?
1: हाँ कटाई हो गई है गेहूँ, अब खेत वो जोते हुए खड़े हुए हैं,
0: जी
1: अब बारिश के बाद अब बुवाई चालू हो गई
0: धान की है ना?
1: जुलाई जुलाई में। हाँ मैम।
0: अच्छा, तो अभी मतलब खेत खाली रहते हैं, कुछ और छोटी मोटी ऐसी फसल तो नहीं होती है?
1: जी मैम नहीं करते नहीं है,
0: अच्छा
1: जैसे उड़द होता है, हाँ मक्का होता है और सब
0: हाँ
1: हो जाता है मैम,
0: हाँ
1: लेकिन
0: मक्का तो
1: धूप की
0: होता है।
1: वजह से, ये धूप की वजह से करते नहीं मैम, धूप बहुत होती है ना,
0: गर्मी तो बहुत है। हाँ
1: गर्मी बहुत होती है।
0: ये तो बात है। और दया प्रसाद जी, आपके पसंद का गाना तो हमने, खूबसूरत गाना आपने रिक्वेस्ट किया है वो तो हमने निकाल लिया है, और कोई बात हो तो कह डालिए
1: जी मैम डेडिकेट आपको करना है बस मैम।
0: बस हमें।
1: जी मैम बस,
0: चलिए
1: क्योंकि
0: बहुत बहुत
1: आप
0: शुक्रिया
1: हमारे लिए है ना मैम, हमारे
0: जी।
1: लिए प्रोग्राम करते हैं मैम, डेडिकेट आपको बनता है, और
0: जी
1: जितने लोग सुन रहे हैं तो अपना अपना नंबर मिला है मैम, वो अपने पसंद का गाना सुने मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी पसंद का सुनेंगे।
1: जी मैम जी
0: चलिए
1: नमस्ते
0: ठीक
1: मैम।
0: है, ठीक है दयाराम जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, फिर होगी आपसे कभी बात। और दयाराम जी की पसंद का ये जो गाना है हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, और ये गाना सुनने के बाद ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का एक बुलेटिन, और उस बुलेटिन के उस पार हमारी होगी फिर से प्रोग्राम हेलो एफएम में बात।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के

0: खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
1: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1.25 करोड़ घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43.52 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।

0: समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: सात बजकर के 31 मिनट हो गए हैं और प्रोग्राम हेलो FM चल रहा है। आपकी दोस्त चंद्रकला है इस समय आपके साथ। वेलकम बैक न्यूज ब्रेक के इस पार। आपकी कॉल्स लगातार आ रही हैं और जो हम कर सकते हैं बेस्ट इन बेस्ट वो ये है कि आपकी कॉल वन बाय वन हम रिसीव कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो कोई अगर ये सोचकर नाराज़ होता है कि कॉल नहीं उठ रही है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि एक समय में तो एक ही कॉल रिसीव की जा सकती है। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए उस दिन जिस दिन आपकी कॉल लग गई है, और जिस दिन नहीं लगी आपकी कॉल उस दिन के लिए सोचिए कि हो सकता है अगले दिन लग जाए, आपका दिन अगला दिन हो। खैर बिना देरी के हम देखते हैं कि कौन जुड़े आज अब हमारे साथ। हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो? कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: हम विकास कुमार प्रजापति बात कर रहे हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोलक मास्टर हैं।
3: विकास कुमार प्रजापति जी,
4: जी
3: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: बाराबंकी बड़ेल से।
3: बाराबंकी से?
4: हाँ, बड़ेल से।
3: बड़ेल, अच्छा, बाराबंकी बड़ेल से आप बोल रहे हैं
4: जी।
3: और बताइए बाराबंकी में क्या चल रहा है सीन? और
4: विकास कुमार प्रजापति नाम है, ये चैनल आज बंद हो गया है। हम मोबाइल अलंगम गाना सुनते हैं आप लोग की, बहुत अच्छा लगता है, मगर आपकी चैनल बंद है गया है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, इधर चैनल बंद है आज बाराबंकी का।
3: चैनल बंद है मतलब बाराबंकी में FM नहीं सुनाई दे रहा?
4: जी नहीं बज रहा, सुना रहा, विविध भारती है, उज्ज्वला भी बंद है।
3: विविध भारती मतलब लखनऊ से कोई स्टेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि सिर्फ FM नहीं आ रहा है?
4: अरे हाँ, हिंदी बंद है, विविध भारती वाला और बारह घंटे समाचार आते हैं, ये चैनल बंद है।
3: अच्छा, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो। आप मोबाइल एप्लीकेशन में सुनते हैं ना, मोबाइल में?
4: जी कीपैड मोबाइल लगते हैं।
3: जी चलिए कोई बात नहीं विकास जी। और आपने बताया था आप ढोलक मास्टर हैं?
4: जी ढोलक बजाते हैं।
3: तो आपने ढोलक सीखी है कि मतलब वही शास्त्री वाली ढोलक सीखी है कि ऐसे आप जो लोक धुन है लोकगीत है उसमें बजाते हैं?
4: अरे सुंदरकांड से बजाते हैं, सुंदरकांड में।
3: अच्छा, सुंदरकांड में बजाते हैं
4: जी।
3: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आप कलाकार आदमी हैं आप।
4: जी हम आपको आवाज प्रोग्राम बहुत सुनते हैं, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं आप लोग।
3: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब सबके लिए आपने बोला है ये कि हमारे FM के सभी लोग अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
4: जी
3: बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। और आपकी पसंद का
4: नगीना पिक्चर के हमको गाना सुनाइए, नगीना पिक्चर का गाना सुनाइए।

0: नगीना आपने तो लेकिन कोई और गाना बोला था।
1: अरे हाँ, बोल गाना सुना देना, और क्या देना, बढ़िया है।
0: आपने हमें बोला था दिल लगा लिया है मैंने प्यार करके।
1: जी, हाँ बोलिए, लगाइए लगाइए।
0: हाँ मतलब आप कंफ्यूज ना होइए, जो आपको सुनने का दिल हो एक ही गाना सुन सकते हैं एक समय पर।
1: जी, लगाइए जी।
0: चलिए विकास जी, आपने पहले कभी कॉल किया है एफएम में?
1: कई बार जी कहते बिजी बहुत जाता था आपके पास फोन।
0: अच्छा, बिजी तो जाता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ना एक साथ।
1: जी आपको चंद्रकला नाम है, नाम हम नामों भी जानते हैं आपको।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपको हमारा नाम भी याद है।
1: जी
0: चलिए शुक्रिया विकास जी, आपका ये जो आपने गाना बोला था वो हमने ऑन एयर करने के लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है, और आपसे
1: जी
0: फिर कभी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और विकास जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं आप और हम सभी बाकी श्रोता मिलकर, और फिर उसके बाद हो सकता है आपकी बारी हो।

0: 7:39 हो गए हैं और अगली जो कॉल हमारे पास है उसको देखने के लिए हमें जल्दी से देखना पड़ेगा कि कौन जुड़ा है हमारे साथ फोन लाइन पर. लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर, और वो नंबर्स जो हैं आपको हमने बताए हैं. मुझे तो लगता है कई सारे लिसनर्स को वो नंबर ज़बानी याद हैं. और बिना देरी के हम देखते हैं कि अगला जो कॉल है किनका लगा हमारे स्टूडियो में आज. हेलो.
1: हेलो, नमस्ते मैम.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम सुषमा यादव, रहीमाबाद लखनऊ से.
0: सपना जी, कैसी हैं आप?
1: मैम सुषमा यादव.
0: हाँ सपना यादव, मतलब आपको सपना जी कह रहे हैं हम.
1: जी नहीं मैम, सुषमा यादव.
0: अच्छा, सॉरी, हमें क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था. सपना हमने सुना था. सुषमा जी हैं आप
1: जी?
0: ओके, सुषमा जी, तो कैसी हैं आप?
1: मैम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं.
1: मैम पहली बार कॉल लगी इसमें. हेलो फरमाइश में मैम.
0: अरे वाह, पहली बार.
1: जी मैम.
0: चलिए बधाई हो आपको, पहली बार कॉल लगी और लगते रहेगी अब.
1: जी मैम पहली बार लगी, ट्राई कर रहे हैं 6 महीने से.
0: 6 महीने से कॉल कर रही थी आप?
1: जी मैम, कॉल लगती है लेकिन रिसीव नहीं होती है ना.
0: नहीं नहीं, मतलब वो प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो है, अगर आपकी कॉल हिस्से में, जैसे देखिए हम गाना ख़त्म होने वाला था, हमने देखा कि कॉल उठाया और आपका लग गया, तो वो इत्तेफाक होता है.
1: जी मैम.
0: पता नहीं चलता है ना, ऐसा कुछ जुगाड़ है नहीं यहाँ जो कि पता कर सकें, या फिर हम किसी का, ऐसे जुगाड़ है भी, पता हमें चल भी जाए तो भी, मतलब ऐसी पार्शियलिटी होती नहीं है नंबर से जिसका मतलब आ गया.
1: मैम आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है, बहुत लग रही है.
0: अरे बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका. आप कब से सुनती हैं एफएम?
1: जी मैम बहुत सुनते हैं, सारे प्रोग्राम दोपहर से 10 बजे से चालू करते हैं, शाम 4 बजे तक जरूर सुनते हैं, उसके बाद 7 बजे से स्टार्ट कर देते हैं.
0: अच्छा चलिए, और आप क्या करती हैं?
1: मैम हाउस वाइफ हैं और टाइम मिलता है तो सिलाई कढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत.
0: अच्छा सिलाई कढ़ाई. बच्चे हैं आपके?
1: जी मैम.
0: चलिए स्कूल जाते हैं?
1: जी स्कूल जाते हैं.
0: अच्छा
1: मेरी पूरी फैमिली है, सास ससुर हस्बैंड.
0: अच्छा
1: बच्चे जी.
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे, और आपकी पहली बार कॉल लगी है, अब कॉल लगते रहेगी. आप मतलब सुबह से सुनती हैं, मतलब जब जब आपको टाइम मिलता है?
1: हाँ मैम सुनते हैं, सुबह भी सुनते
0: हैं. चलिए अच्छा लगा सपना जी. और एफएम से आपको कैसे सुनती है, मोबाइल में सुनती हैं?
1: सुषमा जी.
0: ओह सॉरी, सुषमा जी. सुषमा जी, और मतलब आप मोबाइल से सुनती हैं कि
1: रेडियो से सुनते हैं? रेडियो से.
0: अरे वाह, कौन सा वाला सेट है आपके पास?
1: मैम उसमें बड़ा वाला है,
0: पुराना वाला जो होता था
1: जी.
0: अरे वाह, वो तो बहुत मज़ेदार बात है. रेडियो सेट में सुनना एक अलग ही मज़ा आता है, मोबाइल में उतना अच्छा नहीं लगता है.
1: जी मैम पहले फ़ोन पे सुनते थे तो मैं हस्बैंड से बोले एक बार ला दो
0: जी,
1: उन्होंने कहा ठीक है ला देंगे, फिर एक बार थोड़ा सुन सुना आ जाओगे.
0: हाँ
1: और साइड दे दिया फोन लेके, रेडियो लेके मैम.
0: अरे मतलब आप नाराज थी?
1: मनाने के लिए रेडियो ला के दे दिए.
0: अरे वाह, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब अगर नाराज हुआ जाए तो जो मांगी थी चीज. अच्छा ये बढ़िया बात है, लेकिन आपको आपकी पसंद की चीज तो मिली कम से कम.
1: बहुत अच्छा लगते हैं ना.
0: हाँ बहुत अच्छी बात है. क्या नाम है आपके हस्बैंड का?
1: मैम काशीराम.
0: काशीराम जी,
1: जी.
0: चलिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, और बहुत अच्छा हमें ये लगा सुनकर कि आपका बहुत ख्याल रखते हैं आपके हस्बैंड. आप भी ख्याल रखा करिए उनका.
1: रखते हैं, मैं थोड़ी सी नोक झोक तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में.
0: हाँ नोक झोक चलती है, लेकिन थोड़ा सा मिठास जो है ना होनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत ज़्यादा अगर बोलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा अगर उनको, नहीं आप परेशान नहीं करती होंगी बेशक, मुझे पता है आप बहुत ख्याल रखती हो, पर मतलब थोड़ी सी मिठास होनी ज़रूरी है. अगर कभी कुछ हो भी गया तो प्यार से सुलझाया जा सकता है मामला.
1: मैम थोड़ा सा नाराज थे तो उन्होंने कहा ऐसे नाराज है गुस्से हैं तो सर रेडियो ला दो तो जल्दी से मान जाएंगे.
0: बताइए उनके साथ तो आपको बहुत ज्यादा स्वीट होने की जरूरत है.

0: अभी नहीं, वो खुद ही इतने स्वीट हैं कि आपको मतलब समझने की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए खुद तैयार रहते हैं ना।
1: जी मैम।
0: अब देखिए एडवाइस भी कौन दे रहा है, कौन व्यक्ति एडवाइस दे रहा है आपको, तो सब कुछ समझदारी है, सब कुछ पता है पहले से ही। और मेरी दुआ है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैम थैंक यू
0: आपकी पसंद का एक गाना जो है हम क्यों कर देते हैं, भेज देते हैं रेडियो सेट पे आपके, ठीक है?
1: नाम लेना चाहते हैं कुछ लोगों
0: जी
1: का।
0: जी बिल्कुल।
1: मैम सीमा रावत हैं राजाजीपुरम से, मैम हरकेत हैं बंथरा लखनऊ से, अनिल भैया हैं
0: जी
1: और हरकेत भैया हैं
0: जी
1: और मैम और रिंकी पिंकी हैं मैम,
0: अच्छा
1: और मैम अपने परिवार को पूरी फैमिली को सभी
0: चलिए
1: लोग
0: ठीक है।
1: सुन रहे हैं मैम।
0: अरे वाह, चलिए ठीक है ठीक है। सुषमा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और
1: और मैम सभी सुनने वाले को आपको साथ में भी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुषमा जी की पसंद का ये गाना हम सुनते हैं और तुरंत वापस आएंगे बिना देरी के आपकी फरमाइश लेकर के।

0: 7:50 हुए हैं और अब बात करते करते 7:51 हो चुके हैं और अगली कॉल किनकी है ये जानने के लिए हमें कॉल पैच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन जुड़े अब अगले कॉलर हमारे साथ। हेलो
1: हेलो मैम को शाम की नमस्ते, कैसी हैं?
0: नमस्ते जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए।
1: जी मैं राजेश बोल रहा हूँ हरदोई कुर्सट से। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आप कैसे हैं राजेश जी?
1: बस अच्छे हैं, अभी थोड़ा बाग की तरफ आए थे तो रेडियो सुन रहे थे और
0: अच्छा।
1: फोन ट्राई किया तो काफी अरसे के बाद में आज बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 100.7 FM रेनबो लखनऊ की फ्रिक्वेंसी पे न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन रहा था तो बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, बड़ा मतलब अच्छा लगा, आप ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं तो मतलब आप बताइए कि आपको रेडियो पे ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब आपके हिसाब से क्या अच्छा लगता है आपको, रेडियो होता तो ज़्यादा अच्छा होता है या फ़ोन ज़्यादा अच्छा है?
1: देखो जहाँ पे जैसी आवश्यकता हो वो चीज़ अच्छी रहती है। सच बताएं तो मेरे पिताजी का रेडियो ना रखा रहता है, ठीक है, तो उससे भी सुन लेते हैं कभी कभार। चाहे आपका ये अपना प्राइमरी चैनल हुआ आकाशवाणी लखनऊ और चाहे FM हुआ या विविध भारती हुआ, सब उस पे मिल जाता है फ्रिक्वेंसी पे। बट जो न्यूज ऑन AIR ऐप है उसके माध्यम से कहीं भी हो, अभी मान लो हम मेरठ में कभी कभी मतलब वहाँ रहते हैं तो वहाँ भी हम सुन लेते हैं एप्लीकेशन पे, कहीं भी कोई हो तो एप्लीकेशन पे सुनने में बहुत आसानी रहती है, बस अच्छे से इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुविधा है, मतलब पोर्टेबल है रेडियो, हर जगह हो सकता है फ्रिक्वेंसी ना पकड़े।
1: बिल्कुल, और इस और एक चीज ये रहती है कि आप अपने मोबाइल में क्रोम पे जाइए तो वहाँ पे 100.7 FM डालिए, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं, बस लाइव में बस इंटरनेट वहाँ भी कनेक्ट होना चाहिए।
0: बिल्कुल, किसी भी सर्च इंजन पे आप बस सर्च कर लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चलिए,
1: बहुत अच्छा, आसानी रहती है सुनने में और अच्छा भी लगता है और काम भी बाधित नहीं होता है
0: जी,
1: काम भी करते करते सुनने में और अच्छा भी लगता है ना।
0: बिल्कुल, चलिए राजेश जी, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाला है, बाकी कोई बात अपनी तरफ से आपको कहना हो?
1: बस यही है कि रेडियो का साथ बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे और रेडियो के जितने हमारे मित्र हैं सुन रहे हैं सब यूं ही सुनते रहे 100.7 FM रेनबो लखनऊ की फ्रिक्वेंसी।
0: क्या बात है राजेश जी, आपके यहाँ हरदोई आपने बताया ना?
1: जी जी,
0: मतलब कैसा एरिया है उस तरफ, हरियाली है और थोड़ा टेम्परेचर इस समय गिर गया है, 8 बजने को है?
1: बिल्कुल, टेम्परेचर तो लगभग क्या है कि भी कहते हैं नौतपा चल रहे थे लेकिन नौतपा पूरे ही नहीं हो पाए कि मौसम इतना ज्यादा पलट गया कि ठंडा हो गया बिल्कुल।
0: इस समय 8 बजे की बात हम कर रहे हैं, शाम की बात।
1: मौसम मतलब अभी मैम बाग के पास में है तो मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है और अच्छा भी लग रहा है।
0: अच्छा, वही हम पूछने वाले थे कि इस समय आप बाग की तरफ क्या कर रहे हैं?
1: मतलब आम का बाग है वही के पास में थे।
0: अरे रात में आप क्यों उस तरफ गए हैं, यूं ही घूमने के लिए?
1: नहीं, आम लगे हुए हैं, आम के बाग में रखा जाता ना तो अपना बाग है।

0: अच्छा आप देखने गए हैं?
1: घूमने आए थे, तभी रेडियो सुनते सुनते चले आए।
0: चलिए
1: चीजें है ना।
0: ठीक है राजेश जी, फिर आपकी पसंद का गाना बजाया जाए, रेडियो सेट पे सबको भेजा जाए और फिर होती
1: बिल्कुल
0: आपसे
1: बिल्कुल
0: बात।
1: बिल्कुल। ओके मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, फिर बात होगी। और राजेश जी की पसंद की इस गाने के साथ हमें कहना होगा आपसे अलविदा आज के लिए, और हमें जाने की दीजिए आप अनुमति, फिर आपसे किसी और दिन मुलाकात होगी, किसी और प्रोग्राम में होगी, लेकिन तब तक के लिए जो है आपको ये गाना आपके रेडियो सेट पर भेज कर जा रहे हैं। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भाई कहने का तो प्रोटोकॉल है, बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप खुद अपना ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। फिर मिलेंगे कभी, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अनुमति दी है। कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 3,539 पदों के लिए आयोजित 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज प्रदेश के 36 जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। परीक्षा का दूसरा चरण कल होगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पहले दिन आयोजित परीक्षा में कुल 221,489 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके लिए संस्कृति समूह के प्रतिनिधियों का आगमन आज से शुरू हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिश्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से भी परिचित कराया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की.
5: Entertainment और information रहेगा संग संग.
6: मेरी रूह का परिंदा फड़ फड़ा.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.
7: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तू कहीं भी रहे, तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और अगर मैं ये कहूं कि सुना है लोग उसे आग भर कर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है, चलो आज बात करके देखते हैं। आबशार में जमशेद हूं आपके साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ।

और जिंदगी का मजा वाकई बड़ा ही खूबसूरत होता है जहां पर एक बारगी फिर से जिंदगी का आगाज होता है, उन बातों का आगाज होता है और जो बिताए हुए पल होते हैं कितने खूबसूरत से लगते हैं, कितनी खूबसूरत होती है उनकी याद। एक बारगी फिर उसी लम्हे को जीने की चाह अपने आप दिल में आया हो जाते हैं और फिर उसके बाद शायद जिंदगी में किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रहती। कुछ ऐसा ही होता है जब जिंदगी की शुरुआत खूबसूरत होती है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

और अब शायद उसके बिना जिंदगी का हर एक लम्हा सूना सूना सा है, बदरंग सा है। जिंदगी है तो बस उसके साथ ही है, और अगर वो नहीं तो शायद ही जिंदगी नहीं।

ये माना कि महफिल जवा है, हंसी है, तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। तू मेरा नाम ना पूछा कर, क्यों? क्योंकि मैं तेरी सोच में शामिल हूं, मैं तेरी नींद का किस्सा हूं, मैं तेरे ख्वाब का हासिल हूं। और अगर तू नहीं तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं।

करनी होगी। सब कुछ तो उसको ही सौंप दिया था, ये जिंदगी, ये खुशियां, खुशियों का हर पल, जिंदगी का हर लम्हा। 8:27, 7 में 1 सेकेंड्स। प्रोग्राम आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मैं तेरी याद का भावार हूं, मैं तेरी सांस का झोंका हूं। तू मंजर है, मैं पस मंजर हूं, मैं लम्हा हूं, मैं जज्बा हूं, तू है तो मैं हूं।

आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और खुश नसीबी मेरी कि आपसे काहे बगाहे मुलाकात जरूर हो जाती है आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर। और बस प्रोग्राम आबशार का वक्त आज यहीं तक, और चलते चलते मजाज साहब की गजल का एक शेर मुझे याद आ गया कि हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, तेरे जलवों में घिर गया आखिर जर्रे को आफताब होना था। होती है मुलाकात कुछ देर के बाद, यानी समाचार संध्या के बाद। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं

0: जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती

0: योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
7: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

बिल्कुल, रजनी कंथा प्रोग्राम में भी मैं रहूंगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले 9 बज चुका है और 9 बजने पर होता है आपका एक और पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम, जहां पर कुछ नए गाने, न्यू रिलीजेस यानी जो नई फिल्में हैं उनके गीत होते हैं, साथ में होते हैं कुछ पॉप सॉन्ग डिस्को बीट पर आधारित, और इस पर आपके पैरों की थिरकन हो जाती है शुरू। चले

करते हैं शुरुआत सुनिधि चौहान और मीका सिंह की आवाज के साथ। और इस गीत में भी नोरा फतेही और प्रभु देवा का जो खूबसूरत सा डांस है वो आया था नजर। तो बस इसी तरह की है चाल मेरी कि आपके पैरों की धड़कन रहे बरकरार। मैं हूँ जमशेद आपके साथ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ।

और सुल्ताना के बाद जो पायल बजी है वो है ये अंदाज वही, लेकिन हाँ कलाकार थोड़ा सा बदले हैं, यानी नोरा फतेही है और साथ में है कौन, यो यो हनी सिंह।

तो बनता है, लेकिन मोहब्बत का आगाज कैसा होता है, वैसा ही मोहब्बत का अंजाम होता है। यानी आगाज और अंजाम में बस थोड़ा सा फासला होता है, लेकिन अगर बेहतर आगाज हुआ है, बेहतर शुरुआत है, तो अंजाम भी बेहतर होता है। और जो अगला गीत है उसमें आगाज और अंजाम की कोई परवाह नहीं है।

और शरारत की बात यह है कि ढेर सारे मेल आपके पास हैं और उन मेल में है खूबसूरत सी बातें, तो क्यों ना आपके मेल आप तक पहुंचा दूं मैं। भैया मोनू से प्रोग्राम झमझमा हुआ, क्या बात है, और शुभकामना भी आपको भी। और मुनेश कुमार राज यानी एम के राज ने मेल किया है लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, और आरजे जी की शुभरतियाँ, पूरी एफएम टीम को नमस्कार। ये दो लाइनें आपने जो लिखी हैं बहुत खूबसूरत सी हैं, और साथ साथ मेल है आकाश लोधी मलिहाबादी जी का, हेलो गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ और घर पर बैठकर आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, सारे गीत लाजवाब और लगातार। मेल के बाद मेल, जितेंद्र साहब आपने मेल कर दिया हमें, और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, आपने शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, आरोही नामदेव, खनक नामदेव और सौम्या नामदेव, ढेर सारे नाम आपने लिखे और कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहा है। आनंद तिवारी जी आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास, मल्लावा हरदोई से ज़बरदस्त प्रोग्राम। और ये जो शेर व शायरी आप करते हैं वाकई बड़ी खूबसूरत, ये एक लाइन पढ़ देता हूँ, पर कि पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है।

लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं है और इंसान को कभी बदलना भी नहीं चाहिए। गुलफ्शा सिद्दीकी, आपका अभी मेल आ चुका है संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ आपको लगी गानों में। और रामराज का भी मेल आ चुका है, रामराज जी कैसे हैं? और आपने हमें नमस्कार भेजा सबको, और कहाँ से आपने मेल किया? पहाड़ीपुर से, रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आपने मेल किया है। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका और हमको यानी जमशेद बच्चा को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद पहुँचे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद हम तक पहुँच गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ वकील अहमद जी का भी मेल आ चुका है और आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। वकील अहमद मंसूरी हैं कटका हथुड़ी ज़िला सीतापुर से और प्रोग्राम को एंजॉय करते हुए रश्मि रावत ने भी, रोशनी रावत ने भी मेल कर दिया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गुड इवनिंग। सफीपुर ज़िला उन्नाव से आपने मेल किया है और चंडीगढ़ से इस समय प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं और साथ साथ नाम लगातार आप उनके नाम लिख रहे हैं जो लगातार मेल भी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं। राज किशोर का भी मेल आ चुका है हमारे पास लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ अजीज़ अहमद का भी मेल आ चुका है हमारे पास सीतापुर से, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, पिछला प्रोग्राम भी अच्छा लगा, बेहतर लगा। शहनू नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है, मैं भूलूंगा नहीं, सबके नाम पढ़ूंगा। आपने मटकली ज़िला बरेली से किया है मेल और साथ साथ विजय पाल यादव जी का भी मेल आ चुका है, ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपने किया है मेल। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त लाइन आपने लिख डाली भाई हैं। और साथ साथ मेल आ चुका है हमारे पास अशोक कुमार का, अशोक कुमार जी ने भी हमें कर दिया है मेल। कहाँ से मेल किया है? आपने भी लखीमपुर खीरी से मेल किया, लखीमपुर खीरी के ढेर सारे मेल है। और इंद्रपाल का भी मेल आ चुका है हमारे पास मोहली सीतापुर से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ अनुष्का गुप्ता का भी मेल आ चुका है हमारे पास, मेल सारे मैं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, मेल के साथ साथ प्रोग्राम को भी एंजॉय कीजिए, यानी इस गीत को भी एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर जो आपके मेल है आप तक पहुंचाऊंगा मैं। जमशेद हूँ आपके साथ, 9:28 7:07 आपको सेकेंड्स।

और रविकांत जी का मेल आ चुका है। रविकांत जायसवाल है, दिल्ली परिवहन विभाग DTC और दिल्ली से आप कर रहे हैं मेल और कह रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा रखा है। और अगला मेल हमारे पास आया है कुमकुम शुक्ला जी का, और आपने हमें कहां से मेल किया है, आपने गिलौला से मेल किया है, सही पढ़ा ना, श्रावस्ती से आपने किया है मेल और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। साथ साथ हमारे पास मेल आ चुका है नवनीत सिंह साहब का, पॉप टाइम, नमस्ते नमस्ते, आपने चौक कोतवाली लखनऊ से किया है मेल, प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय पूरी तरह से और मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और गाने पसंद आ रहे हैं और मुझे जितने भी गाने आपने बताए हैं बजाए हैं सारे गाने बेहतर लगे। और कुछ नाम आपने लिखे हैं वो भी मैं पढ़ देता हूँ, सीमा देवी और मंजय कुमार, कीर्ति वर्मा, राजवीर सिंह और गुड़िया, सही नाम पड़ा। चले अगर कोई मेल में नाम छूट गया हो तो उसके लिए माजरत है। साथ साथ वैभव जी का मेल आ चुका है, वैभव प्रकाश हैं, आपने महाराष्ट्र से, नागौर महाराष्ट्र से हमें, नागपुर महाराष्ट्र से हमें मेल किया है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। नमस्कार नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से कोई मेल आ चुका आता है और उसमें ढेर सारे आपको तारीफ लिखते हैं, आपने महाराष्ट्र से नागपुर से मेल किया है और पॉप टाइम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, सारे गाने आपको पसंद आए, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। साथ साथ मेल आया जावेद अख्तर साहब का, गुड इवनिंग, और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, आपने मुबारकपुर आज़मगढ़ से मेल किया है और प्रोग्राम का आगाज़ अच्छा लगा और अंजाम भी अच्छा ही होगा और अंदाज़ आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, सबसे बेहतर हमारे लिए।

बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, बस हमेशा इसी तरह से खुश रहिए, इसी तरह से जो मूड है, जो मौका है, जो मस्ती का नज़ारा है, जो आप पेश करना चाहते हैं डांस के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल कर डालिए, दिल में जो बात है उसको निकाल दीजिए।

और मैंने सोचा चलते चलते ये धुन भी आप तक पहुंचा दूं, जसबीर जस्सी की आवाज़ को आप तक पहुंचा दूं। फिलहाल दो मेल हमारे पास आ चुके हैं, ब्रजेश सिंह दीपू इटावा कैसरगंज बहराइच से गुड इवनिंग कह रहे हैं हमें, और कई सारे गीतों को आपने सुना एकदम मस्त, वाकई आपको सारे गीत पसंद आए। साथ साथ मेल हमारे पास आया है बबीता राव का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और गज़लों का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कतई जहर प्रस्तुति लगी, और पॉप टाइम मस्त लग रहा है, और रजनीश बहन विनीता, दोस्त रोशनी रावत जी, अहमद नवाब जी, नीलू दी, सब एक साथ सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और इस मेल को मैंने बिल्कुल शामिल कर लिया है। और आपने हमें मेल किया है गोसाईगंज लखनऊ से, तो ये आखिरी मेल था, और मैं भी यहाँ से आपसे इजाज़त लेने वाला हूँ इस वादे के साथ कि कुछ देर के बाद यानी न्यूज़ ब्रेक के बाद फिर होती है मेरी आपसे मुलाकात। आपसे यही कहूँगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, यानी न्यूज़ ब्रेक के बाद रजनीगंधा।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने बताया है कि उसके ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए 4,900 से अधिक आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 39,000 से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। CBSE ने कहा है कि वह पोर्टल की सुरक्षा, विश्वसनीयता और छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

वाराणसी में कल से आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि आज शाम से वहां पहुंचने लगे हैं। देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञों का काशी की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से उनका स्वागत करते रहे। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में 4 और 5 जून को वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक में समूह के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल सेवाओं और अन्य आपातकालीन कर्मियों के समन्वित प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को बचाया गया और उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: Entertainment और information रहेगा संग संग.
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

वाकई नजारा हो तो ऐसा हो, लेकिन हमेशा की तरह एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि जिंदगी में कभी किसी से कोई वादा कीजिए तो उस वादे को पूरा जरूर कीजिए। यकीन जानिए, जब वादे टूटते हैं ना, तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया हो। फिलहाल कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था, होती है मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ, आपके अपने पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं तो ये कहूंगा कि तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभा पाएंगे हम, मिटा देंगे खुद को भी जहां से, लेकिन मिटा देंगे खुद को भी जहां से, लेकिन तेरा नाम दिल से ना मिटा पाएंगे हम। और यकीन जानिए, हर शख्स की जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ यादें जरूर जुड़ी होती हैं, वो यादें जिनको देखकर वो हंसता है, मुस्कुराता है, कभी कभी गमगीन हो जाता है। यानी हम अगर कहें कि उन यादों के बिना जिंदगी का तसव्वुर क्या मुमकिन है, कतई नहीं मुमकिन है। वो यादें हैं तो जिंदगी है। तो बस कुछ ऐसी ही बातें, कुछ खूबसूरत से अशआर आपके साथ रजनीगंधा में। और हमारा और आपका साथ बहुत पुराना है, और वो साथ इसी तरह से रहेगा कायम। रहिए जमशेद के साथ अगले 2 घंटे 100.7 FM रेनबो के साथ।

हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। और मैंने माजी की बात की, मैंने पुरानी यादों की बात की, वो यादें जो कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी कुछ ऐसे चेहरे पर भाव ले आते हैं जिनकी शायद कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पुकारोगे प्यार से हमें अगर तुम, पुकारोगे प्यार से हमें अगर तुम, तो हम भी दौड़े चले आएंगे। आपका दिल ही तो है हमारा आशियाना, इसे छोड़कर हम भला कहां जाएंगे। वो चाहे पुरानी बातें हों या आपकी बातें हों, वो पुराने खतूत हों, खत हों, चाहे उनमें लिखे हुए अल्फाज हों, वो कहीं ना कहीं एक बार की चेहरे पर खुशी जरूर दे जाते हैं, हंसी जरूर दे जाते हैं।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मैंने कहा ना, यही तो है जिंदगी, और जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत सी बातें, कुछ खूबसूरत सी यादें। और अगर मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी की वो खुशी हो तुम, मेरी जिंदगी की वो खुशी हो तुम जिसे मैंने हमेशा साथ रखने की दुआ मांगी है, और ये दुआ कबूल भी होती है, यकीन जानिए। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना, दिल में शिद्दत कितनी है, उस दुआ को मांगते वक्त कितनी सच्चाई है आपके दिल में, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये गीत भी बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि जब प्यार किसी से होता है तो एक दर्द सा दिल में होता है, होता है ना।

0: चले दिल का पर्दा खोल देते हैं।
1: कभी ख्वाब देखे हैं आपने? और उन ख्वाबों की ताबीर, बहुत लोग कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके ख्वाब पूरे होते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं, और उसके बाद जिस चीज को वो ख्वाब में देखते हैं और उसे जिंदगी में पा लेते हैं, तो यकीन जानिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं तो कहूंगा बेइंतहा मोहब्बत का असर कहिए कि हर सू एहसासे गजल होता है, तन्हा भी होते हैं तो बारत तरन्नुम में, तन्हा भी होते हैं तो बा तरन्नुम में जाने गजल महसूस होता है। जी मैंने कहा ना ख्वाब और हकीकत, और ये हकीकत जब सामने होती है

आज सामने पाया, हाय हाय कुर्बान जाऊं। 10:33 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं ये कहूंगा कि तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगे हैं, पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम कि जिंदगी के हर लम्हे में तेरी जरूरत सी लगती है। और शायद इसी को छोटे अल्फाज में हम कहेंगे, मोहब्बत कहते हैं।

दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, सब कुछ तो उसे सौंप दिया है। यूं धीमे से मेरे हाथ को थाम लेने से सेहरन सी दौड़ जाती है। यकीन होता नहीं खुद पर, बस फलक को छूने का एहसास दिलाते हैं। और यकीन मत, अगर दिल मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत की शमा जला कर तो देखो जरा, दिल की दुनिया बसा कर तो देखो, कुछ ऐसा ही होता है। जमशेद हूं आपके साथ रजनीगंधा में 100.7 FM रेनबो के साथ।

तेरी सांसों से शायद आ रही है। और मैंने कहा ना कि पहली मोहब्बत जो है उसको भूलना शायद ही मुमकिन हो, बड़ा मुश्किल होता है यकीन जानिए, क्योंकि उसके साथ कई तरह की बातें जुड़ जाती हैं, कई तरह की खुशियां शामिल होती हैं उन बातों में, वो रूठना मनाना शामिल होता है उन यादों में, तो भला कैसे भुलाया जा सकता है। और एक बात और कहूंगा कि दिन भर की मशक्कत की थकान, दिन भर की मशक्कत की थकान सिर्फ तुम्हें सोचने से ही मिट जाती है। मोहब्बत बे इंतहा इसे कहते हैं जो जिंदगी में एक जादू सा असर कर जाती है। और मैंने कहा ना कि वो तकरार, वो रूठना मनाना, वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, अहम कहूं या खूबसूरत कहूं, चलिए कहता हूं खूबसूरत सा हिस्सा बन जाते हैं, जो तन्हाई में आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ हाँ आज भी हूं मैं तुम्हारे साथ। और ये खूबसूरत सा गीत है पुराना, बिल्कुल अलग तरह का, रफी साहब, और साथ में किसकी आवाज है, दिल से मिला।

बिल्कुल, एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात, ये वादा ज़रूर करता हूँ आपसे। तो थोड़ा सा वक्फा और उसके बाद फिर मैं रहूँगा आपके साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

एक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात, ये वादा जरूर करता हूँ आपसे। तो थोड़ा सा वक्फा और उसके बाद फिर मैं रहूंगा आपके साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मक्का खरीद की अवधि भी निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्के की सरकारी खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन को हाईटेक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 18 बड़े शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने राज्य की कानून और जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई अत्याधुनिक जेलों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही जेल प्रशासन से जुड़ा एक और संवेदनशील फैसला लेते हुए जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जेल में बंदियों के मृत्यु होने पर मुआवजे की एक नई और पारदर्शी नीति लागू होगी। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रथम ठहराव पर आज भव्य कार्यक्रम का स्वागत हुआ। लखनऊ से देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शाहजहांपुर स्टेशन पर प्रातः 7:34 पर पहुंचेगी और 7:36 पर चल देगी। देहरादून से लखनऊ

वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रात्रि 8:04 पर पहुंचेगी और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:06 पर चलेगी। इसी के साथ समाचार बटन समाप्त होता है। हमारा अगला बटन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
9: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, एक छोटा सा वक्फा था न्यूज का, वो आप तक पहुंचाना था और उसके बाद फिर आपसे जुड़ जाना था। और वादा पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। और मैं तो यही कहूंगा कि बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

0: तुझको मेरा प्यार पुकारे, मोहब्बत का एक रंग ये भी है। लेकिन हाँ, क्या इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गलतफहमी दिल में हो, या गलतफहमी की दीवार हो, तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की बात सामने आई हो। और अगर कोई बात है तो उसको दरकिनार करिए, बात कीजिए बैठ के। कहते हैं ना, बातचीत करने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। लेकिन इस गीत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमी का रंग नजर आया था। खैर, 11:15 साथ में कुछ सेकंड्स रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।
1: Hit you need.

एक दिल की दुआएं बुला रही हैं तुझे। यूं दस्तक मोहब्बत की दहलीज पर हमारी राहें बदल देगी। एक अजनबी की चाहत इस हद तक हमें होकर रहेगी।

और वाकई जिंदगी का सफर तन्हा नहीं करता, कोई ना कोई तो हम सफर चाहिए होता है जो आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए। कभी गमगीन हो तो आपके गमों को बांट सके, कोई एक ऐसा हम सफर जो आपके बुझे हुए चेहरे पर खुशियां ले आए। और ऐसे हम सफर की तलाश हर शख्स को होती है, हर किसी को होती है। और अगर मोहब्बत की बात होती है तो मोहब्बत को अगर अल्फाजों में डालेंगे, या कोई पूछता है कि मोहब्बत क्या है, तो ये भी कह सकते हैं कि कभी इनकार तो कभी इजहार। बेरंग सी दुनिया में रंगों का नजारा, क्योंकि जब किसी से मोहब्बत होती है तो दिल में कुछ अलग सा एहसास होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम सफर वो जो आपको खुशियों का एहसास करा सके, और खुशी के साथ आप उससे ये कह सकें।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, लखनऊ की।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

प्यार इसी को कहते हैं, कोई पास रहे या दूर रहे लेकिन हमेशा नजरों में समाया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल प्यार इसी को कहते हैं। मन के कोरे कागज पर नाम तुम्हारा मोहब्बत से लिख दिया, सफर के हम सफर बने रहेंगे, अपनी चाहत को सरेआम कर दिया।

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है? कसूर तो उस मोहब्बत का है जो बिना सोचे समझे बस हो गई तुझसे। तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पर क्या लिखते रहते हो? काश काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए क्यों जगे हो? बस ऐसे ही उन्हें याद करते करते रात बीतती जाती है। लेकिन मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ वही एहसास होता है और वो प्यार बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इस कदर मजबूत हो जाता है कि फिर एक दूसरे के बिना शायद जिंदगी का तसव्वुर नहीं होता।

जन्म जन्म से हूं साथ तेरे। मैंने कहा ना कि मोहब्बत का आगाज खूबसूरत होता है तो अंजाम भी खूबसूरत होता है। मैं प्यार का नजराना कैसे पेश करूं, मैं प्यार का नजराना कैसे पेश करूं, ऐ दिल मुझे सोच कर बतलाना। ख्वाबों में रोज आती है तस्वीर तुम्हारी, ख्वाबों में रोज आती है तस्वीर तुम्हारी, पर कभी हकीकत में तुम मुझे जरूर देख जाना। और जब हकीकत में नजर आता है कोई, तो दिल यही करता है कि सारे अरमान उस पे निछावर कर दूं।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

राहों में खड़े हैं दिल थाम के। मेरे दिल ने जो तुम्हें चाहा था, मेरे दिल में जो तुमने डेरा डाला था, लम्हा लम्हा साथ बिताया था तुमने, खामोशियों में आज भी मेरे साथ चलते हो। बोलूं या ना बोलूं, फिर भी मेरे जज्बात समझते हो, और शायद यही होता है मोहब्बत का एहसास। लेकिन हां, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम चीजों को दरकिनार करते हैं या चीजों को भूल जाते हैं, तो मोहब्बत भी धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ग्यारह बजकर 55 मिनट 7 में कुछ सेकेंड्स, उन बीते दिनों की याद फिर किस रोज होगी मेरे यानी जमशेद के साथ। फिलहाल आज रजनीगंधा का सफर यहीं तक, इस वादे के साथ कि फिर किस रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपके साथ। मैं यानी जमशेद आपसे कहूंगा खुदा हाफिज, शब्बा खैर। और हां, चलते चलते एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित मंडलीय खरीफ उत्पादन गोष्ठी में पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग के स्टॉलों पर प्रदर्शित योजनाओं, नवीन तकनीकियों और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में अदालती कार्रवाई में लगे सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के साथ ही प्रदेश के 18 नगर निगमों में ई व्हीकल बस संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल TGT भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली यह परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 तथा सूर्यास्त 6:57 होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम के सेवा में पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।